सुप्रभात। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 5 जून सन 2026। सुबह के 5:55 हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा के प्रसारण मीडियम वेव और FM पर एक साथ आरंभ हो रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 6 बजने को हैं समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव

0: को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरण अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

जब मन में उमड़ता है प्रेम का भाव, तभी होता है ईश्वर से जुड़ाव। प्रेम ही भक्ति, प्रेम ही पूजा, इस भाव से दूजा कुछ नहीं दूजा। कण कण में जिसका वास है, वही तो सांस सांस में छिपा विश्वास है। खोकर खुद को जब कोई उस प्रभु में खो जाए, तो प्रेम की इस डोर से ही वो भाव से पार हो जाए।

दूर नहीं वो खुदा, न कोई फासला है, हर दिल की धड़कन में उसका ही वास्ता है। दुनिया की भीड़ में जब कोई न अपना लगे, तब रब की इबादत ही रूह का रास्ता है। मंदिर की घंटियों में, अजान की सदा में, उस एक नूर की किरण है हर एक हवा में। मांगे जो सच्चे मन से एक पल भी कोई दुआ, वो रहमत बरसाता है दोनों जहां की दुआ में।

गुरु की महिमा का मैं कैसे करूं बखान, गुरु से ही तो किया है ये सब अर्जित ज्ञान। ऐसा कोई कागज नहीं जिसमें वो शब्द समाए, ऐसी कोई स्याही नहीं जिससे सारे गुरु गुण लिखे जाएं। वाणी भी कितना बोलेगी, कितनी कलम चलाऊं, दूर दूर तक सोचूं जितना भी गुरु गुण लिख ना पाऊं।

मोक्ष तो सहज ही स्वयं को पाना, पाया बस वही जिसने यथार्थ को माना। मृत्यु से मोक्ष किसको कब मिल पाया है, अगर मिला है कुछ तो अनचाही क्षणिक तृप्ति। देह त्याग की कोई आवश्यकता नहीं, किसी को ना मिल पाएगी ऐसी प्रभु भक्ति। तजकर दुर्व्यसन काम क्रोध लोभ मोह छल, पाएंगे प्रभुत्व और दृढ़ आत्मिक शक्ति। मोक्ष तो सहजी स्वयं को पाना, पाया बस वही जिसने यथार्थ को माना। क्योंकि मृत्यु से कैवल्य कौन पा सका, गर पाया कुछ तो आडंबरों से मुक्ति।

इसी भजन के साथ वंदना कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आज की वंदना में कलाकार थे मुकेश, ओम व्यास, सरफराज चिश्ती और सुरजीत सिंह।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है गांधी चर्चा।
1: गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा में पहले सुनिए बापू के विचार।
1: गांधी जी ने अपने अखबार यंग इंडिया में नमक कानून के खिलाफ लिखा था और इस पर विस्तार से चर्चा की थी। 1835 में कमीशन ने यह सिफारिश की थी कि हिंदुस्तानी नमक को हिंदुस्तान में बेचा जा सकता है और नमक केवल सरकार बना सकती थी। अगर कोई जनता का व्यक्ति नमक बनाता है तो 6 माह का कारावास दिया जाएगा और नमक के मूल्य का 2400 रुपये प्रतिशत का टैक्स भी उस व्यक्ति को देना पड़ेगा जो नमक बना रहा है। गांधी जी ने लिखा, हजारों लोग

के लिए नमक बनाते हैं। यह भारत के समुद्र का पानी है जिस पर भारत के लोगों का अधिकार है। अंग्रेजी सरकार भारत के लोगों का नमक चुरा और उसकी भारी कीमत वसूल कर रही है। लोगों को हक हासिल है कि जो कुछ उनका है उस पर मुकम्मल कब्जा कर लें। नमक कानून की मुखालफत करके गांधी जी ने हिंदुस्तान की आजादी की तरफ दूसरे देशों का ध्यान आकर्षित किया। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी जी भारत आए तो उन्होंने साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम बनाया। इसमें सभी लोग बिना किसी भेदभाव के एक परिवार की तरह रहा करते थे। खाना बनाने की जगह पर सबको जाने का अधिकार था और सारा काम सब मिलकर करते थे। यह भारत के लोगों का एक तरह से ट्रेनिंग सेंटर था। चरखे पर सूत कातना हर आश्रम वाले के लिए जरूरी था। आश्रम के लोग आपसी मेल मिलाप पर विश्वास रखते थे। गांधी जी का कहना भी था कि मोहब्बत और प्यार से एक दूसरे के साथ पेश आना चाहिए। गांधी जी ने नमक के कानून को तोड़कर भारत की आजादी के लिए मार्ग प्रशस्त किया। वायसराय ने गांधी जी के जरिए एक चुटकी नमक से आजादी और सरकार को परेशान करने का मजाक उड़ाया। नमक सत्याग्रह शुरू करने से पहले गांधी जी ने वायसराय को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने डियर फ्रेंड कहकर उन्हें संबोधित किया। उन्होंने भारतवासियों की औसत आमदनी और लंदन की औसत आमदनी की तुलना करते हुए ये लिखा था कि ये भारत की आवाम के साथ नाइंसाफी है। आप अपने वेतन को लीजिए, 12,000 मासिक से अधिक आपका वेतन है। ब्रिटेन के वजीर आजम को 5,000 पाउंड सालाना मिलता है जो लगभग 5,400 रुपये मासिक पड़ता है और आपको 700 रुपये रोजाना मिलते हैं, जबकि एक भारतीय की आमदनी 2 आने रोज है। मैं आपसे इस कैफियत पर गौर करने की दरख्वास्त करता हूँ। जो कुछ वायसराय के वेतन के बारे में कहा गया है वही आम इंतजामिया का मामला है। आमदनी में बुनियादी कमी करने के लिए आवश्यक है कि खर्चे में भी उसी प्रतिशत से कमी की जाए। गांधी जी का नजरिया था कि अगर भारतवासियों को भूख से सिसक सिसक कर मरने से बचाना है तो इसके लिए तुरंत कदम उठाना होगा। उनका विचार था कि अंग्रेजी शासन के अत्याचार और तशद्दुद को खत्म करना है तो उसके लिए अहिंसा को अपनाना होगा। गांधी जी ने सिविल नाफरमानी के रास्ते को अपनाने की ठानी। उन्होंने पत्र में यह भी लिखा कि अगर मेरा पत्र आपके हृदय पर कोई असर नहीं करता तो मैं 11 तारीख को अपने आश्रम के कुछ साथियों के साथ नमक कानून की खिलाफ वर्जी के लिए रवाना हो जाऊंगा। स्वतंत्रता की जद्दोजहद को मैं इस नमक कानून से प्रारंभ करता हूं। मैं जानता हूं कि आप मेरी इस कोशिश को नाकाम करने के लिए मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे बाद मेरे काम को पूरा करने के लिए हजारों आदमी पूरी तरह तैयार होंगे। इस पत्र को उन्होंने अपने मित्र रेनॉल्ड के हाथों भेजा था। वायसराय ने पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। सत्याग्रहियों के लिए गांधी जी ने कुछ सिद्धांत बनाए थे और उन्हें यंग इंडिया में प्रकाशित भी किया था। उनके प्रमुख सिद्धांत थे कि सत्याग्रही को गुस्सा नहीं आना चाहिए। सत्याग्रही यूनियन जैक झंडे को न सलाम करेगा और न ही उसका अपमान करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि किसी सत्याग्रही को जेल में आम कैदियों से बड़ेपन का बर्ताव नहीं करना चाहिए। आम कैदियों को जो खाना मिले वही खाना चाहिए, अगर साफ सुथरे बर्तन में न हो तो खाने से इनकार कर देना चाहिए। नमक समुद्र में बड़ी सफेद चादरों की शक्ल में पड़ा रहता है। गांधी जी चाहते थे कि वो नमक उठाएं, लेकिन जगह को चुनना था। 3 सदस्यों की समिति ने डांडी से सत्याग्रह शुरू करने की सिफारिश की। वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के पुराने साथी थे और इस कमेटी के सदर भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी तकरीर में कहा कि आप लोगों को अपनी जमीनें जब्त होने का डर है। मैं आपसे कहता हूं कि क्या वो आपकी जमीनों को उठाकर इंग्लिस्तान ले जाएंगे? मैं आप में बेखौफी पैदा करना चाहता हूं। इस पर सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। 75,000 लोगों की भीड़ साबरमती के रेतीले किनारे पर जमा हो गई। उसने ऐलान किया कि हम मुकम्मल आजादी हासिल करेंगे। गांधी जी आश्रम में रहकर सूत काटते थे, पत्रों के उत्तर देते थे और आने जाने वाले लोगों

0: मिलते थे। वल्लभ भाई पटेल जगह जगह पर देहातों में जाकर भाषण करते और लोगों में बेखौफी पैदा करते। परिणाम ये हुआ कि नमक आंदोलन के बारे में भारत के अलावा दूसरे देशों में भी चर्चा होने लगी। गांधी जी ने जब मार्च किया तो उससे पहले लाखों की तादाद में लोग रास्ते के दोनों तरफ खड़े थे। जिन्हें सड़क पर जगह नहीं मिली वो पेड़ों पर चढ़ गए थे। दुनिया भर के लोगों ने और अखबारों ने गांधी जी को चुटकी भर नमक योजना की कामयाबी के लिए मुबारकबाद दी। लोग जो नमक की मिट्टी का ढेर बनाते, पुलिस वाले उसे पैरों से एक सा कर देते थे। गांधी जी ने 4 मई 1930 को वायसराय को दूसरा पत्र लिखा, जिसमें लिखा था कि उनका इरादा साथियों के साथ नमक फैक्ट्री पर भारतीयों का कब्जा मांगने का था। इसकी एक सूरत यह हो सकती है कि नमक टैक्स को खत्म किया जाए या फिर हमेशा की भांति सत्याग्रहियों पर जानलेवा हमला किया जाए। बाद में गांधी जी और इरविन में समझौता हुआ। सारे कैदी छोड़ दिए गए और समुद्र पर नमक बनाने की आज्ञा दी गई।
1: ये थे बापू के विचार और अब हम आपको सुनवाते हैं बापू का

0: आपने सुना बापू का प्रिय भजन। इसके साथ ही आज की गांधी चर्चा संपन्न होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश। आज इस कार्यक्रम में सुनिए असीम सक्सेना से एक जानकारी। विषय है पर्यावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव।
2: कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। मनुष्य और पर्यावरण दोनों के बीच है एक घनिष्ठ संबंध। जिस वातावरण में हम रहते हैं वही हमारे स्वास्थ्य, हमारी जीवन शैली, हमारे जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। स्वच्छ वायु, शुद्ध जल, हरित वनस्पति और संतुलित जलवायु मानव स्वास्थ्य के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितना आवश्यक भोजन है, जितना आवश्यक पानी है। यदि पर्यावरण प्रदूषित हो जाए तो उसका सीधा प्रभाव हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। पर्यावरण में अनेक तत्व शामिल हैं, वायु, जल, भूमि, वनस्पति, जीव जंतु और हमारे आसपास की सामाजिक परिस्थितियां। स्वस्थ पर्यावरण व्यक्ति को रोग

0: जीवन प्रदान करता है, जबकि दूषित पर्यावरण कई बीमारियों का कारण बनता है। आज जो विश्व की स्थिति है, उसमें बढ़ता हुआ प्रदूषण, जलवायु में हो रहा परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं, फसलों के अवशेष जलाना, धूल कण वायु को प्रदूषित करते हैं और इसके दुष्प्रभाव ये होते हैं कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी श्वसन संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, फेफड़ों के संक्रमण का, हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है, आंखों में जलन होती है और एलर्जी की समस्या भी घेर लेती है। बच्चों और बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये पर्यावरण प्रभावित करता है। जल जीवन का आधार है, लेकिन जब जल स्रोत औद्योगिक अपशिष्ट, रसायनों और गंदगी से प्रदूषित हो जाते हैं, तब हैजा, टाइफाइड, पीलिया, पेचिश, डायरिया जैसे रोग फैलते हैं। अशुद्ध जल विशेष रूप से बच्चों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, इसलिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्राथमिक आवश्यकता है। वहीं ध्वनि प्रदूषण भी मानव जीवन को प्रभावित करने में पीछे नहीं रहता। तेज आवाज वाले वाहन, लाउडस्पीकर, मशीनें और औद्योगिक गतिविधियां ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती हैं। व्यक्ति की सुनने की क्षमता को प्रभावित करती हैं, अनिद्रा की समस्या हो जाती है, तनाव और चिड़चिड़ापन घेर लेता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और मानसिक एकाग्रता में कमी भी महसूस की जाती है। वैश्विक तापमान में वृद्धि, अनियमित वर्षा, अत्यधिक गर्मी और प्राकृतिक आपदाएं हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं और इसका परिणाम ये होता है कि हीट स्ट्रोक और निर्जलीकरण की समस्या घेर लेती है, संक्रामक रोगों का प्रसार होता है, कुपोषण की समस्या जन्म लेती है और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं हो जाती हैं। साथ ही मलेरिया और डेंगू जैसे रोगों के नए क्षेत्र में फैलाव की संभावना भी बनी रहती है। जहां हरियाली अधिक होती है, वहां के लोगों का मानसिक स्वास्थ्य अपेक्षाकृत बेहतर पाया जाता है, क्योंकि पेड़ पौधे न केवल वायु को शुद्ध करते हैं बल्कि मन को भी शांति प्रदान करते हैं। जब वातावरण हरित होता है, तनाव में कमी आती है, सकारात्मक सोच बढ़ती है, अवसाद की संभावना में कमी रहती है, शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है और सुधार होता है हमारे सामाजिक संबंधों में भी। इसीलिए अब विश्वभर में ग्रीन स्पेस और अर्बन फॉरेस्ट की अवधारणा को बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार का दायित्व नहीं है, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। हमारे छोटे छोटे प्रयास बड़े से बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अधिक से अधिक वृक्षारोपण जरूरी है, प्लास्टिक का उपयोग कम करना आवश्यक है, जल और बिजली की बचत अनिवार्य है, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाना होगा, कचरे का उचित निस्तारण करना होगा और स्वच्छता को बनाना होगा जीवन शैली का एक प्रमुख अंग, क्योंकि जब पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो मानव स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा। प्रकृति का संरक्षण केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि मानव स्वास्थ्य और मानवता के भविष्य की रक्षा भी है।
1: पर्यावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव। अभी आप इस विषय पर असीम सक्सेना से एक जानकारी सुन रहे थे। स्वास्थ्य संदेश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब हम आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों में बता देते हैं। आज रात 10 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो रामपुर। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स राउंडअप। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा गीत गाता चल रात्रि 8:00। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे विश्व पर्यावरण पर विशेष मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे सुरक्षित पर्यावरण सुरक्षित भविष्य पर एक विशेष प्रस्तुति। संकलन सुरेंद्र कौर का होगा, आलेख दीपिका का होगा और प्रस्तुति विक्रांत चौधरी की रहेगी। समय याद रखिए, आज शाम 7:31 पर आप सुनेंगे विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। शास्त्रीय संगीत में शाम 7:00 आज आप सुनेंगे रजा हुसैन खां का सारंगी वादन। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:20 पर आज आप सुनेंगे

0: पशुओं में टीकाकरण और विश्व पर्यावरण दिवस पर चर्चा, साथ ही फरमाइशी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा लोक मंजरी, कृषि संकेत कार्यक्रम होगा, क्षेत्र संकलित कार्यक्रम होगा और मौसम के विषय में भी जानकारी दी जाएगी। चित्रपट संगीत आप सुनेंगे शाम 6:10 पर। युवाओं का दैनिक कार्यक्रम होगा शाम 5:15 पर युवावाणी। शाम 5 हमारी दूसरी सभा में आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड कार्यक्रम आज शाम। आज दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनहरा दौर। दोपहर 1:30 पर महिलाओं का कार्यक्रम होगा कुमकुम। दोपहर 1:15 पर आप सुनेंगे नातों का वाली, फनकार होंगे असलम वारसी और साथी। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा गीत आपके नाम दिन में 12:10 पर। समय याद रखिए, केवल ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा गीत आपके नाम दिन में 12:10 पर। दिन में 11:30 पर मनभावन कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एक ही शीर्षक मीत से संबंधित कुछ फिल्मी गीत। दिन में 11 धरोहर कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 श्रृंखला के अंतर्गत वरिष्ठ प्रसारक और कमेंटेटर श्री कुलविंदर सिंह किंग से की गई भेंटवार्ता। प्रायोजित कार्यक्रम होगा NCERT उमंग सवेरे 10:30 पर। सवेरे 9:30 पर आप समाप्त फरमाएंगे उर्दू प्रोग्राम, जिसमें आज आप सुनेंगे उजाले उनकी यादों के तहत बशीर बद्र साहब पर एक खसूसी प्रोग्राम। 102.9 मॉर्निंग हिट्स कार्यक्रम होगा आज सवेरे 8:45 पर। सुबह सवेरे कार्यक्रम सुनेंगे आज सवेरे 7:31 पर। सुनना ना भूलिए, इस कार्यक्रम में बहुत कुछ खास है आज आपके लिए। समय याद रखिए, आज सवेरे 7:31 पर कार्यक्रम सुबह सवेरे। और आपसे कुछ ही देर बाद यानी सवेरे 7 आप सुनेंगे कार्यक्रम अमृत कलश, जिसमें आज आप सुनेंगे श्री अनुराग कुमार शुक्ल की वार्ता। विषय रहेगा पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक प्रयास। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 6:45 होने को हैं। आइए, प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग।
1: एपिसोड नंबर 319

लंका में घमासान युद्ध हो रहा है। अंगद और हनुमान ने रावण के किले में घुसकर राक्षस सेना में ऐसी उथल पुथल मचा दी मानो दो मंदराचल समुद्र मंथन कर रहे हों। दिन का अंत हुआ। अनेक असुरों का संहार करके अंगद और हनुमान श्री राम के समक्ष उपस्थित हुए, लेकिन उनके युद्धभूमि से हट जाने के बाद राक्षस एक बार फिर वानर सेना पर टूट पड़े। आसुरी माया से राख, पत्थर और रक्त की वर्षा होने लगी। चारों ओर अंधकार छाया देख वानर सेना में खलबली मच गई। श्री राम से ये रहस्य छिपा न रहा। उन्होंने अग्निवाण चलाकर चहुं ओर प्रकाश फैला दिया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: सिग्नल इत्यनेन क्षेत्रीय वायु संपर्कः महत्वपूर्ण रूपेण वर्धिष्यति अपि च अस्य प्रदेशस्य आर्थिक वृद्धि च सुकरा भविष्यति। भारतीय रिजर्व बैंक इत्येतत् द्वैमासिक्याः मौद्रिक नीत्याः घोषणां करिष्यति। आरबीआई इत्यस्य प्रमुखः संजय मल्होत्रा अद्य प्रातः मौद्रिक नीति समित्या कृतानां निर्णयानां उद्घोषणं करिष्यति। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट इत्यस्य अनुसारं वर्धमान मुद्रास्फीतिः क्रूड मूल्यानि अवमूल्यन रूप्यकाणि संभाव्य दुर्बलं वर्षाकालम् इत्यादीनां समस्यानां निवारणार्थं रेपो इत्यस्य मितौ वृद्धि समुचितोपायः न भविष्यति। तद्विहाय आरबीआई अल्पकालिक लाभांश मिति साधनानि द्रव्यता उपायांच उपयुज्य विपण्याः विकृति परिहर्तुं वित्तीय स्थिरतां च समर्थयितुं शक्नोति। एसबीआई इत्यनेन संसूचितं यत् भारतं सापेक्षक रूपेण प्रबलं समष्टि आर्थिक मूल्यं निरन्तरं अनुभवति तथा च वर्तमान मुद्रास्फीति प्रतिसन्धि बहुधा बाह्य कारणानां विशेषतः पश्चिम एशियायाः भू राजनैतिक समस्यया अशोधित मूल्यानां वर्धनेन च प्रेरिता अस्ति। लोकसभायाः पूर्व महासचिवः संवैधानिक विशेषज्ञः च सुभाष सी कश्यपः दीर्घकालं यावत् अस्वस्थतायाः अनन्तरं गतदिने राजधान्यां नवदिल्ल्यां निधनम् उपगतः। असौ 97 वर्षीयः आसीत्। एकं राष्ट्रं एक निर्वाचनम् इति विधे निर्माणाय संघटितायाः उच्चस्तरीय समित्याः सदस्यः अपि आसीत् डॉ. कश्यपः। अधिक पुस्तकानां लेखकः सः गतशताब्दस्य 83 तमाब्दात् 90 तमशताब्दं यावत् लोकसभायाः महासचिवरूपेण कार्यं कृतवान्। प्रवर्तन निदेशालयेन मिजोरम राज्यस्य चम्पाई क्षेत्रे नव परिसरेषु अन्वेषणं कृतम्। एतत् अन्वेषणं धनशोधन सम्बद्धस्य प्रकरणस्य सन्दर्भे वर्तते यत्र 70-900 कोटि रूप्यकाणां अपराधस्य आयः सम्मिलितः अस्ति। प्रवर्तन निदेशालयेन उक्तं यत् अन्वेषणेन ज्ञातं यत् बर्मा देशस्य नागरिकाः जोखावथर चम्पाई नगरयोः माध्यमेन सीमा शुल्कं विना तीआउ नद्याः पारं भारते शुष्कवृक्षाणां तस्करणं विधाय सीमायां स्थानीय सुगमकर्ताभ्य च वस्तुवाहनानि समर्पयन्ति स्म। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकरः यः नवदिल्ल्यां वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिना डेल्सी रोड्रीज इत्यनेन सह अमिलत्। द्वावेव नेतारो भारत वेनेजुएला देशयो संबंध विषये चर्चां कृतवन्तौ। ऊर्जा व्यापार निवेश स्वास्थ्य सेवा वाहन च इत्यादीनि क्षेत्राणि अधिकृत्य सहयोगं वर्धयितुं नूतनान् अवसरान् च अन्विष्यताम् इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम अमृत कलश। आज इस कार्यक्रम में सुनिए श्री अनुराग शुक्ला से वार्ता। विषय है पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक प्रयास।
2: प्रकृति ने हमारी पृथ्वी को जीवन के अनुकूल बनाया है, इसके लिए पर्यावरण का विकास किया है। हमारे चारों ओर जो भी है वह पर्यावरण के अंतर्गत है। जंगल, वन्यजीव, कीट, खाद्यान्न, नदियाँ, समुद्र, मानव सब इसी में समाहित हैं। ऐसे में यदि पर्यावरण को नुकसान होगा तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अपने आसपास तेजी से बदल रहे परिवेश पर नज़र डालें तो बहुत कुछ स्पष्ट दिखता है। हाल के वर्षों में हमारे आसपास से कई वनस्पतियाँ, जीव जंतु तेजी से गायब हो गए या गायब हो रहे हैं। दिमाग पर जरा जोर डालेंगे तो पाएंगे कि जुगनू देखे कई वर्ष हो गए हैं। अब मेंढक सामान्यतः नहीं दिखते। गौरैया और कौवे जैसे आसानी से दिख जाने वाले पक्षी भी शहरों से करीब करीब गायब ही हो गए हैं। कई रंग बिरंगी तितलियां भी कम ही दिख रही हैं। यह सब पर्यावरण को हो रहे नुकसान के कारण ही हो रहा है और इसे किसी भी हाल में अच्छा नहीं कहा जा सकता। पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर पूरी दुनिया में चिंता व्यक्त की जा रही है, लेकिन वास्तव में जितनी गंभीरता से प्रयास होने चाहिए हो नहीं रहे। इसका दुष्परिणाम लगातार आपदाओं और जीवन के लिए आवश्यक चीज़ों की तेजी से होती कमी के रूप में सामने आ रहा है। मानव तेल, कोयला और गैस जैसे ईंधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है। जंगलों को तेजी से नष्ट कर रहा है। बढ़ते शहरीकरण और नए प्रयोगों के कारण प्राकृतिक संसाधनों का खूब दोहन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड

सारी आंकड़ों में सामने आई है। शोध के अनुसार भारत का औसत वार्षिक तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस है, जो सदी के अंत तक 29.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। यदि दिल्ली और अहमदाबाद के वार्षिक औसत तापमान की बात करें तो यह वृद्धि 3.5 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है, जबकि फरीदाबाद और जैसलमेर के वार्षिक औसत तापमान में 3.6 डिग्री की सेल्सियस की वृद्धि होने की आशंका जताई गई है। 2022 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा मिस्र के शर्म अल शेख में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 27वें सम्मेलन में एक रिपोर्ट जारी की गई थी। उसमें बताया गया था कि मुख्य ग्रीन हाउस गैसों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा 2021 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। मीथेन की मात्रा में वार्षिक वृद्धि रिकॉर्ड दर सबसे अधिक पाई गई। 2023 में इन तीनों गैसों के वायुमंडलीय स्तर में वृद्धि जारी है। वहीं एक आंकड़ा और चौंकाता है, वर्ष 2022 में समुद्र की सतह के 55% हिस्से ने कम से कम एक बार समुद्री हीट वेव या लू महसूस की थी। इसके विपरीत समुद्र की सतह पर केवल 22% हिस्से ने समुद्री ठंड का अनुभव किया। शीत लहरों के विपरीत समुद्री हीट वेव अधिक तेजी से बढ़ती जा रही हैं। वर्ष 2022 में यूनिसेफ ने अनुमान जताया था कि उस साल दुनिया के विभिन्न हिस्सों, उत्तरी अफ्रीकी ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व, पश्चिमी अमेरिका और चीन के लोगों ने रिकॉर्ड उच्च तापमान का अनुभव किया है। लगातार बढ़ते तापमान के कारण दुनिया के कुछ प्रमुख ग्लेशियर संकट में हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक उत्सर्जन के कारण तापमान बढ़ने से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन के अध्ययन के मुताबिक 2050 तक येलोस्टोन और किलिमंजारो नेशनल पार्क सहित कई यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के ग्लेशियर गायब हो जाएंगे। यूनेस्को ने 50 विश्व धरोहरों पर 18,600 ग्लेशियरों का अध्ययन किया, जिसमें लगभग 66,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आता है। शोधकर्ताओं ने आशंका जताई है कि एक तिहाई जगहों से ग्लेशियर गायब हो सकते हैं। इतना ही नहीं, वर्ष 2100 तक विश्व धरोहर ग्लेशियरों में से लगभग 50% पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं। पर्यावरण को लगातार हो रहे नुकसान से बचाने को समय समय पर प्रयास किए गए। वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियम बनाए गए। तय किया गया कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को ऐसे स्तर पर नियंत्रित किया जाए जिससे पर्यावरण पर बुरा असर न पड़े। किंतु इस आयोजन के बाद अब तक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में करीब 3 गुना वृद्धि हो चुकी है और यह वार्षिक 30 बिलियन टन के स्तर तक पहुँच चुकी है। इसके 5 वर्ष के बाद गर्म होती धरती की चुनौतियों से निपटने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय करार क्योटो प्रोटोकॉल था। 1997 में यह मसौदा जापान के क्योटो शहर में तैयार किया गया था, जिसके तहत ग्रीन हाउस गैसों की पहचान व भूमंडलीय तापन को कम करने संबंधी उपायों पर विचार व्यक्त किए गए थे। विश्व के अधिकतर देशों ने इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए और फरवरी 2005 में इसे लागू कर दिया गया। इस प्रोटोकॉल में करीब 36 देशों के प्रतिनिधियों ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के साथ ही कम करने को अपनी प्रतिबद्धता जताई थी, किंतु ऐसा होता नहीं दिख रहा है। जलवायु परिवर्तन के खतरे से कोई देश भी न तो बच सकता है और न ही उससे अकेले निपट ही सकता है। ऐसे में भारत सहित कई विकासशील देश पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। भारत ने वर्ष 2009 में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन SCFC का उपयोग 2030 तक पूरी तरह बंद करने का ऐलान किया था। इसके अलावा कई अन्य एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। हाल के महीनों में पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह ECSWG की बैठकें बेंगलुरु, गांधीनगर, मुंबई और चेन्नई में आयोजित की गईं। चेन्नई में पर्यावरण को लेकर G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों सहित 23 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 225 से अधिक प्रतिनिधियों ने बैठक की। उस दौरान चर्चा जलवायु और पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों के इर्द गिर्द घूमती रही। सभी भारत के प्रयासों के साथ कदम ताल करने पर सहमत भी दिखे। अपने संदेश में देश के प्रधानमंत्री ने जलवायु और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए G20 देशों के साथ मिलकर काम करने पर बल दिया।

0: उन्होंने पर्यावरण के लिए जीवन शैली, पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करने वाले आंदोलनों के महत्व को बताया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने भारत की ओर से किए जा रहे प्रयासों में जनभागीदारी के महत्व पर जोर दिया। निसंदेह इन प्रयासों के सकारात्मक असर दिखेंगे। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए तमाम वैश्विक प्रयासों के बीच हमें खुद ही आगे आना होगा। कुछ प्रयास स्वतः करने होंगे ताकि अपने सुंदर पर्यावरण को बचा सकें। इसकी शुरुआत अपने घर से करनी होगी। इस मुहिम में विशेषकर बच्चों को शामिल करना होगा। पॉलीथीन के प्रयोग को पूरी तरह से खत्म करना होगा और पैक किए भोजन पर निर्भरता घटानी होगी। जिन चीज़ों का प्रयोग दोबारा कर सकते हैं करें। हमें जंगलों की सुरक्षा के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा पौधरोपण करना होगा। जापान के मियावाकी पद्धति वाले छोटे जंगलों के विकास पर ध्यान देना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्यावरण और प्राणी एक दूसरे पर आश्रित हैं। ऐसे में सह अस्तित्व की भावना रखते हुए हमें अपने जीवन को सरल और सहज बनाना होगा ताकि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन रुके और पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोका जा सके।
1: पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक प्रयास। अभी आप इस विषय पर श्री अनुराग शुक्ला से वार्ता सुन रहे थे। इसके साथ ही अमृत कलश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

8 जून 2026 सुबह 6 बजे आकाशवाणी रामपुर के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलिए आकाशवाणी वाकथन 2026 में एक नमन आकाशवाणी की 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को। ये वाकथन बनेगी प्रतीक स्वस्थ जीवन, सामाजिक एकता और श्रोताओं के साथ जुड़े दिल के अटूट रिश्ते का। 90 वर्षों से आकाशवाणी से गूंजती ये आवाज जन जन के मन की सच्ची परवास। 8 जून को सुबह 6 बजे आकाशवाणी स्टूडियो से अंबेडकर पार्क रामपुर तक हमें चाहिए आपका साथ आकाशवाणी वाकथन 2026 में। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के पिन पोस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, जहां से आप अपनी डिटेल फिलअप करके पंजीकरण कर सकते हैं। ऑफलाइन पंजीकरण हेतु आकाशवाणी कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। याद रखिएगा, 8 जून हमारा जुनून।

0: श्रोताओं के हमेशा रहा पास, हुआ न कभी दूर। आपका अपना आकाशवाणी रामपुर, जारी है हमारे प्रसारण मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही आप सुनते हैं हमें न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी।
1: जल के बिना तो जल जाओगे, पानी की एक बूंद बिना

0: तुम कैसे प्यास बुझाओगे?
1: कीमत समझो पानी की अब, वरना फिर पछताओगे।
2: रिश्ते नाते पीछे होंगे जब जल की होगी मारा मारी, रुपयों से भी जल न मिलेगा, जल की होगी पहरेदारी।
1: जल है तो कल है,
2: यही चिंतन पल पल है।
3: पानी को बचाकर रखिए, इसका सदुपयोग कीजिए।

0: मैं प्लास्टिक। चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
1: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
0: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
1: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, न क्षय होता है तुम्हारा और न अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
2: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष। हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
1: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
3: से नो टू प्लास्टिक।
4: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, अब से कुछ ही देर बाद यानी सवेरे 7:31 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुनना ना भूलिए, बहुत कुछ खास है आज इस कार्यक्रम में आपके लिए।

आज सवेरे 8:45 पर आप सुनेंगे नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। उर्दू प्रोग्राम आप समाप्त फरमाएंगे आज सुबह 9:30 पर, जिसमें उजाले उनकी यादों के तहत आप सुनेंगे बशीर बद्र पर एक खसूसी प्रोग्राम। दिन में 11 बजे धरोहर कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे आकाशवाणी 90 वर्ष के श्रृंखला के अंतर्गत वरिष्ठ प्रसारक और कमेंटेटर श्री कुलविंदर सिंह से की गई भेंटवार्ता। एक ही शीर्षक मीत से संबंधित कुछ फिल्मी गीत सुनेगा मनभावन कार्यक्रम में आज दिन में 11:30 पर।

आज रात 10 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो रामपुर। स्पोर्ट्स राउंड अप कार्यक्रम होगा आज रात्रि 9:30 पर।

8 जून 2026 सुबह 6 बजे आकाशवाणी रामपुर के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलिए आकाशवाणी वाकथन 2026 में एक नमन आकाशवाणी की 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को। ये वाकथन बनेगी प्रतीक स्वस्थ जीवन सामाजिक एकता और श्रोताओं के साथ जुड़े दिल के अटूट रिश्ते का। 90 वर्षों से आकाशवाणी से गूंजती ये आवाज जन जन के मन की सच्ची परवास। 8 जून को सुबह 6 बजे आकाशवाणी स्टूडियो से अंबेडकर पार्क रामपुर तक हमें चाहिए आपका साथ आकाशवाणी वाकथन 2026 में। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के पिन पोस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, जहां से आप अपनी डिटेल फिलअप करके पंजीकरण कर सकते हैं। ऑफलाइन पंजीकरण हेतु आकाशवाणी कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। याद रखिएगा, 8 जून हमारा जुनून।

0: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर, मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: हम आपको एक बार फिर याद दिला दें, अब से कुछ ही देर बाद यानी सवेरे 7:31 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आप इस समय सुन रहे हैं हमारी आज की पहली सभा के प्रसारण। सवेर के 7:19 होने को हैं। कुछ ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से होगा।
2: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
2: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
3: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएसी, एसडीआरएफ और यूपीएसएसएफ के साथ आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार और भावी कार्य योजनाओं सहित कई बिंदुओं को लेकर की समीक्षा बैठक। सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण व्यवस्था को और अधिक व्यावहारिक व तकनीक आधारित बनाने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में करेंगे बायो युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए शुरू की फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली। अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की शुरुआत हो गई। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन में रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संस्कृति आधारित सतत विकास आदि विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है।
5: तो बैठक में जो मेन मुद्दे हैं कि कहाँ पे जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज हैं वो कैसे सहयोग कर सकते हैं, जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, जो हमारे आर्टिसंस हैं, आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, उनको कैसे हम आपस में कोलैबोरेट करा के जो हमारे मेंबर कंट्रीज की अर्थव्यवस्था है उसमें उनका योगदान बढ़ा सकते हैं। जो नए चैलेंजेस हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है, उसको कैसे हम सबको मिलके उस पर काम करना है।
4: मुख्यमंत्री योगी

0: आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्रांतीय आर्म्ड कांस्टेबुलरी पीएसी एसडीआरएफ और उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपीएसएसएफ के आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार, प्रशिक्षण और संरचना विकास एवं भावी कार्ययोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पीएसी, एसडीआरएफ और यूपीएसएसएफ को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप तैयार किया जाए और सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण व्यवस्था को अधिक व्यवहारिक व तकनीक आधारित बनाया जाए। श्री योगी ने महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से पीएसी की महिला बटालियनों के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर स्थित महिला पीएसी बटालियन परिसरों में क्रमशः वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, वीरांगना उदा देवी और वीरांगना झलकारी बाई की अश्वरोही प्रतिमा स्थापित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आगामी मानसून के दृष्टिगत बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन की तैयारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही एसडीआरएफ को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से खोज एवं बचाव कार्यों के लिए ह्यूमन लिफ्टिंग ड्रोन की उपयोगिता पर विचार करने को कहा। समाचार कक्ष से मैं अरुण।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में पर्यटन विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की।
2: समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक परंपरा और ज्ञान विरासत का प्रदेश है। बैठक में भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण से जुड़े ज्ञान भारतम मिशन की भी समीक्षा की गई। श्री योगी ने कहा कि भारत की प्राचीन पांडुलिपियां हमारी सभ्यता, दर्शन, विज्ञान और सांस्कृतिक चेतना की अमूल्य धरोहर हैं। पर्यटन नीति 2022 में प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को निवेश, नवाचार और अनुभव आधारित पर्यटन का अग्रणी केंद्र बनाया जाए। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में पौधारोपण कर प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश के 17 नगर निगमों, 825 विकास खंडों, 762 नगर निकायों समेत सभी ग्राम पंचायतों में यह अभियान पूरे दिन चलेगा। वन विभाग के साथ ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, उद्यान आदि विभागों के सहयोग से अमृत सरोवरों, तालाबों, सड़कों, एक्सप्रेसवे, नदियों के किनारे पौधे लगाए जाएंगे। इसमें विद्यालयों, महाविद्यालयों, स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों की भी सहभागिता होगी। पौधरोपण अभियान के तहत लखनऊ मंडल में 62 लाख, वहीं बरेली और प्रयागराज में करीब 32 लाख पौधे लगाए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। दौरे के पहले दिन वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज लखनऊ में बायो युग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ करेंगे। यह पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है।
4: रक्षा मंत्री आज पूर्वाहन 11:05 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। अपराह्न 12:15 विश्व पर्यावरण दिवस पर कैंट स्थित कस्तूरबा पार्क में एक पेड़ माँ के नाम रोपित करेंगे। अपराह्न 12:40 पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के आवास पहुंचकर उनके पति के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे। शाम को 4:00 दिलकुशा लॉन में आयोजित बायो युग ग्रीन कमांड कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रतिभाग करेंगे। 6 और 7 जून को भी श्री सिंह लखनऊ में विभिन्न लोगों से मुलाकात करेंगे और भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करने के साथ प्रबुद्ध नागरिकों से भी मिलेंगे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित तथा पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। इस प्रणाली के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदन पत्र भरते समय जिस उम्मीदवार की फोटो अपलोड की गई थी वही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा देने आया हो। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत

0: सिद्धांतों के आधार पर देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
1: 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया, जिससे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिससे कारोबार करना आसान हो गया। वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें ऐसी छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएसी, एसडीआरएफ और यूपीएसएसएफ के साथ आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार और भावी कार्ययोजनाओं सहित कई बिंदुओं को लेकर की समीक्षा बैठक। सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण व्यवस्था को और अधिक व्यवहारिक व तकनीक आधारित बनाने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में करेंगे बायोयुग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए शुरू की फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
4: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
4: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
3: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें।
5: हरी भरी वादियाँ, सुंदर ये नज़ारे, कल कल बहते झरने मन को प्यारे, चहकते परिंदे, लहराती हवाएं, धरती की गोद में जीवन मुस्काए, फूलों की खुशबू, नदियों की कलकल, हरियाली से महके ये दुनिया पल पल, आओ मिलकर इसे सुरक्षित बनाएं, प्रकृति के रंगों को और निखराएं। आप सभी को आज के सुबह सवेरे कार्यक्रम में अखिलेश सक्सेना का नमस्कार। श्रोताओं, ये जो कुछ पंक्तियाँ अभी हमने कही हैं, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या ये पंक्तियाँ अब वास्तविकता में या रियलिटी में सत्य सिद्ध हो रही हैं। ये सोचने का विषय है। पर्यावरण को बचाना हमारा आपका उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है, लेकिन उसके प्रति हम कितने गंभीर हैं ये हम और आपको पता है। जरा अंतर्मन और दिल पे हाथ रखकर सोचिए कि जितने पेड़ कट रहे हैं, जितने जंगल नष्ट हो रहे हैं, उसके बदले में उतने पेड़ क्या हम रोपित कर पा रहे हैं? नहीं ना। समस्त पश्चिमी यूरोप में वसंत ऋतु होने के बावजूद प्रचंड लू जारी है। गत 22 अप्रैल 2026 को एक नया अप्रिय कीर्तिमान स्थापित हुआ था। दुनिया के 50 सबसे अधिक तापमान वाले शहर भारत में हैं। मई में विभिन्न स्थानों पर 47 से अधिक 48.5 डिग्री तक तापमान पहुंचा, और जिसमें उत्तर प्रदेश का बांदा जिला सबसे अव्वल नंबर पर रहा। और इतनी गर्मी थी कि बांदा के करीब 1400 ट्रांसफार्मर को असहनीय तापमान में जलने से बचाने के लिए उन पर पानी डालना पड़ा। ये बांदा की स्थिति नहीं है, ये हर विद्युत सब स्टेशन की स्थिति है। आजकल वहाँ ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए पानी, कूलरों आदि का प्रयोग किया जा रहा है, इतनी गर्मी है। आज पर्यावरण दिवस है, करोड़ों की संख्या में पौधारोपण के नए कीर्तिमान बनेंगे। तमाम समारोह में संसाधनों का अपव्यय होगा और अनगिनत प्लास्टिक का उपयोग हुआ। बहुत से वक्ता कहेंगे हमें पर्यावरण भविष्य की पीढ़ी के लिए बचाना है। जी नहीं, अब वो समय निकल चुका है। अब तो आज की पीढ़ी के लिए इसे बचाना है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी इस पर्यावरण को बचाना है। अच्छी बात है, UNEP द्वारा 5 जून 1973 से पर्यावरण दिवस को मनाने की परंपरा को शुरू किया गया है, और इस वर्ष 2026 की थीम है जलवायु कार्रवाई, प्रकृति से प्रेरित हमारी जलवायु और भविष्य के लिए। श्रोताओं, भारतीय संस्कृति तो सदा ही प्रकृति प्रेरित रही है। यहाँ वृक्षों की पूजा जैसे आंवला नवमी, पीपल पूर्णिमा, तुलसी विवाह जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। हमारे देवी देवताओं के वाहन भी पशु पक्षी ही हैं, यानी मनुष्य और वन्य जीवों का सह अस्तित्व। नदियों को तो यहाँ मैया कहा जाता है। भागवत पुराण में उल्लेख है, भगवान कृष्ण ने अपने अनुयायियों को इंद्रदेव के अतिरिक्त प्रकृति की पूजा करने के लिए कहा है। लेकिन आज इस सोच और आचरण में जमीन आसमान का अंतर है। मानव वन्य जीव संघर्ष आम बात हो गई है, क्योंकि अनियंत्रित विकास से जीव जंतु के घर यानी वन समाप्त होते जा रहे हैं। शरद और ग्रीष्म ऋतु के बीच की मनोहारी वसंत ऋतु तो अब लगभग समाप्त सी हो गई है। कम फूलों के कारण पराग न मिलने से मधुमक्खियों ने अनेक स्थानों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया है। तो इसलिए अगर हम नहीं चेते तो विनाश सामने है। इसलिए श्रोताओं, पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, और इस दिन केवल पर्यावरण दिवस मनाने से ही काम नहीं चलेगा। अगर हमें अपनी धरती को हरा भरा रखना है तो हर दिन, जिंदगी का हर दिन पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की अब आवश्यकता है, क्योंकि हमारा आप महसूस कर रहे होंगे कि विगत कई वर्षों से धरती का तापमान निरंतर बढ़ रहा है और आप देख भी रहे होंगे अपने मोबाइल पर विगत कुछ दिनों से मौसम विभाग का अलर्ट मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन वो मैसेज भी झूठे साबित हो रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान झूठा अधिकतर साबित हो पा रहा है। क्या कारण है? ग्लोबल वार्मिंग। आज हर कोई आसमान में टकटकी लगाए बैठा है कि कब बारिश होगी, कब पेड़ पौधों को पानी मिलेगा। क्योंकि देखिए, आप कितना ही मोटर से, कितना ही ट्यूबवेल से सिंचाई कर लें, लेकिन जो प्रकृति द्वारा सिंचाई होती है खेतों की, पेड़ पौधों की, उसका एक अलग ही पोषण मिलता है पेड़ पौधों को और खेतों को। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पानी संतुष्ट करता है पेड़ पौधों की तृप्ति को और हम और आपको ठंडक का एहसास कराता है। धरती हरी भरी होती है और तभी हमें गर्व होता है कि जो ऊपर वाले ने इस धरती की रचना की है वास्तव में अद्भुत और आकर्षक है। लेकिन ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस वातावरण को, इस प्रकृति को, इस धरती को हरा भरा रखना है और बचाना है तो हमें और आपको संकल्प करना होगा। एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू होगा आज, और आज पूरे प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में लगभग 5 करोड़ पौधे लगेंगे और हर विभाग को लक्ष्य पूरा करने की चुनौती दी गई है और इसमें आम जनमानस भी सहभागिता करेंगे। लेकिन इस रेडियो के माध्यम से जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, हम यही कहेंगे कि आने वाली पीढ़ी के लिए और धरती को इस आग की भट्टी रूप के से बचाने के लिए, यानी ये आग का गोला ना बन जाए उससे बचाने के लिए, हमें और आपको पेड़ लगाने होंगे, वृक्षारोपण करना होगा। सोचिए, 145 करोड़ जनसंख्या है और अगर एक साल में एक व्यक्ति ने एक पेड़ भी लगाया, उसकी देखभाल कर ली, तो 145 करोड़ पेड़ हमारे भारत में लग जाएंगे तो यकीनन तापमान पे अंतर आएगा, तापमान कम होगा, धरती हरी भरी होगी और हम आश्चर्य कर सकेंगे कि वास्तव में ऊपर वाले ने कितनी अच्छी वातावरण, कितनी अच्छी पृथ्वी का उपहार हमें दिया है।

वाकई पर्यावरण को बचाना है और आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। और आकाशवाणी का भी श्रोताओं पर्यावरण अभियान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस वर्ष आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूर्ण करने की ओर अग्रसर है। आकाशवाणी ने पर्यावरण अभियान में सहभागिता की है, उसने जन जागरूकता कार्यक्रमों, विशेष वार्ताओं, कृषि और ग्रामीण प्रसारणों के माध्यम से विश्व पर्यावरण के विकास और संरक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं।

0: जी हाँ, आकाशवाणी 8 जून 2026 को अपने 90 वर्ष पूर्ण कर रहा है। 8 जून 1936 से शुरू हुआ ये सफ़र आज तक जारी है और आकाशवाणी ने विभिन्न अभियानों में अपना विशेष योगदान दिया है। बात कर रहे हैं हम पर्यावरण दिवस का उपलक्ष्य में, वृक्षारोपण अभियान में, कृषि को बढ़ावा देने में, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवसों का प्रचार करने में भी आकाशवाणी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों से प्रसारित होने वाले किसानों के लिए जो कार्यक्रम होता है, हमारे केंद्र से भी कृषि जगत कार्यक्रम होता है और केंद्रों पर इसका नाम विभिन्न विभिन्न हो सकता है, जैसे किसान वाणी, किसानों के लिए बहुत से कार्यक्रम हैं। और उसके अलावा पृथ्वी दिवस, वन महोत्सव दिवस जैसे विशेष अवसरों पर चर्चा, साक्षात्कार और संगोष्ठियों का प्रसारण भी करके जन जागरूकता फैलाई जाती है। इसके अलावा मौसम की सटीक जानकारी, आंधी तूफान की चेतावनी और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव के उपायों का प्रसारण भी आकाशवाणी द्वारा किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि आकाशवाणी पर्यावरण जनधन की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है और 1936 से लेकर आज तक बहुत से जनप्रतिनिधि, व्यक्तित्व, साहित्यकार, इतिहासकार और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, यानी भारत का हर नागरिक, कहें क्या अब तो दुनिया का हर कोई व्यक्तित्व या व्यक्ति आकाशवाणी से जुड़ सकता है और जुड़ा रहा है। तो ऐसे ही आकाशवाणी के 90 साल श्रृंखला के अंतर्गत आज आपको सुनवाते हैं तहसील स्वार जनपद रामपुर के साहित्यकार सेवानिवृत्त अध्यापक श्री रामवतार कुमुद से उनके विचार, उन्हीं के जुवानी।
1: मैं सुहार जनपद रामपुर से रामवतार कुमुद, मुझे प्रसन्नता है कि आकाशवाणी ने 8 जून 1936 से वर्ष 2026 में 90 वर्ष पूरे कर लिए। इस उपलक्ष्य में आकाशवाणी रामपुर की ओर से रंगोली मंडप में आकाशवाणी से जुड़े कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। कलाकारों और श्रोताओं ने अपने अनुभव साझा किए। आकाशवाणी रामपुर से मेरा भी जुड़ाव रहा है। मेरा पहला कार्यक्रम वर्ष 1981 में मेरी पसंद का प्रसारण हुआ। इस कार्यक्रम के लिए मैं आकाशवाणी कई बार गया। श्री शराफत यार खां और ज्वाला प्रसाद जी ने इस कार्यक्रम से संबंधित अनेक प्रश्न किए, गीत सुने और फिर मेरा पहला कार्यक्रम स्वीकृत हो गया। इसके बाद से युववाणी के अंतर्गत काव्य पाठ, काव्य गोष्ठियाँ, वार्ताएं, परिचर्चाएं, कहानियां, गीतों भरी कहानी प्रसारित होते रहे। उम्र बढ़ने के साथ ही जनरल प्रोग्राम में वार्ताएं और काव्य पाठ कार्यक्रम होते रहे। ये सिलसिला वर्ष 2018 तक चलता रहा। मेरी ज्यादातर रिकॉर्डिंग श्री राम कुमार सक्सेना जी ने की थी। जनाब जुबैर रिजवी केंद्र निदेशक और मोहम्मद अली मौज, विनोद आनंद दयाल, श्रीमती रजनी सांघी और श्रीमती अंजलि वाजपेयी उद्घोषक थे। कृषि जगत को श्री राम स्वरूप गंगवार, स्वास्थ्य संदेश को श्री राजेश कुमार, नाटकों को श्री ज्वाला प्रसाद और बच्चों के प्रिय श्याम मोहन उर्फ चीकू भैया थे। आकाशवाणी रामपुर में नाटक बड़ी मेहनत लगन से तैयार किए जाते थे। इसमें श्रीमती मनदीप कौर, श्री असीम सक्सेना की प्रस्तुतियों की कार्यकुशलता की प्रशंसा कहाँ तक की जाए। आकाशवाणी रामपुर को उन्नति के शिखर पर ले जाने में सराहनीय योगदान रहा है। आकाशवाणी रामपुर के माध्यम से मैं भी अनेक विद्वान मनीषियों के संपर्क में आया, जिनसे मुझे साहित्य सेवा की प्रेरणा मिलती रही। नए नए कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों के साथ आकाशवाणी रामपुर की यात्रा निर्बाध निरंतर चलती रहे। मेरी ओर से आकाशवाणी रामपुर को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
0: श्रोताओं, ये थे तहसील स्वार से सेवानिवृत्त अध्यापक और साहित्यकार श्री रामतार कुमुद, जो अपने अनुभव आकाशवाणी रामपुर के प्रति बता रहे थे। कई वर्षों से आकाशवाणी रामपुर से जुड़े रहे हैं और अब सेवानिवृत्ति के बाद साहित्य सृजन और आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम सुन रहे हैं। वास्तव में ये सफ़र अच्छा रहा और ऐसे ही आगे अच्छा रहेगा और बहुत से भी हमारे साथी नए नए जुड़ रहे हैं। और हम आपको बता दें कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी रामपुर वाकोथॉन का आयोजन कर रहा है, जो सुबह 6 बजे से शुरू होगी आकाशवाणी रामपुर के परिसर से और अंबेडकर पार्क तक जाएगी। तो इसके लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और पंजीकरण के लिए जो लिंक है वो आकाशवाणी रामपुर के फेसबुक पेज पर उपलब्ध है, आप वहां जाकर पंजीकरण कर सकते हैं और हमारे इस अभियान के साथ जुड़ सकते हैं।

ऐसे ही याद करते रहिए हमें और आकाशवाणी को, और लिखते रहिए पत्र ज़रूर कि कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं। पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है और आप अपने पत्र, आपका पत्र मिला कार्यक्रम में सुनते भी हैं। तो ये सिलसिला जारी रखिए और गुनगुनाते रहिए इस गीत को।

श्रोताओं, अब डालते हैं एक नज़र 5 जून के इतिहास पर। 5 जून 2017 में सबसे भारी रॉकेट GSLV Mark D-3 का सफल प्रक्षेपण हुआ था। भारत के प्रसिद्ध टेनिस प्रशिक्षक और पूर्व टेनिस खिलाड़ी रमेश कृष्णन का जन्म 5 जून 1961 में हुआ था। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता रहे NM जोशी का जन्म 5 जून 1879 में हुआ था। ललित निबंध में विशिष्ट योगदान के लिए जाने जाने वाले कुबेरनाथ राय का निधन 5 जून 1996 में हुआ। प्रतिभाशाली गजल और गीत गायक मास्टर मदन का निधन 5 जून 1942 में हुआ था। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि कल सिनेमा जगत के मशहूर निर्माता और CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज नेलानी का निधन हो गया है। जी हाँ, सिनेमा जगत में इस वक्त एक बहुत दुख का माहौल है। मशहूर निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पहलाज नेहलानी का निधन कल सुबह हो गया है। वो सेंसर बोर्ड में अपने सख्त रवैये के लिए जाने जाते रहे हैं। 76 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिसकी वजह से सिनेमाई गलियारे में शोक छा गया है। अपने बेबाक अंदाज के लिए पहलाज नेहलानी काफ़ी जाने जाते थे। उन्होंने सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष के बाद कई फैसले ऐसे लिए जिसकी चर्चा आज भी की जाती है। लंबे समय से पहलाज नेहलानी लीवर सोरोसिस की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। ऐसे में इस समस्या के कारण वो जिंदगी की जंग हार गए और इस दुनिया को अलविदा कह गए। गौर किया जाए, बतौर प्रोड्यूसर पहलाज नेहलानी के करियर की तरफ तो उन्होंने 1980 में आई फिल्म हथकड़ी से और अपने फिल्म मेकिंग का सफ़र का आगाज किया था। इसके बाद उन्होंने आंधी, तूफान, गोविंदा की आंखें और शोला शबनम और अभिनेता अक्षय कुमार की अंदाज जैसी कई हिट फिल्मों का निर्माण किया था। इसके अलावा उन्होंने गोविंदा का जो करियर बनाया उसमें उनके द्वारा निर्मित इल्ज़ाम फिल्म का महत्वपूर्ण भूमिका है। आज यानी 2:03 पहलाज नेहलानी का अंतिम संस्कार किया जाएगा मुंबई के सांता क्रूज शमशान घाट पर। तो उनके द्वारा निर्मित फिल्म इल्ज़ाम का गीत सुनते हैं, जिसने गोविंदा के कैरियर में 4 चांद लगाए।

श्रोताओं, हमारा आपका प्यार तो पहला नहीं है, ये तो 1936 से बना हुआ है और ऐसे ही आगे बना रहे, ऐसी ईश्वर से कामना है। बस आपको करना क्या है, अपने पत्र हमें भेजने हैं कार्यक्रमों के बारे में, कैसा लगा इस बारे में। आप हमें पत्र भेज सकते हैं, आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन 244901 के पते पर। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है patramila@rampur.gmail.com। अब आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम समाप्त करने की अखिलेश सक्सेना को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने को हैं। कुछ ही देर में समाचार प्रभात का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।

0: बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्व

0: अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
1: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसार।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के

0: साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को पांचवी पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
2: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के दूसरे स्तर संघचालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है। किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है। सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन। पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है। क्या हम सुन रहे हैं? पहले मौसम बदलता था, अब बिगड़ता है। प्रकृति से सिर्फ लिया, कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
4: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch-rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stones for various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. A report from our correspondent.
6: In a major boost to regional infrastructure, Prime Minister Narendra Modi will dedicate key packages of 8-lane Vadodara-Mumbai Expressway to the nation today, significantly enhancing connectivity between Gujarat and Maharashtra. The Prime Minister will also lay the foundation stone for the four-laning of critical sections of National Highway 56 to improve access to tribal regions and Statue of Unity. Catering to public welfare, the Prime Minister will also inaugurate a modern 200-bedded ESIC hospital in Surat, equipped with round-the-clock emergency and trauma care. In addition to this, several critical utility and industrial infrastructure projects will also be launched today, including the transmission network expansion in Gujarat, advanced effluent disposal system at Dahej, and Sarigam GIDC modern power distribution upgrades in Valsad. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
5: Prime Minister Modi has called upon athletes participating in World Yogasan Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yog 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said the Ministry of Ayush has launched the Yog 365 campaign to encourage year-round engagement with yoga and promote healthier lifestyles across communities.
7: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने योगा 365 अभियान शुरू किया है। मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी

0: And its editorial titled Funding India's Climate Future, a Trillion Dollar Question. The Hindu writes that India will require roughly $2.5 trillion by 2030 to meet its nationally determined contributions. Over the longer term, the cost of achieving net zero emissions by 2070 is estimated at $10.1 trillion, nearly three times India's current GDP. And finally, in what climbers are calling a miracle, 52-year-old Sherpa guide, who was presumed dead at Mount Everest after he vanished during descent on May 29th, was found alive 6 days after base camp, reports the Times of India under the headline, Sherpa survives 6-day Everest ordeal, sans food, oxygen. And with that, it's back to you, Naresh.
1: Thank you, Pramod. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says U.S. pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of men's under-18 Asia Cup hockey tournament in Japan today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन जा रहे हैं, जहां वो तकरीबन 21,800 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी योग आसन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स पर जोर दिया है कि वो आयुष वजारत की योग 365 मुहिम के सफीर बने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी दो माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। लोकसभा के साबिक सेक्रेटरी जनरल और आईनी माहिर सुभाष सी कश्यप का नई दिल्ली में इंतकाल हो गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका के दबाव से भारत रूस ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे। उन्होंने भारत को एक काबिल भरोसा साझेदार करार दिया है। और जापान में आज 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सूरत जा रहे हैं, जहां वो सड़कों, बिजली और सनती शोबों में 18,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। जनाब मोदी पहले हाजिरा जाएंगे और सनती और बुनियादी ढांचे के मौजूदा प्रोजेक्टों का जायजा लेंगे। वजीर आजम दोपहर को एक बड़े जलसायाम से खिताब करेंगे। जनाब मोदी शाम को दमन जाएंगे और तकरीबन 2,970 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: इलाकाई बुनियादी ढांचे को खास तौर से फरोग देने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 8 लेन वाले वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे, जिससे गुजरात और महाराष्ट्र के दरमियान कनेक्टिविटी बेहतर होगी। वजीर आजम कबाइली खित्तों और मुजस्मा इत्तेहाद तक रसाई को बेहतर बनाने के लिए कौमी शाहराह 56 पर अहम हिस्से को 4 लेन बनाने का संगे बुनियाद भी रखेंगे। अवामी फलाह बहबूद की खातिर वो सूरत में एक जदीद 200 बिस्तर वाले ESIC अस्पताल का भी इफ्तिताह करेंगे, जो 24 घंटे इमरजेंसी और ट्रॉमा खिदमात फराहम करेगा। इसके अलावा मुख्तलिफ अहम और सनती बुनियादी ढांचे से मुतालिक प्रोजेक्टों का भी आगाज किया जाएगा, जिनमें गुजरात में तरसीली निजाम की तौसी और वलसाड़ में बिजली की तकसीम की जदीद कारी शामिल है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आलमी योग आसन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स पर जोर दिया है कि वो जब अपने अपने वतन वापस जाएं तो आयुष वजारत की योग 365 मुहिम के सफीर बने। अहमदाबाद में चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आयुष की वजारत ने योग के साथ पूरे साल सरगर्मियों की हौसला अफजाई करने और सभी तबकों में सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देने के लिए योग 365 का आगाज किया है।
4: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
2: वजीर आजम ने कहा कि ये चैंपियनशिप खेल मुकाबले से कहीं ज्यादा आगे बढ़कर है और इससे दुनिया भर में योग के वसी तर पैगाम की तशहीर का मौका फराहम हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी दो माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में माली पॉलिसी कमेटी की जानिब से किए गए फैसलों का ऐलान करेंगे। छह अरकान पर मुश्तमिल माली पॉलिसी कमेटी ने बुध के रोज तीन रोजा तबादला ख्याल का सिलसिला शुरू किया था। अप्रैल में रिजर्व बैंक ने अपनी अहम पॉलिसी शरह में कोई तब्दीली नहीं की थी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
5: सरकार ने फ्राद जर की शरह पर मबनी अशिया सारफीन की कीमतों का इशारिया 4% तय किया है। मरकजी बैंक के लिए इसकी बालाई हद 6% और निचली हद 2% रखी गई है। अप्रैल के महीने में अशिया सारफीन की कीमतों का इशारिया मामूली बढ़कर 3.48% हो गया और ऐसा सोने और चांदी के जेवरात के साथ साथ रसोई की कुछ अशिया की कीमतें बढ़ने की वजह से हुआ। चूंकि अशिया सारफीन की कीमतों का इशारिया तय की गई हदूद के अंदर है, लिहाजा इक्तसादी माहिरीन ये उम्मीद कर रहे हैं कि अहम शरह सूद 5.25% की सतह पर ही बरकरार रहेगी। उनका यह भी कहना है कि मगरबी एशिया महास आरआई की वजह से इफरात जर की शरह और माशी तरक्की को लाहक चैलेंजेस के तनाजुर में रिजर्व बैंक मोहतात रवैया अख्तियार करेगा। मुंबई से जीवन भावसार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
2: लोकसभा के साबिक सेक्रेटरी जनरल और आईनी माहिर सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में इंतकाल हो गया। वो 97 साल के थे और तवील अरसे से बीमार थे। डॉक्टर कश्यप साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सरबराही वाली आला सतह की उस कमेटी में शामिल थे जो एक साथ इंतखाबात कराए जाने के बारे में कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए तश्कील दी गई थी। वो 1983 से लेकर 1990 तक लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर फायज रहे। डॉक्टर कश्यप 100 से ज्यादा किताबों के मुसन्निफ थे। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने उनके इंतकाल पर रंजोगम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि डॉक्टर कश्यप ने अपने मुताले इल्म तसानीफ और अवामी खिदमत के जरिए भारत के आईन और पार्लियामानी जमहूरियत की सूझबूझ के सिलसिले में गरां कदर रोल अदा किया। तकर्रियों से मुतालिक काबीना कमेटी ने 1987 बैच के रिटायर्ड आईएएस अफसर तरुण कपूर की वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुशीर की हैसियत से मुद्दत कार में एक साल की तौसी को मंजूरी दे दी है। अमले और ट्रेनिंग के महकमे ने मुत्तला किया है कि वजीर आजम के दफ्तर में जनाब कपूर की तौसी शुदा मुद्दत कार एक साल के लिए इस माह की 10 तारीख से शुरू होगी। तकर्रियों से मुतालिक काबीना कमेटी ने वाशिंगटन में आलमी बैंक हेडक्वार्टर में नीलकंठ मिश्रा की बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तकर्री को मंजूरी दे दी है जिसकी मुद्दत कार 3 साल होगी। अमले और ट्रेनिंग के महकमे ने मुत्तला किया है कि जब तक नए अहदेदार जिम्मेदारी नहीं संभालते हैं तब तक परमेश्वरन अय्यर की मुद्दत कार में तौसी भी दी गई है। आंध्र प्रदेश में एनडीए इत्तेहाद ने राज्यसभा की 4 खाली सीटों में से 3 तेलुगु देशम पार्टी को और 1 जनसेना पार्टी को देने का फैसला किया है। कल रात अमरावती में एनडीए के इत्तेहादियों के साथ मीटिंग के बाद वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इस फैसले का ऐलान किया। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रूस की कलीदी साझेदारी की सताइश की है और जोर देकर कहा है कि रूस के साथ अपना इश्तराक कम करने के लिए भारत पर दबाव डालने की मगरबी मुल्कों की कोशिशें लाहासिल हैं और इनसे आलमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंच रहा है। सरकर्दा आलमी खबर रसा एजेंसियों के सरबराहों के साथ गुफ्तगू में सदर पुतिन ने भारत की मुआशी तरक्की और उसकी आजादाना खारजा पॉलिसी को सराहा और कहा कि रूस भारत के साथ अपने इक्तसादी राब्तों को वसत देने का पाबंद है। सदर पुतिन ने कहा कि भारत की मुआशी तरक्की उस मेहनत का नतीजा है जो भारत सरकार वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में कर रही है। روس کے صدر نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کے ساتھ بھارت کے سفارتی رابطوں سے روس کے ساتھ

0: वजीर आजम आज गुजरात दादर नगर हवेली में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने अपने सफाए अव्वल पर जगह दी है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी का यह बयान भी नुमाया अहमियत के साथ शाया हुआ है कि खुद किफालत के लिए मुतबादिल तवानाई जरूरी है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF के तआवुन से बने डिजिटल पोर्टल का ऐलान। मगरबी बंगाल की कानूनसाज असेंबली ने कौमी ई विधान एप्लीकेशन के नफाज के लिए मुफाहमत पर दस्तखत किए। कुछ बैन अलावामी खबरें इस तरह से हैं। अमरीकी कांग्रेस ने ट्रंप की आमरियत को रोका। तुर्की और सऊदी अरब की आबनाए हुरमुस के मुतबादिल के तौर पर रेल रूट पर गुफ्तगू।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन जा रहे हैं, जहां वो तकरीबन 21,800 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वजीर आजम ने आलमी योग आसन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स पर जोर दिया है कि वो आयुष वजारत की योगा 365 मुहिम के सफीर बने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी दो माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। लोकसभा के साबिक सेक्रेटरी जनरल और आईनी माहिर सुभाष सी कश्यप का नई दिल्ली में इंतकाल हो गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमरीका के दबाव से भारत रूस ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे। और जापान में आज 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 8:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम 100.9 मॉर्निंग हिट्स।

0: अभी आपने गुरदीप और दलेर मेहंदी को सुना। फिल्म थी विकी विद्या का वो वाला वीडियो।
1: मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
3: देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: उलझिए, अब सुनिए शिल्पा राव और विशाल ददलानी को फिल्म पठान में।

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना रोमी की आवाज़ में। और लीजिए अब सुनिए मधुवंती बागची की आवाज़ में फिल्म हाउसफुल 5 का गीत।

0: चमका।
1: अभी आपने सुना अरिजीत सिंह और जोनिता गांधी की आवाजों में फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से। बोली जी कार्यक्रम के अंत में सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में एक गीत, फिल्म है सेम बहादुर।
2: इतनी सी बात

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:15 होने को हैं। कुछ ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से होगा।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अयोध्या और गौतम बुद्ध नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अयोध्या जिले की हलचल। आलेख और स्वर है तन्मय सोनी का।
2: राम मंदिर परिसर स्थित नवनिर्मित मां भगवती मंदिर के शिखर पर साध्वी निरंजन ज्योति और साध्वी रितंबरा ने वैदिक मंत्र उच्चारण के बीच धन ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ ही मातृ शक्ति भी मौजूद रही। दोनों साध्वियों ने इसे राम मंदिर आंदोलन के लंबे संघर्ष, त्याग और सनातन स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा का प्रतीक बताया। ध्वजारोहण के साथ पूरा परिसर जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। रामनगरी अयोध्या को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी सौगात दी है। जिले के मौसीवाला क्षेत्र में 17.72 करोड़ रुपए की लागत से लौकुश पार्क विकसित किया जाएगा। कचरे से कला थीम पर बनने वाले इस पार्क में स्क्रैप सामग्री से रामायण के प्रमुख प्रसंगों को 3D इंस्टॉलेशन के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। आधुनिक साउंड लाइट शो, डिजिटल तकनीक और इंटरएक्टिव मॉडल के जरिए श्रद्धालु रामायण काल के विभिन्न प्रसंगों से साक्षात कर सकेंगे। पार्क में आकर्षक उद्यान, वॉकवे, बैठने की व्यवस्था और सुरक्षा सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। नगर आयुक्त जयंत कुमार ने बताया कि
3: अयोध्या नगर निगम के द्वारा राज्य स्मार्ट सिटी अंतर्गत 17.72 करोड़ का लौकुश पार्क वेस्ट टू वंडर पार्क स्वीकृत हुआ है।
2: अयोध्या में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई। सिविल लाइन ईदगाह सहित सभी मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज सकुशल संपन्न हुई। DM शशांक त्रिपाठी और SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने स्वयं व्यवस्थाओं की निगरानी की। सुरक्षा व्यवस्था के तहत ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई और पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। नमाज के दौरान देश दुनिया में अमन, शांति और भाईचारे की दुआ मांगी गई। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने अयोध्या में विभागीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी और नकल विहीन बताया। मंत्री ने कहा कि करीब 54 लाख विद्यार्थियों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में हिस्सा लिया और पूरे प्रदेश में कहीं भी पेपर लीक जैसी घटना सामने नहीं आई। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में आयोजित भव्य पासिंग आउट परेड के 7वें बैच के 835 अग्निवीरों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर भारतीय सेना में कदम रखा। समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों को सम्मानित किया गया। प्रशिक्षण अवधि में जवानों को आधुनिक युद्ध कौशल, शारीरिक दक्षता और सैन्य मूल्यों का प्रशिक्षण दिया गया। परेड की समीक्षा ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने की और जवानों के उज्ज्वल भविष्य की कामना। ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने कहा,
4: 835 अग्निवीर जो है वो पासिंग आउट होके अपनी अपनी यूनिटों में ज्वाइन करेंगे।
2: अयोध्या नगर निगम ने विशेष सफाई अभियान शुरू किया है। राम की पैड़ी और नया घाट से अभियान का शुभारंभ हुआ। नगर निगम क्षेत्र के लगभग 400 स्थानों पर एक साथ सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें हजारों सफाई कर्मियों सभी वार्डों के पार्षद शामिल हुए। नगर निगम ने शहर वासियों से भी स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने आह्वान किया कि निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में इक्ष्वाकु वंश की विशेष हाईटेक गैलरी बनाई जाएगी। डिजिटल तकनीक के माध्यम से भगवान श्री राम की 63 पीढ़ियों का इतिहास दर्शाया जाएगा। दर्शक डिजिटल प्रतिकृतियों के जरिए राजाओं के शासनकाल, धार्मिक महत्व और वंश परंपरा की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह गैलरी नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी। राम मंदिर निर्माण के बाद अब अयोध्या में निवेश का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। अमिताभ बच्चन के बाद अब अभिनेता रणबीर कपूर ने भी विगत दिन तिहरा मांझा क्षेत्र में 2.42 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। बताया जा रहा है कि यह भूखंड राम मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित है। इससे अयोध्या में रियल इस्टेट और निवेश गतिविधियों को और गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। गंगा दशहरा और बड़े मंगल के अवसर पर अयोध्या के सरयू घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने सरयू में स्नान कर पूजा अर्चना और दान पुण्य किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा दशहरा के दिन स्नान और पूजा करने से पापों का नाश होता है तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। पर्व को लेकर घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए और पुलिस प्रशासन लगातार निगरानी करता रहा। अयोध्या में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। श्रद्धालुओं और आम लोगों की सुविधा के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर जल प्याऊ और ORS वितरण के केंद्र स्थापित किए गए हैं।
1: अयोध्या जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विशाल धर दुबे का।
5: म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग लाइंग ने गौतम बुद्ध नगर के NTPC लिमिटेड की अनुसंधान एवं विकास इकाई NTPC एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस का दौरा किया, जिसमें म्यांमार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहा। इस मौके पर NTPC लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह तथा NTPC नेट्रा के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक ने प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रपति एवं प्रतिनिधि मंडल को NTPC की विकास यात्रा, म्यांमार में कंपनी की पूर्व गतिविधियों तथा वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को समर्थन देने वाली अनुसंधान, नवाचार और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी से जुड़ी पहलों के बारे में जानकारी दी गई। प्रतिनिधि मंडल ने नेट्रा की अत्याधुनिक इन हाउस पायलट सुविधाओं का भी अवलोकन किया, जिसमें बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, ग्रीन हाइड्रोजन हब तथा कृषि एवं नगर ठोस अपशिष्ट गैसीकरण से विद्युत संयंत्र शामिल था। राष्ट्रपति ने NTPC के स्वच्छ ऊर्जा पहलों में विशेष रुचि दिखाई। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्रेटर नोएडा स्थित बैटरी पुनर्चक्रण एवं महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण क्षेत्र की कंपनी लोहम के अत्याधुनिक संयंत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कंपनी की तकनीकी क्षमताओं, बैटरी रिसाइकलिंग प्रक्रियाओं और भारत में हरित ऊर्जा एवं सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका की सराहना की। दौरे के दौरान मंत्री ने लिथियम आयन बैटरी के पुनर्चक्रण, महत्वपूर्ण खनिजों की रिकवरी तथा ऊर्जा भंडारण समाधानों से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं का अवलोकन किया। कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें अत्याधुनिक तकनीकों, उत्पाद क्षमता और भविष्य की विस्तार योजनाओं की जानकारी दी। श्री बैसरों ने कहा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में बैटरी रिसाइकलिंग और महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति देश की आत्मनिर्भरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की नवाचार आधारित कंपनियां भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। दौरे में मंत्रालय और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, बैटरी आपूर्ति श्रृंखला तथा उभरती प्रौद्योगिकी के विकास पर भी चर्चा हुई। गर्मी की छुट्टियों में जनपद गौतम बुद्ध नगर में बच्चों में शिक्षा के साथ खेल प्रतिभा को निखारने के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन कर युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। जिलाधिकारी ने प्रतिभागी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि शतरंज मानसिक विकास, धैर्य, एकाग्रता एवं रणनीतिक सोच को विकसित करने वाला महत्वपूर्ण खेल है। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रतियोगिता में जनपद के विभिन्न विद्यालयों एवं संस्थानों से खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी दिनों में अलग अलग स्थानों पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।
6: इस गर्मियों की छुट्टियों में विभिन्न हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट द्वारा अरेंज किए जा रहे हैं एंड सभी बच्चे आमंत्रित हैं। पूरे गौतम बुद्ध नगर के सभी बच्चों के लिए काफी सारे टूर्नामेंट्स हैं एंड पार्टिसिपेट करें एंड इसमें गर्मी का भी विशेष रूप से हम लोगों ने ध्यान रखा है।
5: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की FCOM होल्डिंग लिमिटेड और एयर इंडिया SATS एयरपोर्ट सर्विसेज के साथ त्रिपक्षीय साझेदारी हुई। इस समझौते के तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर कार्गो संचालन को विकसित और विस्तारित किया जाएगा, जिससे उत्तर भारत में एयर कार्गो कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। इस साझेदारी के तहत AFCOM अपने मालवाहक विमानों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बेस करेगा और यहां से फ्रेटर सेवाओं का संचालन करेगा। इससे एयरपोर्ट को उत्तर भारत के प्रमुख लॉजिस्टिक और कार्गो हब के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। समझौते के दायरे में तीनों संस्थाएं मिलकर संभावित अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की पहचान करेंगी और कार्गो मांग एवं फ्लो के आधार पर मजबूत नेटवर्क प्लान तैयार करेंगी। साथ ही परिचालन और इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकताओं के समन्वय के साथ संयुक्त मार्केटिंग रणनीति भी बनाएंगी, ताकि एयर कार्गो संचालन को दीर्घकालिक मजबूती और स्थिरता मिल सके। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मुख्य परिचालन अधिकारी किरण जैन ने कहा कि यह साझेदारी एयरपोर्ट पर मजबूत एयर कार्गो इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि समर्पित फ्रेटर संचालन और उद्योग भागीदारों के सहयोग से क्षेत्र की कार्गो क्षमता को बढ़ावा मिलेगा तथा उत्तर भारत की वैश्विक कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
7: जिले की हलचल, अभी आप सुन रहे थे
0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 9:25 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग।

ये प्रेरक प्रसंग मदर टेरेसा के जीवन से। मदर टेरेसा करुणा, सेवा और मानवता की सजीव प्रतिमूर्ति। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों, रोगियों और असहाय लोगों की सेवा में अर्पित कर दिया। उनके जीवन के प्रेरक प्रसंग हमें मानवता का अर्थ समझाते हैं। मदर टेरेसा पहले एक विद्यालय में अध्यापिका थी। 1946 में दार्जिलिंग की यात्रा के दौरान उन्हें भीतर से एक विशेष पुकार का अनुभव हुआ। उन्होंने इसे कॉल विद इन ए कॉल कहा, अर्थात ईश्वर की विशेष प्रेरणा कि सब कुछ छोड़कर सबसे गरीब और असहाय लोगों की सेवा करें। उन्होंने अपना आरामदायक जीवन त्याग दिया और कोलकाता की झुग्गियों में सेवा कार्य आरंभ किया। कहते हैं, जब हृदय में सेवा का सच्चा भाव जागता है तो जीवन की दिशा बदल जाती है। एक दिन उन्होंने सड़क किनारे नाली के पास एक बीमार और अचेत महिला को देखा। लोग उसे देखकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मदर टेरेसा ने उसे उठाया, उसको साफ किया और अस्पताल ले गई। अस्पताल में पहले उसे भर्ती करने से मना कर दिया गया, पर मदर टेरेसा के आग्रह और दृढ़ता के कारण अंततः उपचार शुरू हुआ। उनका जीवन ये प्रेरणा देता है कि सच्ची सेवा में धैर्य भी आवश्यक है और साहस भी आवश्यक है। 1950 में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य ही था सबसे गरीब, सबसे बीमार और सबसे असहाय लोगों की सेवा। छोटे से प्रयास से शुरू हुई ये संस्था आज भी विश्व के अनेक देशों में सेवा कार्य कर रही है। एक व्यक्ति का छोटा संकल्प भी विश्वव्यापी परिवर्तन ला सकता है। मदर टेरेसा के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार प्राप्त करते समय उन्होंने कहा था कि यदि आप 100 लोगों को नहीं खिला सकते तो एक को ही खिलाइए। अपनी पुरस्कार राशि भी उन्होंने गरीबों की सेवा में लगा दी। सच है कि सच्ची महानता विनम्रता और त्याग में है। एक बार किसी ने उनसे पूछा, हम विश्व में शांति कैसे ला सकते हैं? मदर टेरेसा का उत्तर था, अपने घर जाकर अपने परिवार से प्रेम कीजिए। महान कार्य छोटे छोटे प्रेमपूर्ण कर्मों से बनते हैं। सेवा ही सच्ची पूजा है। हर मनुष्य में ईश्वर का अंश है। प्रेम और करुणा से ही संसार सुंदर बनता है। वो हमें ये प्रेरणा देकर गई कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है।

श्रोताओं, आपको याद दिला दें, आज सवेरे 10:10 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। सवेरे 10:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

मीडियम वेव 376.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। पेशी खिदमत है उर्दू प्रोग्राम। आज इस प्रोग्राम में समात फरमाइए बशीर बद्र साहब पर एक खसूसी प्रोग्राम उजाले उनकी यादों के।

0: आपकी शायरी की सादगी ने ही आपको इतना मशहूर और मकबूल बनाया। आपका पूरा नाम सैयद मोहम्मद बशीर था। 15 फरवरी 1935 में उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिला के बुकिया गांव में आपकी विलादत हुई। बशीर बस साहब ने आगरा यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मेरठ कॉलेज में बतौर उस्ताद अपनी अदबी खिदमात को अंजाम दिया।
1: कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। और दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब भी कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो।
0: जी हाँ, ऐसी ही खूबसूरत अशारों के खालिक बशीर बद साहब, जिन्होंने उर्दू अदब में अपनी बेशकीमती खिदमात को अंजाम दी, 1999 में हिंदुस्तान के मशहूर पद्मश्री और साहित्य अकादमी इनामात से नवाजा गया।
1: आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। क्या खूबसूरती के शायर थे, क्या अशआर पेश करते थे। इसी तरह से आगे कहते हैं, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। बहुत ही गहराई थी आपके शेरों में, आप बहुत खूबसूरत अंदाज में अपनी शायरी करते हैं। कहते हैं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बहुत गहराई पेश करते हैं अपने अशार में।
0: आपकी आमद आहट इकाई कुलियाते बशीर बद्र मशहूर शायरी मजमूए और तसानीफ हैं, जिन्होंने हर खास आम को अपनी मकबूलियत से मुतासिर किया।
1: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और आपके शेरों में दिल को छूने वाली शायरी थी, अशार थे। जब स्टेज पर वो अपनी शायरी पेश करते थे तो और पूरे मुशायरे को वो लूट लिया करते थे और सामीन वाहवाही करते नजर आते थे।

0: जहां मेरा नाम लिखा गया वहीं रोशनाई उलट गई।
1: आप

जहाँ मेरा नाम लिखा गया वहीं रोशनाई उलट गई। तेरी याद आए तो चुप रहूं, जो मैं चुप रहूं तो गजल कहूं। तेरी याद आए तो चुप रहूं, जो मैं चुप रहूं।

राग की वेल, मेरी बंद पलकों पे टूट कर कोई फूल रात बिखर गया। गजल का शेर सुनिएगा।

मुझे सिसकियों ने जगा दिया, मेरी कच्ची नींद चट गई। चंद और दूसरी गजल के जैसे मैंने अर्ज किया था, मुलादा फरमाई। कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई। सुनिएगा,

गई मचराव, कभी हम मिले भी तो क्या मिले, वही दूरियां वही फासले। सुनिए, कभी हम मिले भी तो क्या मिले, वही दूरियां वही फासले, न कभी हमारे कदम बढ़े न कभी तुम्हारी झिझक गई। एक और शेर सुनिए, तुझे भूल जाने की कोशिशें, गजल का जो एक खास मिजाज है वो नज़्र करता हूं कि तुझे भूल जाने की कोशिशें कभी कामयाब न हो सकी। सुनिएगा शेर, तुझे

चक गई तेरी आशा। तुझे

चली तो लचक गई मेरी दास्तां कौरूज था तेरी नर्म पलकों की छांव में।

तेरी आंख कैसे झपक गई, मेरे साथ था तुझे जहां। आखिरी शेर इजाजत चाहता हूं, देखिएगा। तेरे हाथ से, तेरे हाथ से मेरे होंठ तक वही इंतजार की प्यास है।

0: में छलक गई।
1: उनके बेटे तैयब बद्र कहते हैं बशीर साहब को जब ये पता चला कि उन्हें डिमोशिया हो गया है तो उन्होंने मुशायरों में शरीक ना होने का फैसला लिया। उन्होंने कहा था कि वो एक शोमैन हैं और वो चाहते हैं दुनिया उसी बशीर बद्र को याद रखे।

0: थे जिसकी पकड़ हर लफ्ज पर बहुत मजबूत थी।
1: चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है, सुनिएगा, वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है, बहुत अजीज हमें है मगर पराया है, बहुत अजीज हमें है मगर पराया है, उतर भी आओ कभी आसमां के जीनों से, तुम्हें खुदा ने हमारे लिए बनाया है। उतर भी आओ कभी आसमां के जीनों से, तुम्हें खुदा ने हमारे लिए बनाया है। हजरत ये शेर सुनिएगा, आप शेर सुनाता हूं आपको, कि तमाम उम्र मेरा दम इसी धुएं में घुटा। शेर सुना, तमाम उम्र मेरा दम इसी धुएं में घुटा, वो एक चिराग था मैंने उसे बुझाया है। तमाम उम्र मेरा दम इसी धुएं में घुटा, वो एक चिराग था। अब शेर सुन रहे हैं तो मैं धीरे धीरे आपको शायरी तरफ लाता हूँ, मुलाद फरमाइए, सुनिएगा कि आंखों में रहा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा,
2: आंखों में रहा दिल में।
1: दूसरा मिसा देखेगा कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, और बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। और शेर अर्थ है कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा।
2: वाह बहुत अच्छा, वाह।
1: जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, और ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, सुनिए शेर, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा।
3: और इस तरह से 28 मई 2026 को आपने इस दुनियाई फानी को अलविदा कहा। बेशक आपका जाना उर्दू अदब के साथ गजल के शायकीनों के लिए भी एक बड़ा नुकसान है।
0: ये शाम, ये सुबह, ये सूरज और ये दोपहर, ये सारे आते जाते रहेंगे, लेकिन जो कमी बशीर बद्र साहब की हो गई वो खला पूरा नहीं होगा। हमारे, आपके और सबके दिलों की धड़कन, दिलों की यादों में वो मौजूद रहेंगे और उनकी किताबों में वो मौजूद रहेंगे। बशीर बद्र साहब की अनगिनत किताबें, अनगिनत उनके अशार हमारे और आपके बीच गूंजते रहेंगे गज़लों में, और बहुत से गुलूकारों ने आपकी गज़लें गाई हैं और एक पहचान बनाई है। बशीर बद्र साहब की आवाज़ तो नहीं थी, लेकिन आवाज़ मुख्तलिफ गुलूकारों की थी, जैसे जगजीत सिंह थे, तलत अज़ीज़ साहब थे, मेहंदी हसन साहब थे, और अनगिनत जो गुलूकार थे आपने गाई और बहुत नाम कमाया बशीर बद्र साहब की गज़लों से।

आपके नूतन कार्यक्रम में आप सभी को अखिलेश सक्सेना का नमस्कार। श्रोताओं, आज हम गीत सुनवा रहे हैं आपकी पसंद के, और ये प्रोग्राम समर्पित कर रहे हैं जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर और CVFC के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाज नेहलानी को। जी हाँ, कल उनका 76 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। उन्होंने बहुत सी फिल्मों को बनाया और बहुत से एक्टर्स को लॉन्च किया, जिसमें प्रमुख रूप से गोविंदा और चकी पांडे हैं। गोविंदा को लॉन्च किया था इल्जाम फिल्म से और चकी पांडे को लॉन्च किया था उन्होंने आगे आग फिल्म से। तो आप सभी की पसंद पर आई सबसे पहले सुनते हैं उनके द्वारा निर्मित फिल्म हथकड़ी का गीत, आशा भोंसले की आवाज में। इस गीत को पसंद किया आप सभी ने। लदावली मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी, रितिक और आदित्य कसाना। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शवाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शवाना आलम, चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से हिना कैसर और मोहम्मद वकील राही, साथ में हैं फिरोज आलम और नाज प्रवीण। मोहल्ला हलवाइयान शिरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर। डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा। गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार खां, रजिया खान, शिमरन खान, रूमा खान, बॉबी खान, शमा खान, मिक्की खां, बुशरा खान और आसिम खान। जिला अस्पताल के पास रामपुर से गजन खां, शमा परवीन, शमशद अली आजम, गुलफ शाह, शहनाज, बाबू अंसारी, रजिया गफार और हबीब अहमद इदरीसी। करबला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान और नाबिद खान। सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी। पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर पीलीभीत से विमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके परिवार के लोग। तो आइए सुनते हैं आप सभी के पसंद पर आशा भोंसले को फिल्म हथकड़ी में।

ओले जी, अब सुनिए कुमार शानू, स्वदेश भोंसले और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में फिल्म आंखें का गीत। गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीत दिया है बप्पी लहरी ने। इस गीत को पसंद किया आप सभी ने। महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोड़के, नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के और उत्तम जमदाड़े। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शिवचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। राजद्वारा रोड मीठा कुमार, रामपुर से रवि रस्तोगी, अर्पित, अभय, रिया और आरुष रस्तोगी। मोरीगेट दिल्ली से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। अफजलपुर पट्टी तहसील सदर रामपुर से राहुल गौतम, दिलीप सिंह, विशाल, चमनलाल, रूमा, मंजू, प्रियंका, शीतल, पूजा, कविता और अंशु गौतम। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगना बरेली से अनोखीलाल मौर्य। पुराना शहर बरेली से सुंदरदेवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोई और स्वाति मौर्य। बस्तौर मुरादाबाद से अतर सिंह सैनी, मुन्नी, पवित्रा, अजय, आंचल, आकांक्षा, आकाश, विक्की, दक्ष, छवि, रुद्र, आयुषी, खमानी सिंह और इनके सभी साथी। दौलाबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी और सायना नदी। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म आंखें का ये गीत।

श्रोताओं, लीजिए आप सुनिए कुमार शानू और अलका याग्निक को फिल्म अंदाज में। गीत लिखा है समीर ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रेहान और माहिरा नूर। खुड़जा से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा। परिमल काजगंज से आवाद खान, नवील खान, आरफा खान, इल्मा खान, आफरीन खान और जमीर खान। जमनी मोहला इस्लामनगर से मुजफ्फर अली खान, मतीन खान, अल्फिया खान और इंशा खान। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। मिलक भूजपुर आशा, जिला मुरादाबाद बड़ी मस्जिद के पास से रजा हुसैन, शाहिद हुसैन, आदिल हुसैन, शहजाद हुसैन, शहनाज भी और आसिया भी। मीरगंज से कल्लू मिस्त्री। पंडित नकला बाईपास मुरादाबाद से डॉक्टर अख्तर हुसैन, बहारुन निशा, असलम हुसैन, डॉक्टर महमूद हसन। बीबीपुर से मकसूद हुसैन और नाजिम अली। कस्बा शीशगढ़ से गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म अंदाज का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
1: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
1: और डोंडी दोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
1: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
2: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शेडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
1: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
2: जी,
1: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
2: जी,
1: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
2: जी,
1: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
2: श्रोताओं, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है। मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
1: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
2: क्या बात है!
1: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
2: क्या बात है! श्रोताओं, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
1: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता
2: जी।
1: है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
2: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
1: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है।
2: जी,
1: यहाँ आज भी लोग पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं।
2: जी,
1: इस डाकघर की स्थापना 5 नवम्बर 1983 को हुई थी।
2: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है, यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाक घर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाक घर किस गांव में पड़ता है?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
2: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
1: कक्षा 4 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है। नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: खास
3: ऐलान।
1: शांत शांत, आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
2: हाँ हाँ महाराज, महाराज बताइए,
4: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर।
2: हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
5: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
6: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
7: जी महाराज, आप बहुत
8: महाराज की जय हो।
9: महाराज की जय हो। महाराज की।

0: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
1: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
0: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
1: महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
0: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
1: इसमें संदेह नहीं है महाराज, कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़ कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़ कर थे।
0: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
1: धन्यवाद महाराज। अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
2: भाई, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हो?
3: मुझे भी नकली मिला। मुझे भी नकली हो सकता
2: यार, क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली? तुम नकली किराया था?
3: नकली ही ना दे सकता।
4: नकली कैसे हो गया?
2: अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया, सभी ने बोला कि नकली है।
0: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
1: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो हम पूछ ले महाराज।
0: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
1: जी, धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज, हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं महाराज।
0: क्या? और कोई शंका?
1: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
0: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
5: महाराज की जय! महाराज की जय! महाराज की जय!
0: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
4: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलारू मैं चल चल।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। यह जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है।

इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है, उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है, इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं, इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं, पूरे घर की सफाई की जाती है, इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं, नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं, उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है, बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है, गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं, दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं, उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं, माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं, उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

0: चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

8 जून 2026 सुबह 6 बजे आकाशवाणी रामपुर के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलिए आकाशवाणी वाकथन 2026 में एक नमन आकाशवाणी की 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को। ये वाकथन बनेगी प्रतीक स्वस्थ जीवन, सामाजिक एकता और श्रोताओं के साथ जुड़े दिल के अटूट रिश्ते का। 90 वर्षों से आकाशवाणी से गूंजती ये आवाज जन जन के मन की सच्ची परवाज। 8 जून को सुबह 6 बजे आकाशवाणी स्टूडियो से अंबेडकर पार्क रामपुर तक हमें चाहिए आपका साथ आकाशवाणी वाकथन 2026 में। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के पिन पोस्ट के डिस्क

डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, जहां से आप अपनी डिटेल फिलअप करके पंजीकरण कर सकते हैं। ऑफलाइन पंजीकरण हेतु आकाशवाणी कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। याद रखिएगा, 8 जून हमारा जुनून।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। अभी आप हमारी प्रथम सभा के प्रसारण सुन रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम धरोहर में। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर वरिष्ठ प्रसारक एवं कमेंटेटर श्री कुलविंदर सिंह कंग की वार्ता।

प्रिय श्रोताओं नमस्कार। विशेष कार्यक्रम सुनते सुनाते 90 साल के इस अंक के साथ मैं हूं मनोज कुमार। श्रोताओ, भारत में आकाशवाणी प्रसारण के 90 साल पूरे हो रहे हैं और हम सब 90 साल के जश्न में गवाह बन रहे हैं। लेकिन आकाशवाणी के इस लंबे सफर के हम सफर रहे हैं बहुत सारे लोग जिनकी मेहनत और लगन से आकाशवाणी का स्वर्णिम कालखंड स्थापित हुआ। हर श्रोता के दिल में जगह बनाई आकाशवाणी के प्रस्तुतकर्ताओं ने, चाहे वे किसी भी रूप में आकाशवाणी से जुड़े रहे हों, चाहे आवाज के जरिए या फिर तकनीकी के जरिए। पर्दे के पीछे बहुत सारे लोगों ने मेहनत की, हर तरह से उनकी मेहनत और समर्पण ने श्रोताओं को आकाशवाणी का मुरीद बनाया। तभी तो आज हम उनके द्वारा सींचे गए पेड़ रूपी आकाशवाणी के 90 साल के सफर का जश्न मना रहे हैं।

0: अगली गेंद फ्लाइटर गेंद बैक टू बॉलर, कैच हो सकता था, कॉटन बोल्ट का चांस था, ड्रॉप हुआ यहां पर, फेलुक वाह ने खेला था चहल की तरफ लेकिन चहल उस गेंद को कैच नहीं कर सके, बहुत अच्छा मौका था। तैयार एक बार फिर से अपने इस ओवर की अगली गेंद लेकर, दाएं हाथ से ओवर द विकेट और आगे बढ़कर उसको ड्राइव करने की कोशिश की, ऑन साइड में गेंद पहुंची, सीमा रेखा से दौड़कर आए फील्डर, उठाया, केवल एक रन मिलेगा, एक रन से संतोष करना पड़ा, दूसरा रन लेने का जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे। और अब काफी देर के बाद 4.06 की औसत से यानी कि 4 के ऊपर औसत पहुंचा है दक्षिण अफ्रीका का 105, 5 विकेट के नुकसान पर अब सामने आ गए मिलर जिन्होंने 15 रन बनाए हैं।
1: वैसे श्रोताओं, कुछ आवाजों का परिचय कराने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उनकी आवाज ही पहचान होती है और रेडियो में सिर्फ आवाज का रिश्ता होता है जो कानों से होकर सीधे दिल में उतर जाता है। श्रोताओं, बिल्कुल भी आपकी बेताबी को नहीं बढ़ाएंगे और सीधे आपसे रूबरू कराते हैं लाखों दिलों की चाहत, लाखों लोगों की कर्णप्रिय आवाज स्पोर्ट्स कमेंटेटर कुलविंदर सिंह कंग जी से। सुनते सुनाते 90 साल के इस अंक में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद और आकाशवाणी रामपुर के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि मैं आकाशवाणी रामपुर के श्रोताओं के साथ रूबरू हो रहा हूँ तरंगों के माध्यम से, स्वर के माध्यम से।
1: सर, आकाशवाणी के 90 साल की लंबी यात्रा के आप भी हम सफर हैं, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि

0: मैं बात कर रहा हूँ सन 1974-75 की, श्रीगंगानगर राजस्थान में। तो हमारे परिवार के लोग सुनते थे, खासतौर पर हमारे माता जी बहुत सुनते थे। और फिर मुझे लगा कि ये जो आवाजें हैं, चाहे वो जसदेव सिंह जी हैं, मुरली मनोहर मंजूल हैं, सुशील दोषी हैं, डॉक्टर नरोत्तम पुरी हैं, और बड़ी बड़ी आवाजें जो हम जिनको सुनते आ रहे थे, जोगा राव, हरमेश मल्होत्रा, हर फील्ड में वो छाए हुए थे। तो उनको लाखों लोग जब सुनते थे तो मेरे दिल में भी एक तरंगे फूटी कि यस, मुझे भी इस फील्ड में आना चाहिए। लेकिन कैसे आया जाएगा ये पता नहीं था, क्योंकि मैं तो सिर्फ इतिहास का स्टूडेंट था और श्रीगंगानगर राजस्थान एक रिमोट एरिया है जहाँ पर क्रिकेट के नाम पर कुछ भी नहीं था उस वक्त, वहाँ क्रिकेट नहीं होती थी। धीरे धीरे मेरा शौक जब पड़ा तो मैं आकाशवाणी में आया, उसकी भी एक बहुत बड़ी दास्तान में किस तरह से आया। मैं लेक्चरर भी लग गया था हिस्ट्री का, लेकिन आकाशवाणी में इसलिए आया कि मुझे यहाँ पर आकर कॉमेंटेटर बनने का मौका मिल सकता है। तो जब आकाशवाणी में आया तो उसके बाद फिर मैंने कमेंट्री शुरू की और मैं हिस्सा बना छोटे मोटे मैचेस, जो रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी तो चलती रही। पहली बार मुझे 27 सितंबर सन 1994 को मुझे मौका मिला, जबकि मैंने पहली बार वनडे किया। और उसके बाद तो फिर एक इतिहास है, आज क्रिकेट के 9 विश्व कप है मेरे नाम, इसके अलावा 350-450 के आसपास टेस्ट मैच, T20, वनडे और IPL के मुकाबले हैं। और दुनिया के जितने ऐतिहासिक मुकाबले हुए, ज्यादातर मुकाबले में मुझे कमेंट्री करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रोताओं को मुझे बहुत प्यार मिला। अगर श्रोताओं को याद हो, 2002 का नटवर ट्रॉफी का फाइनल 13 जुलाई 2002 इंग्लैंड और भारत के बीच लंदन में मुकाबला था, लॉर्ड्स के मैदान पर। इंग्लैंड ने 325 रन बनाए थे और भारत ने उसको 326 रन बनाकर उसको जीता था, जब मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह की बेहतरीन साझेदारी ने भारत को विजेता बनाया। मैं उस मैच की कमेंट्री कर रहा था लॉर्ड्स के मैदान से, लेट श्री सुरेश सरैया जी के साथ, वो अंग्रेजी में कर रहे थे और मैं हिंदी में, जहां पर गांगुली दादा ने, हमारे श्रोताओं को याद होगा, जीत के बाद लॉर्ड्स की बालकनी में शर्ट उतार कर घुमाई थी, वो आज भी टीवी पर बार बार दिखाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो एक ये सौभाग्य मिला। एक पाकिस्तान के दौरे पर गया मैं कमेंट्री करने 2004 में, 15 वर्षों के बाद भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान गई थी। तो पाकिस्तान में जब मुल्तान में सहवाग ने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी तो मेरी ही कमेंट्री में उन्होंने सकलेन मुश्ताक को मिड विकेट पर सिक्सर मारकर 300 रन पूरे किए और भारत के पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने 13 शतक बनाया था। तो आकाशवाणी मेरे दिल में बसती है, आकाशवाणी की जो तरंगे हैं, और जब हम इस पर कॉमेंट्री में करता था तो हिंदुस्तान भर में जितने भी किसान जो खेतों में काम कर रहे हैं, वो जवान जो सीमा पर देश की रक्षा कर रहे हैं, वो सब हमारी कमेंट्री सुनकर बहुत आनंदित होते थे। और हमें सबसे ज्यादा दिलों खुशी होती थी, दिल से खुशी होती थी, जब हमें हिंदुस्तान के लगभग 2-2.5 करोड़ नेत्रहीन लोग जो हमें रेडियो पे सुनते थे कॉमेंट्री, जो हमारी आवाज को हेलो को ही पहचान जाते थे, नमस्कार को पहचान जाते थे कि एक किस कमेंटेटर की आवाज है, हम उनकी जो भावनाएं उनकी कदर करते हुए उनको आंखों देखा हाल सुनाकर हम बहुत खुश होते थे जब उनके फोन आते थे, तो हमें ऐसा लगता था कि हमारा प्रयास सफल हुआ। तो ये आकाशवाणी है जिसने हमें इतने मौके दिए और हम लाखों लोगों तक पहुंच सके, और आज भी लोगों का प्यार बना हुआ है। आज भी मैं जब कमेंट्री करता हूं तो लोगों के मेरे पास फोन आते हैं और मैं पूरी तैयारी करके कमेंट्री करता हूं।
1: बिल्कुल, यही खासियत रही है आकाशवाणी की, रेडियो की, कि लोगों के दिलों पर राज किया है, आवाज का एक रिश्ता कायम किया है। सर, लौटेंगे आपके बचपन के दिनों में और आपसे जानना चाहेंगे श्रोताओं की तरफ से कि थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताइए कि कैसे बचपन में आपने समय गुजारा, कैसे एक कमेंटेटर बनने की आपके दिल में ललक जागी।
0: बचपन में कोई ऐसा उस वक्त हमारा लक्ष्य नहीं था, यही होता था हमारे श्रीगंगानगर जो इलाका है हमारा, वो पाकिस्तान, पंजाब और हरियाणा, इसका बॉर्डर पड़ता था, तो तीनों में एक कॉर्नर पे हम थे। और वहां से हिंदी मीडियम में पढ़ने के बाद हिंदी कम्युनिकेटर बन पाए, और ये तक मैं पढ़ने में होशियार था, टॉपर था हिस्ट्री का, तो लेकिन लक्ष्य कोई नहीं था। हमारे वहाँ ज्यादातर लोगों का ये लक्ष्य होता है कि आप बीए कर लो, नहीं कुछ हुआ तो एमए कर लो, बीएड करके टीचर लग जाओ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लकी रहा, मुझे आकाशवाणी का ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव का जॉब था, उसके लिए मेरा सिलेक्शन हुआ, ये परमानेंट था, लेक्चरर टेम्परेरी था, वो भी मेरा सिलेक्शन हुआ। आकाशवाणी सूरतगढ़ से मैंने शुरुआत की और फिर जो कमेंट्री का सफर मेरा शुरू हुआ, दिल से मैं चाहता था और वो शुरू हो गया, तो लोगों का प्यार मिलता रहा। और आज हॉकी के भी मेरे 5-6 विश्व कप हैं, 4 कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, 450-500 के बीच हॉकी के इंटरनेशनल मैच है। तो एक उस जगह से उठकर जहां से आगे करने को कुछ नहीं था, लेकिन दिल में एक ललक थी, एक आग थी। कहते ना कि जीवन सुख का सपना होगा पर पहले कुछ तपना होगा। हम लोग तपे हुए थे, तप तप के मेहनत करी। आज भी जब मैं कोई मैच करता हूँ तो मैं ऐसे तैयारी करता हूँ जैसे मैं अपना पहला मैच कर रहा हूँ, तो इतनी तैयारी करी जाती है। तो जब आप

0: आई बोलते हैं तो फिर आपको कहीं पेपर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, स्टैटिस्टिशियन भी होते हैं, स्कोरर भी होते हैं, उनसे आपको कुछ मटेरियल लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके जहन में इतना कुछ भरा हुआ होता है, पढ़ पढ़कर इतनी मेहनत की होती है, आंखों देखा हाल जब से मैंने शुरू किया उसके बाद से, आप ये मान के चलिए कि सन 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के बाद से मैंने हर, यानी कि उससे पहले भी था, 1975 के हॉकी के विश्व कप की कमेंट्री सुनी मैंने, जो मलेशिया में भारत ने पाकिस्तान को हराया था 2-1 से, उसके बाद 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में, क्योंकि कनाडा में दिन होता था और भारत में रात थी, रात के 2:30 बजे मैंने न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल मुकाबला हुआ था, आकाशवाणी पे उसकी कमेंट्री सुनी। तो ये चीजें जो 1974-75-76 में जहन में बैठती गई वो उन्हें कमेंटेटर बना दिया। तो ये होगा कि ठीक अब हमें कमेंटेटर बनना है, अब टीचर नहीं लगना, लेकिन टीचर लगते तो भी ठीक था, शिक्षा की लोह फैलाते, लेकिन धीरे धीरे इसमें रहते चले गए। और एक और मैं सुनने वालों को बताना चाहूंगा जो कमेंटेटर बनना चाहते हैं
1: जी,
0: चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे फीफा विश्व कप हो, हॉकी विश्व कप हो, हॉकी के मैच हो, इसके अलावा क्रिकेट विश्व कप हो, जो भी हो, उसके मैं फाइनल मैच को जरूर देखता था, अपनी आंखों से देखता हूँ एक एक बॉल को, ताकि दोबारा कभी आगे चलकर मुझे करने का मौका मिलता है तो मुझे याद रहे कि जैसे 1983 का विश्व कप था, जो कपिल देव ने वो कैच लिया था, किस तरह से वो 25-20-30 मीटर तक पीछे तरफ भागे थे मदन लाल की गेंद पर, तो वो पल मेरे जहन में रहते हैं और उनको फिर हम शब्दों में बयान करते हैं। जो कमेंट्री होती है, सुनने वाले जानते हैं कि इसको कहते हैं आंखों देखा हाल, जो हमें मैदान पर दिखाई दे रहा है वो हम उसको बोलते हैं। इसके अलावा हमारा आकाशवाणी की जो कमेंट्री का मेन उद्देश्य होता है कि जो श्रोता है उसके मस्तिष्क में शब्द चित्र बनाना, उसको ये लगे कि मैं स्टेडियम में बैठा इस वक्त मैच देख रहा हूँ, हमारे शब्दों को सुनकर, हमारी भाषा को सुनकर, हमारे विवरण को सुनकर वो एक कल्पना में खो जाता है कि यस मैदान पर ये कुछ हो रहा होगा जो कमेंटेटर ने बताया है।
1: बिल्कुल सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब आपने खेल कमेंट्री शुरू की तो पहले मैच की जब आप खेल कमेंट्री कर रहे थे तो वो कैसा अनुभव था, श्रोताओं के साथ थोड़ा सा साझा कीजिए।
0: देखिए पहली जो लाइव कमेंट्री थी वो तो बड़ी अजीब बात रही मेरे साथ। श्रीगंगानगर में हॉकी का एक मुकाबला था, कोटा और श्रीगंगानगर बीच फाइनल, तो कमेंटेटर बॉक्स उस वक्त मचान पे बनाते थे, इंजीनियर्स अपने कंसोल लेके जब चढ़े 2-3 घंटे पहले तो मचान टूट गई, उसके बाद एक ट्रक को लाके खड़ा किया मैंने, उसका मुंह मैदान की तरफ किया, मध्य रेखा पे खड़ा था, उसके डाले में बैठ के जहाँ मजदूर बैठे होते हैं, तगारी और फावड़े रखे होते, वहां बैठ के मैंने पहली बार कमेंट्री करी, और उसके बाद लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान से आकाशवाणी के लिए हिंदी में 5 बार कमेंट्री करने का मुझे मौका मिला, और मुझे बताया गया कि हिंदुस्तान में मैं अकेला कमेंटेटर हूँ जिसने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान से 5 बार कमेंट्री कर ली।
1: वाह, बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारे सवाल हैं आपसे पूछने, लेकिन जब कभी कुलविंदर सिंह कंग थकान महसूस करते हैं तो क्या करते हैं?
0: किस तरह की थकान? थकान तो होती नहीं, आई एम रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। अपने आप को मैं किसी बातों में लगाए रखता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल कंग दे रंग, तो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। तो आज रिटायरमेंट के इतने साल बाद भी मैं खाली नहीं बैठता, मैं इस वक्त भी अपने, जब आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपने स्टडी टेबल के ऊपर बैठा हूँ, मैं इस समय मोहाली में हूँ, पंजाब में हूँ, चंडीगढ़ में हूँ, तो मेरे सामने ये नक्शा लगा हुआ है पूरा बहुत बड़ा, जिसमें जीरकपुर है, मोहाली है, चंडीगढ़ है, पंचकूला है, न्यू चंडीगढ़ है, आपको मुल्लापुर का स्टेडियम है, मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है बैठने, तो मैं उसको स्टडी करता रहता हूँ। तो हर चीज की मैं स्टडी करता हूँ, मेरे रिकॉर्ड्स, मेरे आंकड़े मेरी टेबल पे रहते हैं, ऐतिहासिक बातें मेरी टेबल पे रहती है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं अपने आप को कुछ खाली वक्त हो, मैं तो अपने आप को बिजी रखता हूँ, और वो सबसे अच्छा है आपके मस्तिष्क के लिए।
1: बिल्कुल सही बात है। कितनी तैयारी करनी होती है कमेंट्री करने से पहले, जब श्रोताओं को उस अनुभव को साझा करना होता है, श्रोताओं के साथ वो बातें बतानी होती हैं खेल अनुभव के बारे में, तो कितनी तैयारी करके जाते थे कुलविंदर सिंह कंग?
0: देखिए मैंने 2004 में श्रीलंका में एशिया कप की कमेंट्री कर रहा था, मेरे साथ जॉन इब्राहिम ने भी कमेंट्री करी थी कमेंट्री बॉक्स में आके हमारे, तो मैंने वहां जब स्टैटिस्टिशियन से कुछ मांगते थे तो बहुत सारे प्रिंट आउट निकाल के रख देते थे सामने, अंग्रेजी में होते थे, प्रिंट लिया होता था, हमें हिंदी की कमेंट्री करनी है, तो कमेंट्री करते करते आप उसको ट्रांसलेट करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैंने अपनी एक नया विधा निकाली, मैंने एक पेज के ऊपर एक शीट बनाई जिसको लोग आजकल कंग शीट कहते हैं, उस एक पेज के अंदर मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन फीड करता था उसमें कि आप एक पेज से आप किसी एक टीम के लिए 1.5 घंटा तक बोल सकते हैं। तो वो मैं तैयारी कर लेता हूँ, आंकड़े आपके पास होने चाहिए, तैयारी होनी चाहिए और करके ही जाता हूँ, और रेलेवेंट बात होनी चाहिए। मैं श्रीलंका में कमेंट्री कर रहा था, TM दिलशान खेल रहे थे और जहीर खान गेंद डालने लगे तो मैं स्कोर बोर्ड बताया और जहीर खान जा रहे हैं, इसी बीच सचिन ने उसको रोक लिया, बात करने लग गए, 15-20 सेकंड का समय था
1: जी।
0: अब इसमें आप कितनी बार स्कोर बताओ?
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने फिर जो मैंने तैयारी थी वो मेरी शीट में

0: काम आई। तो मैंने लिसनर्स को बताया कि इस समय श्रीलंका की तरफ से 37 के निजी स्कोर पर टीएम दिलशान सामना करेंगे जहीर खान की अगली गेंद का। टीएम दिलशान के बारे में बताना चाहूंगा, ये बहुत अच्छे हिंदी गाने गाते हैं, बहुत अच्छी गिटार बजाते हैं और इनकी धर्मपत्नी श्रीलंका फिल्मों की हीरोइन है। इसी बीच जहीर खान अगली गेंद का बाएं हाथ से ओवर डाले, वो जो गैप फिल करना था मुझे वो मैंने रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ फिल किया। दूसरा टीएम दिलशान सामने था तो उसके साथ ही, यानी कि यहाँ टीएम दिलशान और मैं बात करूँ किसी 1983 के विश्व कप की या गौरव सौरभ गांगुली की बात करने लग जाऊँ तो लिसनर्स को लगे कि हाँ ये तैयारी है, तो लगना चाहिए कि ये आपने तैयारी की। फिर मैंने ये भी कहा कि मैं श्रीलंका में हूँ, श्रीलंका के अगर आकार की बात करें, भूमि के आकार की बात करें, देश के आकार की बात करें, तो ये आंख से गिरते हुए आंसू की तरह लगता है।
1: बिल्कुल।
0: और दूसरी बात यह है कि अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करें, अगर आप दिल्ली से जयपुर जाते हैं तो जयपुर शहर में एंटर होने से पहले ही श्रीलंका चौड़ाई में खत्म हो जाता है, और अगर आप दिल्ली से अमृतसर जाते हैं तो अमृतसर शहर में एंटर होने से पहले श्रीलंका लंबाई में खत्म हो जाता है। इतना ही है श्रीलंका। तो आप उस जगह के बारे में, उस स्टेडियम के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के खान पान के बारे में, वहाँ के ऐतिहासिक जगहों के बारे में इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप बीच बीच में उसको और मजेदार बनाने के लिए आप उसको शामिल कर सकें।
1: बिल्कुल, यही खासियत होती है आपकी कमेंट्री में। और सर आपने बहुत सारे खेल प्रतिस्पर्धाओं की कमेंट्री की है, अच्छा भी लगता है आपको, लेकिन अगर बात कुलविंदर सिंह कंग की करें तो कुलविंदर सिंह कंग को कौन सा खेल खेलना पसंद है?
0: मुझे खेलना तो मैं कोई गेम नहीं खेला। मैं शुरू में थोड़ा खेलता रहा, फुटबॉल खेलते थे, बड़े लोग भाई लोग खेलते थे, बार खड़ा कर देते गोल में, कभी बाहर से गेंद ले आओ। उसके बाद मैंने खो खो खेलना शुरू किया कॉलेज में, क्योंकि वो बेस्ट आर्टिस्ट या बेस्ट स्टूडेंट बनने के लिए जरूरी होता था कि आप डिबेटर भी हो, आप क्लास में टॉप हो, टीम भी आनी चाहिए और गेम्स में आप स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट करें किसी एक में। मैं खो खो करता, खेला कोई नहीं ढंग से मैं, लेकिन सभी खेलों की मैं कमेंट्री करता हूँ। और इसके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी कमेंट्री में आपके पास आधार होना चाहिए, एक वॉइस का एक मॉड्यूलेशन होता है, एक उतार चढ़ाव होना चाहिए, एक सेंस होना चाहिए कमेंट्री करने का। और अगर आपकी आवाज सूट करती है कमेंट्री को तो आप कमेंटेटर बन सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि सब खेलों की कमेंट्री की जा सकती है, रूल रेगुलेशन आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, कबड्डी, अभी मैंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बनारस में भी जैसे की थी, तो मैंने इलावा योगा की, हैंडबॉल की, तो मैं सब गेम्स की कमेंट्री कर लेता हूँ। तकरीबन 10-12 गेम ऐसे हैं जिनकी मैं कमेंट्री करता हूँ।
1: जी, अगर कहें कि कुलविंदर सिंह कंग खेल कमेंटेटर ना होते तो क्या होते?
0: लेक्चरर होता, राजस्थान में रहता, किसी पीजी कॉलेज का प्रिंसिपल रिटायर हो जाता, राजस्थान में घूमता रहता। और लेकिन ये सेंटर का जॉब था इसलिए मुझे हिंदुस्तान भर में आना पड़ा और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत तरह के लोगों से मिलने को हुआ। बस मैं बनना कमेंटेटर चाहता था, वो कमेंटेटर बन गया और आकाशवाणी ने मुझे जितना दिया है कोई और डिपार्टमेंट शायद ना दे सकता।
1: तो दिल में कैसे ख्याल आया कि हिंदी में खेल कमेंट्री की जाए?
0: मैं श्री गंगानगर राजस्थान का रहने वाला हूँ, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ और हिंदी मीडियम में पढ़ने की वजह से मैं हिंदी बहुत अच्छी मेरी थी और हिंदी कमेंट्री करना मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि मेरा स्टडी का, अध्ययन का जो माध्यम था वो हिंदी ही था। बचपन से हिंदी बोलते आए हैं, इवन मैं मारवाड़ी बहुत अच्छी बोलता हूँ, राजस्थान की जो भाषा है, पंजाबी बोल लेने से वो कोई गल नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि भाषा सीखनी चाहिए। आजकल मैं टेबल पर, मेरे सामने बुक पड़ी है स्पेनिश की, मैं आजकल स्पेनिश सीख रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ आप करते रहना चाहिए, तो क्योंकि बोली आपके हमेशा काम आएगी, कोई आपसे इस विधा को छीन नहीं सकता।
1: बिल्कुल सही बात है। सर आप कई खेल प्रतिस्पर्धाओं के आंखों देखा हाल का विवरण आपने श्रोताओं तक पहुंचाया है, तो वो आंखों देखा हाल दिल में बस जाता है श्रोताओं के। सबसे ज्यादा मजा आपको कौन सी खेल कमेंट्री में आता है, क्योंकि आपने बहुत सारे खेलों का जिक्र किया?
0: देखिए मजा तो अलग अलग खेल में अलग अलग तरह की बातें होती है। अब 1998 में यूट्रेक्ट गया था हॉलैंड में हॉकी वर्ल्ड कप की कमेंट्री करने, मैं पहली बार ही गया था। तो वहां मैंने फिर जब कमेंट्री करी तो मेरे साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि अंग्रेजी कमेंटेटर या इंजीनियर या प्रोड्यूसर कोई नहीं जा सका, मैं अकेला ही इंग्लैंड हॉलैंड पहुंचा और एंटायर वर्ल्ड कप, पूरा विश्व कप मैंने अकेले ने कमेंट्री करी हर मैच में। और फाइनल मुकाबला था वो 117 मिनट चला, उस वक्त 35-35 मिनट के दो हाफ होते थे हॉकी के, फाइनल हॉलैंड और स्पेन के बीच में था, वो खत्म हो गया। उसके बाद 15-15 मिनट का एक्स्ट्रा समय मिलता था, वो खत्म हो गया था, गोल नहीं हुआ। उसके बाद गोल्डन गोल के लिए समय मिलता है, उसमें जाके गोल हुआ था, हॉलैंड जीता था। और वो स्टेडियम पूरा ऑरेंज ऑरेंज ही था क्योंकि मेजबान फाइनल में पहुंचा था। तो उस मैच का जो मजा आया था उसमें, हालांकि मैं अकेला बोलता बोलता थक गया था, लेकिन हॉकी का फाइनल था, आप चाहकर भी स्लो नहीं हो सकते क्योंकि खेल इतनी तेज गति से होता है और हॉकी इज माय फर्स्ट लव।
1: बिल्कुल सर, आपका खेल कमेंट्री का लंबा सफर है, बहुत सारे लोगों के साथ आपने काम किया होगा, तो कौन से वो साथी आपके रहे हैं जिनके साथ आपको कमेंट्री करने का मौका मिला?
0: देखिए आकाशवाणी का जो पैनल होता है
1: जी
0: उन लोगों के साथ कमेंट्री करी। इसके अलावा एक बार इंडिया और वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच की मैंने मदनलाल और कपिल देव के साथ भी कमेंट्री करी आकाशवाणी के लिए। तो जो आकाशवाणी पे कमेंट्री करेगा वो हमारे साथ बैठेगा। हाँ, इंटरवल में जब आते थे तो जॉनी ब्रैड ने कमेंट्री करी थी 99 के विश्व कप में भारत और पाकिस्तान का जो मैच चल रहा था, उसमें आमिर खान साहब आए थे कमेंट्री बॉक्स में, उनसे पूरे इनिंग में वो बैठे रहे और उनसे बातें होती रही। तो साथ में कोई भी हो आपको यूज करना आना चाहिए। आप कमेंट्री कर रहे हैं तो आप बीच में कमेंट्री भी करें, उनसे सवाल भी पूछते रहे, लिस्नर के लिए इंटरेस्ट बना के रखें। तो जो भी कमेंटेटर आया उनके साथ हमने कमेंट्री करी, चाहे वो, क्योंकि हमें तो अंग्रेजी वालों के साथ मौका मिलेगा ना, हिंदी का तो एक ही होता है या हिंदी के ज्यादा दो होते हैं। तो सुरेश सरैया है, प्रकाश वाकनकर है, प्रेम कुमार है, डॉक्टर मिलन टिपनिस है, तो बहुत से कमेंटेटर इतने 40-45 सालों की जो मेरा इतिहास रहा है कमेंट्री का, उसमें बहुत से लोग आए, उन सब के साथ मुझे बहुत आनंद आया कमेंट्री करने का। ओलंपिक्स में भी गए, बीजिंग भी गए, मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, सब जगह जाने का मौका मिला, ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला, नेपाल में भी कमेंट्री करी मैंने। तो जहां मौका मिलता है हम कमेंट्री करते हैं। और मैं एक और कोशिश रहती है कमेंटेटर के लिए होना चाहिए कि आप वहाँ की लोकल भाषा थोड़ी सी सीख के जाए तो आपको उसका वहाँ पर फायदा हो सकता है।
1: बिल्कुल, लाखों श्रोताओं की पसंद रहे हैं कुलविंदर सिंह कंग। यदि कुलविंदर सिंह कंग

0: बहुत अच्छे कमेंट्री करते हैं और
1: जी
0: बहुत अच्छा उनका सेंस ऑफ, क्योंकि वो खुद खिलाड़ी भी रहे हैं।
1: जी
0: इसके अलावा हिंदी में जो मेरे मित्र हैं संजय बैनर्जी, वो बहुत अच्छे कमेंट्री करते हैं, उनका नॉलेज बहुत है, उनका उच्चारण बहुत अच्छा है। तो
1: बिल्कुल
0: ये दो हैं। और इसके अलावा अगर टीवी की बात करें, टीवी में तो वो कमेंट्री होती नहीं जो रेडियो में होती है,
1: बिल्कुल
0: बहुत फर्क है दोनों में, जमीन आसमान का फर्क है।
1: बिल्कुल
0: जो कमेंट्री का मजा है और वो रेडियो की कमेंट्री का, वो रेडियो पे आता है, रेडियो वाले लोगों के साथ ही आता है।
1: बिल्कुल रेडियो की यही खासियत है। सबसे यादगार कौन सा पल आपका रहा है, जो संस्मरण आप सुनाना चाहें, कमेंट्री कर रहे हैं और वो आज भी नहीं भूल पाते हो आप?
0: देखिए वो ऐतिहासिक मैच नॉर्थवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल, वो
1: जी
0: बहुत बड़ी बात थी, जिसमें उम्मीद नहीं थी कि 146 पर 5 आउट हो गए थे, सचिन तेंदुलकर आउट होकर बाहर जा रहे थे, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हो, वसीम अकरम हो, रमीज राजा हो, जॉफ्री बाइकॉट, सब कह रहे इंडिया इज गॉन। नॉर्थवेस्ट ट्रॉफी के फाइनल में मेरे साथ शायद सुरेश रैया थे, मुझे नहीं, अब याद नहीं, अब दूसरे कमेंटेटर कौन थे। तो
1: जी
0: हम लोग सब कह रहे थे कि गया, तो मैंने कहा नहीं, मुझे अभी भी उम्मीद है, बीबीसी ने लाइव इंटरव्यू भी लिया, तो मैंने कहा ये मुझे उम्मीद है, क्योंकि अगर इस बैटिंग पिच पर इंग्लैंड 325 बना सकता है तो भारत 326 बनाने में सक्षम है। अभी फिलहाल जो मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह की जोड़ी है, अगर अगले 10 ओवर तक ये आउट नहीं हुए तो मैच का पासा पलटकर आपको दिखाऊंगा, और वही हुआ। तो वो बहुत ऐतिहासिक मैच है, बहुत खुशी मनाई हम लोगों ने।
1: बहुत सारी दिक्कतें भी आई होंगी खेल कमेंट्री करते हुए आपके, क्योंकि इतना आसान काम नहीं है खेल कमेंट्री करना, आपको देखा हाल सुनाना, तो कौन सी वो मुश्किल थी?
0: अकेले ने हॉकी वर्ल्ड कप किया, इसके अलावा श्रीलंका में हम एशिया कप करने गए थे तो वहां लाइन नहीं मिल पाई थी, तो श्रीलंका टेलीकॉम को भी लिया और मोबाइल में पैसे डाले और बहुत कुछ किया। तीन चार मेरे हाथ में माइक थे, पता नहीं आवाज किधर से जा रही है, लैंडलाइन फोन का जो रिसीवर है उससे जा रही है, या हमारे माइक से जा रही है, या मोबाइल से जा रही है, हमें नहीं पता किधर से जा रही है। तो तीन चार चीजें हाथ में पकड़कर हमें कमेंट्री करनी पड़ी, कई बार दर्शकों के बीच में बैठ के कमेंट्री करनी पड़ती है। तो मोबाइल में जो पैसे डलवाए थे वो जल्दी खत्म हो जाते हैं, उस
1: बिल्कुल
0: वक्त ये नहीं था कि इनकमिंग फ्री थी, और विदेश में खासतौर पर तो
1: जी
0: थोड़ी देर के बाद फोन बोलने लग जाता सिंहली भाषा में कि आपके पैसे खत्म हो गए हैं, रिचार्ज करवाइए। तो बहुत सी बातें आती इंटरेस्टिंग होती है, बात भी करनी है कमेंटेटर। तो मेरे को, मेरे साथ वसीम अकरम बैठे थे कमेंट्री बॉक्स में, तो वो बोले पाजी ये क्यों हो रहा है, तो बस ऐसे ही आप बोलते रहिए, हमें खुद नहीं पता कि एक ही हो रहा है।
1: बिल्कुल।
0: जी
1: और सर आप आकाशवाणी से जुड़े हैं और बहुत सारे श्रोताओं के दिलों पर आपने राज किया है सर। कभी कभी खेल के दौरान मौसम का मिजाज भी बदल जाता है, या यूं कहें कि खेल बीच में ही रोकना पड़ जाता है, तो उस
0: जी
1: समय का कोई वाकया जो श्रोताओं के साथ साझा करना चाह रहे हो आप?
0: कई बार होता है, बिल्कुल खेल बंद हो गया, बारिश हो गई, खिलाड़ियों में, हॉकी खिलाड़ियों में लड़ाई हो गई, तो हम उसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि इस खिलाड़ी ने उसको हॉकी मारी और उसने आगे से इसको मारी। तो फिर हमें अपने जो मेहनत की होती है, जो होमवर्क किया होता है, जो आंकड़े होते हैं, उनको हम डिस्क्राइब करते रहते हैं, ऐसे इंसिडेंट को डिस्क्राइब करते रहते हैं जब खेल रुकते हैं किसी वजह से, तो सारी बातें होती हैं। तो बहुत सी बातें मैदान पर हैं, अब रैंडमली तो एकदम अब याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सी बातें होती हैं जब आपको दिक्कत आती है, लेकिन रनिंग अगेंस्ट टाइम जिसको बोलते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन, तो आपको वो मेहनत करनी पड़ती है। एक बार लाइन नहीं मिली थी तो बीबीसी लाइन उधारी लेके 200 मीटर का मैंने तार बिछा के लंदन में वो लाइन को एक्सटेंड कराया, और वहां से मैंने पहले मैच की कमेंट्री करी। तो बहुत कुछ
1: बिल्कुल
0: ऐसा होता है जब हमें ये करना पड़ता है परिस्थितियों के अनुसार।
1: सर, एक सवाल और हमारे दिमाग में बचपन से कौनता आ रहा है कि कमेंटेटर तो कमेंट्री बॉक्स में बैठे होते हैं, फिर दूर
0: हाँ जी हाँ जी
1: फील्ड में खेल रहे खिलाड़ियों को कैसे पहचान लेते हैं कि ये शॉट या विकेट कैच इस खिलाड़ी ने लिया है, क्योंकि पहले शर्ट पर नंबर भी नहीं होता था, हालांकि अब
0: हमारा एक्सपीरियंस है मनोज, बहुत कुछ होता है। किसी खिलाड़ी का फिजिक्स हमें पता होता है, किसी की दाढ़ी है, किसी के ने रेड कलर के शूज पहने, तो ये पहचान आपको बनानी पड़ती है 5-7 मिनट में कि इस मैदान पे अब जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो राइट फुल बैक है उसने ऑरेंज कलर जूते पहन रखे हैं, उसके दाढ़ी है, किसी के बाल बड़े हैं, तो ये सारा एक्सपीरियंस के साथ होता है।
1: बिल्कुल।
0: चलिए
1: आकाशवाणी के 90 सालों के सफर में खेल कमेंट्री में श्रोताओं को कितना प्रभावित किया?
0: देखिए, खेल कमेंट्री तो शुरू से श्रोताओं के साथ जुड़ी हुई है,
1: जी
0: बिना इसके तो संभव नहीं है। आज क्रिकेट जिस मुकाम पर पहुंची है, उसको वहां तक पहुंचाने वाली आकाशवाणी की कमेंट्री है। 1971 में जब वेस्टइंडीज से अजीत वाडेकर के कप्तानी में भारत जीत के लौटा था, तब वहां क्या कुछ हुआ वो आकाशवाणी ने बताया था। 1974 में जब जीता था, या गावस्कर ने 774 रन बनाए थे एक सीरीज में, लिसनर उसको घर बैठ कर सुनते थे, तो आकाशवाणी की कमेंट्री जो कि जन जन तक पहुंचती है, उसका आज भी कोई मुकाबला नहीं। वो मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि जहां तक आकाशवाणी पहुंचती है वहां तक कोई नहीं पहुंच पाता, इतना बड़ा नेटवर्क है। आज भी लाखों करोड़ों लिसनर है जो कि आकाशवाणी की कमेंट्री सुनते हैं, फिर प्राइवेट चैनल आ गए, ये हो जाएगा वो, जो कुछ नहीं हुआ, आकाशवाणी वही की वही है, उसकी वैल्यू वही है, उसकी जो रीच है वही है, उसका लोगों का प्यार वही है। मैं अपनी आत्मकथा भी लिख रहा हूँ, उसमें बहुत कुछ होगा कि क्या कुछ आज तक घटित हो इतने सालों में कमेंट्री में।

0: कहाँ कहाँ मुझे मौका मिला। ये आकाशवाणी की कमेंट्री है जिसने मुझे चीन की दीवार को भी दिखा दिया, रावण की लंका भी देखने का मौका मिला, आईफल टावर पे भी मैं गया, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर भी मैं गया, इसके अलावा पाकिस्तान में पंजा साहब और ननकाना साहब देखने का मौका भी मिला। तो ऐसी कोई जगह नहीं, ये कमेंट्री आपको ऐसी ऐसी जगहों पर पहुंचती है जहां आप सोच नहीं सकते। तो बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आकाशवाणी का।
1: जी आखिरी सवाल कि अपने श्रोताओं से अब क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए हमारे श्रोता ही सब कुछ है, अगर ये श्रोता ना हो तो हम कहीं के भी नहीं है। आकाशवाणी श्रोताओं के साथ जुड़ा है, हमारा मेन उद्देश्य है कि हम उनका मनोरंजन करें, जिस उद्देश्य के लिए हमको यहाँ बिठाया गया है, और मैं समझता हूँ कि उन्हीं का प्यार है जो आकाशवाणी यहाँ तक पहुँचती है। आज भी लोग सुनते हैं और नेत्रहीन लोग ज्यादा हमें फोन करते हैं तो हमें अच्छा लगता है आवाज

0: 190 के बाद भी आकाशवाणी इसी तरह से सेवा करता रहेगा, और जो रीच आकाशवाणी की है, जो मंगल ध्वनि बजती है, जो सुबह से शाम तक और अब 24 घंटे चलता है प्रसारण, उसका कोई मुकाबला नहीं है। सबसे पहले बिल्कुल सही और सटीक जानकारी, सूचना, ज्ञान, मनोरंजन और समाचार आकाशवाणी से ही मिल सकते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद कुलविंदर सिंह कंग जी, आपने हमें

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरोहर में, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम सुनते सुनाते 90 साल पर। हमारे केंद्र के हमारे साथी मनोज और वरिष्ठ प्रसारक एवं कमेंटेटर श्री कुलविंदर सिंह कंग की वार्ता। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन भावन में, एक ही शीर्षक, मीत पर कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत।

श्रोताओं, जैसे कि आपको पता ही है, समय हो चुका है 11:30 और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भवन। तो स्वीकार कीजिए अनुराग सिंह राजपूत का अनुरागमय नमस्कार।

श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही शीर्षक मीत पर कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में।

अभी आपने सुना फिल्म जहां सती वहां भगवान का ये गीत। अब कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए। फिल्म का नाम है महाराजा विक्रम और आवाज है सुमन कल्याणपुर की।

0: फास्ट मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई। लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मनभावन में एक ही शीर्षक मीत पर कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत, और मैं हूं आपका रेडियो साथी अनुराग सिंह राजपूत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है रानी रूपमती।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मनभावन में एक ही शीर्षक मीत पर कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए महेंद्र कपूर व और साथियों की आवाज़ में। फिल्म का नाम है धमाका।

श्रोताओं, आपको तो पता ही है कि आज हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, जो हर वर्ष 5 जून को होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन, आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। अब सुनिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है।
1: After a detailed assessment,
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
3: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज जम्मू में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की औपचारिक घोषणा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया, इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। घरेलू शेयर बाजार में संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 121 अंक के उछाल के साथ 74,461 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब सुनिए आवश्यक संदेश।
5: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
6: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
5: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।

प्रभारी निरीक्षक थाना गजरौला जनपद पीलीभीत हमें सूचित करते हैं कि श्रीमती सोनाली देवी पत्नी श्री प्रेमपाल निवासी ग्राम अमखेड़ा थाना गजरौला जनपद पीलीभीत दिनांक 21 अप्रैल 2026 से लापता हैं और जहां से ये लापता हैं उस जगह का स्थान का नाम है जामनगर गुजरात। यदि किसी को इनकी जानकारी हो अथवा इनके बारे में पता चले तो हमें आप इस पते पर सूचित करें। प्रभारी निरीक्षक थाना गजरौला जनपद पीलीभीत और श्रीमती सोनाली देवी के बारे में कुछ विवरण हम आपको बता देते हैं। इनकी उम्र 18 वर्ष, शरीर की बनावट इकहरा बदन, ऊंचाई लगभग 5 फुट, चेहरा लंबा है, रंग साफ है, आंख औसत, बाल काले और इन्होंने सलवार व सूट पहना हुआ है। अगर आपको इनके बारे में पता चले तो कृपया प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्ष थाना गजरौला जनपद पीलीभीत को सूचित करें। मोबाइल संख्या है 7535988216। लापता व्यक्ति के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

प्रभारी निरीक्षक थाना गजरौला जनपद पीलीभीत और श्रीमती सोनाली देवी के बारे में कुछ विवरण हम आपको बता देते हैं। इनकी उम्र 18 वर्ष, शरीर की बनावट इकहरा बदन, ऊंचाई लगभग 5 फुट, चेहरा लंबा है, रंग साफ है, आंख औसत, बाल काले और इन्होंने सलवार व सूट पहना हुआ है। अगर आपको इनके बारे में पता चले तो कृपया प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्ष थाना गजरौला जनपद पीलीभीत को सूचित करें। मोबाइल संख्या है 7535988216। लापता व्यक्ति के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म का नाम है कुली नंबर वन और आवाज़ें हैं पूर्णिमा और कुमार सानू की और फरमाइश की है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से हैं शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, कुमकुम सुरलकर, मुताला महाराष्ट्र से। और कैथल हरियाणा से हैं जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। मारहरा दरवाज़ा एटा से हैं नवी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी। सिकंदरा राव से हैं मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन। गीत सुनना चाहते हैं राजधानी रायपुर से नीलोमेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। आदाब नमस्कार के साथ ये मैसेज हमें प्राप्त हुआ है सिंधौली मीरगंज बरेली से, जिशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख। और करोला मुरादाबाद से हैं अयूब खान, इरम गुड़िया और शुएब खान। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुविहार नेवादा गाजीपुर, जिला गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। हमें मैसेज किया है गुनौर से आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली। हमें ईमेल भेजा है जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कामड़े। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव।

मंदिर हकीकत पूरा मऊ से हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत आप सभी के रेडियो सेट्स पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत आपके नाम। श्रोताओं, आप भी हमें अपने ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है गीत आपके नाम airrampur@gmail.com। ईमेल एक बार पुनः सुनिए, गीत आपके नाम airrampur@gmail.com। और कार्यक्रम का ये अगला ईमेल हमारे पास आया है जसपुर उत्तराखंड से, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन, माहिरा, नूर, और इन्हीं के साथ ईमेल प्राप्त हुआ है स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया।

पटियाली रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से हैं एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम एजाद कुरैशी और बेबी अरीबा हबीबा। सनावत से हैं शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बुढ़ाना। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद। बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। गीत सुनना चाहते हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। मजनूकार टीला से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। जनकपुरी सहारनपुर से हैं जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। और इन्हीं के साथ हमारे श्रोता हैं चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। ग्राम पंचायत बठेणा पाठन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश प्रमिला बंछोर। हमारे श्रोता हैं मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। बाबा कुटीर रायगढ़ से हैं शिव कुमार चौहान, सक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान। गीत सुनना चाहते हैं उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हैं अभिजीत गवाड़कर राही, श्रीमती सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर। बदलापुर मुंबई से हैं प्रणीता गवाड़कर, सिद्धांत गवाड़कर, अर्जुन गवाड़कर, टुक टुक। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से हैं वैशाली, शैलेश गवाड़कर, सुमित गवाड़कर और कुमारी ध्वनि गवाड़कर परी। तो आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत आपके नाम, अपने रेडियो साथी अनुराग सिंह राजपूत के साथ। कार्यक्रम का अगला गीत कुमार साहिल और अलका याग्निक की आवाज में, और इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से फातिमा वली बेलदार, आदिबा वली बेलदार, रेशमा वली बेलदार, डब्लू वली बेलदार। गांधी समाधि रोड रामपुर से हैं हाजी गफ्फार खान, राजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, रूमा खान, मदीहा खान, सुभान खान और फिरोज खान। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। दतरेंगी से हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं

मुंदीचक भागलपुर बिहार से हैं दिलीप कुमार सोनी। हमारे श्रोता हैं ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहांत से रमेश्वर कठहरिया, उमाकांति कठहरिया, कमल देव कठहरिया, पुत्रवधु निशा कठहरिया, प्रज्ञा कठहरिया, प्रतिमा कठहरिया, वेद बाबू कठहरिया, और यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। गांव नथाना पंजाब से हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। गीत सुनना चाहते हैं ग्राम पंचायत बठेणा पाठन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश प्रमिला बांछोर। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अलकबीर। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार नरगिस खातून। यही गीत सुनना चाहते हैं अजीज भाई, मतीन भाई, शेख चांद फारूक फूल वाले। ये हमारे श्रोता हैं नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से। बहुत अच्छा लगता है श्रोताओं जब आपकी इतनी दूर से भी फरमाइश आती है। और यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से हैं भरत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण, संस्कृति पौरुष। रामगढ़ कैंट से हैं महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। गांव जाखौत से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक। ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से हैं शाहरून नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान। यह गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। गांव फरासी हिसार से राजकुमार डुडी, प्रमोद कुमार डुडी, पुष्पेंद्र कुमार डुडी। गीत सुनना चाहते हैं शास्त्री नगर बीट शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, विशाल सपकाल। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। इन्होंने एक स्लोगन भी लिखकर भेजा है, एक पेड़ माँ के नाम, साथ में सप्रेम नमस्ते। मुंबई से हैं अनु बड़जातिया, शमशुल खान और अनुराज बनारा। आदाब के साथ ये मैसेज हमें प्राप्त हुआ है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू। डुमराव बिहार से हैं डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से हैं श्रद्धानंद आर्रे, अभियानंद आर्रे और परमानंद आर्रे। सारिमपुर बक्सर से हैं राज एच डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। नमस्कार के साथ ये मैसेज हमें प्राप्त हुआ है अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक। चंडीगढ़ सिटी से हैं सतीश अनेजा, विमला अनेजा। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। तो आइए सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत आप सभी के रेडियो सेट्स पर।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत आपके नाम अपने रेडियो साथी अनुराग सिंह राजपूत के साथ। और अभी आपने सुना फिल्म प्यार किया तो डरना क्या का ये गीत, और कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है बोल राधा बोल। फरमाइश की है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। बोरखेड़ा पत्रामल जिला उज्जैन से हैं मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दीक्षा कुश मूड़त। दुर्गा कॉलोनी हासी से हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। चमन पार्क दिल्ली से हैं डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना, डॉक्टर अदीबा। वीरमगाम से हैं अजीता पॉल और हेमा पॉल। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा, जी एस रामगढ़िया। ताजपुर मोरवा समस्तीपुर से हैं कपलेश्वर प्रसाद गुप्ता, भूलिया गुप्ता, संगीता पासवान। मधुबनी से ज्योति सिंह, नवीन सिंह। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। बीड शहर महाराष्ट्र से हैं नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा। सिद्धार्थनगर दयापुर बावली से हैं गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, मनीषा येले। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं कुछ आवश्यक संदेश।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीता आपके नाम और हम आपकी फरमाइशें पढ़ रहे हैं। आपने फरमाइश की है फिल्म बोल राधा बोल के गीत की और यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, माया कुमार, जग्गी जग्गी दुआ, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा, हरिपाल कौर, आशा गुगलानी, सोनिया कालका, विपाशा शर्मा, किरण ठाकुर, हम अपने श्रोताओं से ये अनुरोध करते हैं कि आप जो भी नाम भेजते हैं उसमें एक नाम के बाद कॉमा ज़रूर लगा दें, क्योंकि कई बार आप नाम लगातार लिखकर भेज देते हैं बहुत सारे श्रोताओं के, तो उसमें हमें पता नहीं चलता कि आपने सरनेम लिखा है या ये उनका नाम है। तो ऐसा ना करें, आप अगर कॉमा लगाकर या फिर नंबर वाइज अगर आप अपना नाम भेजेंगे तो हमें पढ़ने में आसानी होगी और हर एक श्रोता का नाम सही से हम ले पाएंगे। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, श्रीमती अंकु राघव गुप्ता। यह गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। करणवीर हाउस भूजो कैंचिया भटिंडा पंजाब से हैं प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिमू एकम दमन अभिजोत। किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहनदास, आशा देवी। यह गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहनदास, ये हमें दोबारा से मैसेज प्राप्त हो गया है। यह गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपक, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। यह गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बल्लू निषाद, तरुण यादव, ये हमारे श्रोता हैं जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। ग्राम शिरटे जिला सांगली से हैं हनुमंत शिंदे, संगीता शिंदे, ऋषिकेश और वसुंधरा। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। चंद्रनगर सहारनपुर से हैं सुरेश नारंग, आशु नारंग, सोनाली, शेख अल्लाह बख्श, अरविंद कुमार, संदीप मक्कड़, एस के सरगम। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। अम्बाला कैंट से हैं सोनाली नारंग, पथिक भसीन, कृषिव, कुलभूषण भसीन और इनके दादाजी। हमें अपनी फरमाइश लिखकर भेजी है राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, वंदना डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। बरेडी मध्य प्रदेश से हैं हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची और तनु करमरकर। शेरवानी स्कूलगंज डुंडवारा से हैं उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। मेरठ कैंट से हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़, इन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं लख लख बधाइयां भेजा है। यह गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भरत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण, संस्कृति पौरुष। और जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। यह गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। अहमदनगर खेगांव खंडवा से हैं कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली और वेदिका फूलमाली। एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट। यह गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरनाल सिंह और अविराज सिंह। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर, जसवीर, जस्सी। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस, सीताराम कांगड़ा, साहिल। ये हमारे श्रोता हैं हरियाणा से। और यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से हैं नासिर शेख, नाजिया नासिर। साजिद शाहिद गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, साबिया मुजावर, मिखाइल मुजावर, जुनेद मुजावर। गीत सुनना चाहते हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, निहारिका, हार्दिक, वंश बत्ता। इन्होंने अपना पता नहीं लिखा है। यह गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। ग्राम धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा, कुमारी कृष्टि पटवा। गीत सुनना चाहते हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साई गायकवाड़, नारायण गायकवाड़। ये हमारे श्रोता हैं नांदेड़ महाराष्ट्र से। आदर्श नगर मलौट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार विद्यार्थी, गुंजेश कुमार विद्यार्थी, रिया रानी, कुमकुम, कुमारी साक्षी, अच्छे लाल राय, बुल्की वाली और फलना झा।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत आपके नाम, आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। दोपहर का 1 बजने को है। अब हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: बड़े समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
1: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। उद्योग संगठन SOCHM ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे।
2: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के अगरतला में BSF के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की हर सीमा की भौगोलिक और सुरक्षात्मक चुनौतियां अलग अलग हैं, इसलिए सभी सीमाओं पर एक जैसी रणनीति के बजाय स्मार्ट मॉडल अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अनामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अनामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और

0: कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इससे झलकती है। नागालैंड सरकार ने राज्य में तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी खाद्य उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर एक वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पान मसाला, सुगंधित और स्वादयुक्त चबाने योग्य उत्पादों के साथ साथ तंबाकू या निकोटीन युक्त किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ पर लागू होता है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक फिसल का 74,274 पर, जबकि निफ्टी 43 अंक लुढ़क का 23,374 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Daman today to dedicate and lay the foundation stone of multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in Surat. Mr. Modi will also inaugurate a 200-bedded ESIC hospital in Surat, providing modern secondary health care across key specialities. The Prime Minister will also inaugurate several important initiatives of the Government of Gujarat, including modern power distribution upgrades, advanced effluent disposal and treatment infrastructure at the Dahej Petroleum. In the evening, Prime Minister Modi will travel to Daman and lay the foundation stone of development projects worth around 2,970 crore rupees. The Reserve Bank of India has kept interest rates unchanged for the second time in a row in the current financial year. Announcing the second bi-monthly monetary policy for the current fiscal, RBI Governor Sanjay Malhotra today said the Monetary Policy Committee has unanimously decided to retain short-term lending rate or repo rate at 5.25% with a neutral stance. RBI has lowered GDP growth projection

अब से थोड़ी देर यानी 1:15 पर सुनिएगा कलाकार असलम वारसी व साथियों की नात कव्वाली, और 1:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम कुमकुम। प्रस्तुत करेंगी श्रद्धा जिंदल। आज इसमें होगा चर्चा विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और वार्ता जरूरी है प्रदूषण नियंत्रण। वार्ताकार होंगे सुनीता। ब्यूटी टिप्स आपको दिए जाएंगे, गर्मी के मौसम में कैसे रखें अपनी त्वचा का खास ख्याल।

दोपहर 2:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुनहरा दौर। इसमें हम आपको सुनवाएंगे 2000 के दशक के फिल्मी गीत। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:10 होने वाले हैं। अब इलाकाई खबरें आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित की जाएंगी।

0: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। आज आलमी यौमे माहौलियात है। जमीन पर सभी जानदार की जिंदगी की अहमियत बनाए रखने और उसके तहफ्फुज के लिए बेदारी बढ़ाने के मकसद से अक्वामे मुत्तहिदा माहौलियात प्रोग्राम के तहत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 से हुई थी। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क की आवाम को मुबारकबाद पेश की है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी सरकारी रिहायशगाह पर आलमी यौमे माहौलियात 2026 के मौके पर एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत आम का पेड़ लगाकर शजरकारी की। इस दौरान वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरगीब से गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान रियासती हुकूमत ने माहौलियात और नेचर के तई अपनी जिम्मेदारियों को अदा करते हुए कई खसूसी पेशकदमी की है। पहले ही साल 2017 में वन महोत्सव के मौके पर डबल इंजन हुकूमत ने 5 करोड़ शजरकारी के बड़े काम को अपने हाथों में लिया है। उन्होंने आवाम को आलमी यौमे माहौलियात की मुबारकबाद भी पेश की। वजीर आला ने कहा
1: कि उस समय तमाम चैलेंजेस हमारे सामने थे, न नर्सरी थी, न इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उस प्रकार के कोई अनुभव ही, लेकिन बाद में वन विभाग और प्रदेश सरकार के अन्य सभी विभागों ने मिलकर के एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य किया और गत 9 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर वन महोत्सव के अवसर पर होने वाले वृक्षारोपण के क्रम में अब तक 242 करोड़ वृक्षारोपण के बड़े कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में प्रदेश सरकार ने सफलता प्राप्त की।
0: आज इस मौके पर चित्रकूट, गाजियाबाद, कानपुर देहात, जौनपुर, मऊ, अमरोहा और दीगर इजला में शजरकारी की गई। दरियासना एक दीगर प्रोग्राम में वजीर आला ने लखनऊ के कुकरैल जंगल हलके में शजरकारी करके रियासत गिर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस साल रियासत में एक दिन में 5 करोड़ पेड़ लगाने का निशाना रखा गया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में आलमी बैंक के तावन से 2741 करोड़ रुपए की लागत वाली

0: एयरशेड पर मबनी उत्तर प्रदेश साफ हवा मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। उन्होंने शजरकारी महाअभियान 2026 के तहत 35 करोड़ शजरकारी महाअभियान के लोगों का इजरा किया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि माहौलियात के चैलेंजेस का सामना करने के लिए हिंदुस्तान की कदीम रवायत में रचे बसे अंसर को भी अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि जब कुदरत महफूज रहेगी तभी इंसानियत महफूज रह पाएगी। वजीर आला ने कहा,
1: उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए या भारत जैसे देश के लिए, जिसके बारे में कहा जाता है ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का देश या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का राज्य, और उसमें अगर मौसम चक्र में अंतर आएगा तो सबसे अधिक प्रभावित कौन होगा? किसान की आमदनी पे असर पड़ेगा, अतिवृष्टि का सामना करना पड़ेगा, अनावृष्टि का सामना करना पड़ेगा, खाद्यान्न का संकट खड़ा हो सकता है, और पूरी दुनिया आज उन चीजों से चिंतित भी है और उनके लिए असमय घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाएं एक चेतावनी भी है।
0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज 3 रोजा दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं। इस दौरान वो मुख्तलिफ समाजी तंजीम और अवामी राबता प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे, साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम और पार्टी अहदेदारों से मजाकिरात भी करेंगे। वजीर दिफा आज उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ बायोयुग ग्रीन कमांड प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वजीर दिफा आज आलमी योम माहौलियात के मौके पर कैंट वाके कस्तूरबा पार्क में एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत शजरकारी भी करेंगे। बनारस में ब्रिक्स ममालिक के कल्चरल वर्किंग ग्रुप की 2 रोजा मीटिंग आज दूसरे दिन भी जारी है। मीटिंग में ब्रिक्स अराकीन ममालिक के नुमाइंदे सकाफती तआवुन की मुख्तलिफ अव्वलियत वाले शोबों पर गौरखोज कर रही है। मीटिंग के दौरान क्रिएटिव मईशत, सकाफती विरासत के तहफ्फुज, तहजीब पर मबनी, हमी जहत तरक्की और आवाम से राबते को मजबूत बनाने जैसे मौजों पर बहस हो रही है। वाज़ेह है कि सेशन का इफ्तिताह कल किया गया था, जिसकी सदारत हिंदुस्तान हुकूमत के सकाफत सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल ने की थी। 2 रोजा इस मीटिंग का इख्तिताम आज होगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने इम्तिहानी अमल को मजीद महफूज और शफाफ बनाने के लिए चेहरे की तस्दीक का निजाम मुतारिफ कराया है। कमीशन ने हाल ही में मुनक़िद होने वाले इब्तदाई सिविल सर्विसेज इम्तिहान और उस साल के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इम्तिहान में कामयाबी के साथ इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। ये सिस्टम इस बात को यकीनी बनाता है कि दरख्वास्त फॉर्म भरते वक्त जिस उम्मीदवार की तस्वीर अपलोड की गई थी वही उम्मीदवार है जो दाखिला कार्ड के साथ इम्तिहानी मरकज में मौजूद है। खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत ने अगस्त सितंबर के सेशन के लिए अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम में शिरकत के लिए खवातीन से दरख्वास्तें तलब की है। इसमें तुलबा, मुहक्किकीन, समाजी कारकुनान और किसी यूनिवर्सिटी या दीगर तालीमी या गैर तालीमी इदारे से वाबस्ता असातज़ा शामिल हैं। और महकमा मौसमियात ने लखनऊ समेत कई जिला में आइंदा कुछ घंटे में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम साइंस मरकज के मुताबिक दारुल हुकूमत लखनऊ समेत रियासत के कई हिस्सों में मुतवस्सित से लेकर हल्के आंधी तूफान और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
4: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
3: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई। लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
4: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
3: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
4: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
3: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
5: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दोपहर के 1:15 हुए हैं। सुनिए कलाकार असलम वारसी व साथियों की नात कव्वाली।

0: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
2: अभी आप सुन रहे हैं कलाकार असलम वारसी व साथियों की नात कव्वाली।

अभी आप सुन रहे थे असलम वारसी व साथियों की नात कव्वाली, मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुमकुम।

पेड़ों की छाव, नदियों की रवानी और मिट्टी की सौंधी महक को बचाना होगा। आने वाली पीढ़ियों को भी उतना ही सुंदर संसार मिले, ऐसा कल बनाना होगा। नमस्कार सखियों, प्रकृति के रंगों और हरियाली की उमंगों से सजे आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कुमकुम में मैं श्रद्धा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ।

प्यारी सखियों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और अपने रोजमर्रा के काम काज में व्यस्त होंगी और काम काज के बीच खिड़की से बाहर सुबह की ताजी हवा का आनंद लेना या मीठी मीठी पक्षियों की आवाजें सुनना, कितना सुकून होता है ना इन पलों में। और ऐसे में मन यही सोचता है कि प्रकृति ने हमें कितनी सुंदर और अनमोल सौगातें दी हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये हरियाली, ये स्वच्छ हवा और ये प्राकृतिक सुंदरता हमेशा बनी रहे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सखियों, यदि आपके मन में भी कई प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर आज हम प्रकृति और पर्यावरण की बातें क्यों कर रहे हैं, तो सखियों अपने इन प्रश्नों को थोड़ा सा विराम दीजिए, क्योंकि अब हम आपको बताते हैं कि आज का दिन इतना विशेष क्यों है। दरअसल सखियों, आज 5 जून है और आज हम मना रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस। तो आइए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है। सखियों, प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी, हरे भरे पेड़ पौधे और सुंदर वातावरण के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन समय के साथ पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि लोगों को जागरूक करना और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराना। सखियों, प्रकृति और मानव जीवन का रिश्ता केवल स्वच्छ हवा और जल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षित और पौष्टिक भोजन भी इससे गहराई से जुड़ा हुआ है। भाई, आने वाले 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2018 में इसकी घोषणा की गई थी और पहली बार ये दिवस 7 जून 2019 को मनाया गया। इसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन के महत्व के प्रति जागरूक करना है। इसलिए खाद्य सुरक्षा की चर्चा हमें एक बार फिर पर्यावरण संरक्षण के महत्व की ओर ले जाती है। सखियों, पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत कहीं बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अपने घर से होती है। और जब बात घर की होती है तो उसमें महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। घर की पहली शिक्षक माँ ही होती है। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने घर में देखते हैं। ऐसे में हम अपने बच्चों को बचपन से ही प्रकृति से प्रेम करना सिखा सकते हैं। यदि घर में कोई पौधा लगाएं तो उसकी देखभाल में बच्चों को भी शामिल करें। उन्हें पौधों में पानी डालना, उनकी बढ़त को देखना और उनकी देखभाल करना सिखाएं। यकीन मानिए सखियों, बचपन में बोए गए ये छोटे छोटे संस्कार आगे चलकर पर्यावरण संरक्षण की एक बड़ी सोच में बदल सकते हैं। तो क्यों ना आज से ही हम अपने घर के किसी कोने में हरियाली के लिए थोड़ी सी जगह निकालें और अपने बच्चों को भी इस नेक काम का हिस्सा बनाएं। सखियों, आज के समय में बच्चे मोबाइल, वीडियो गेम और सोशल मीडिया की दुनिया से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम उन्हें धीरे धीरे प्रकृति की ओर मोड़ें। उन्हें फूलों के नाम, पक्षियों की पहचान जैसे छोटी छोटी गतिविधियों से जोड़ें, जिससे उनका ज्ञान भी बढ़े और प्रकृति के प्रति उनका लगाव भी बढ़े। और सखियों, सिर्फ बच्चों को ही नहीं, हमें खुद में भी बदलाव लाना होगा, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वे हमें करते हुए देखते हैं। जैसे पानी की बचत करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना और आसपास सफाई रखना। और अब बात करें आज के समय की, तो सोशल मीडिया पर हम अक्सर प्रकृति और सुंदर जगहों की तस्वीर देखते हैं, लेकिन असली अनुभव तब मिलता है जब हम खुद उन जगहों पर जाते हैं। अब जब गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं तो कई परिवार घूमने या पिकनिक के लिए बाहर जाते हैं, चाहे वो उत्तराखंड जैसे सुंदर स्थान हो या कोई स्थानीय पार्क। ऐसे में एक बात का विशेष ध्यान रखें कि हम जहाँ भी जाएँ वहाँ की स्वच्छता बनाए रखें। खाने पीने के बाद कचरा इधर उधर ना फेंकें। याद रखिए सखियों, असली आनंद घूमने में नहीं बल्कि उस जगह की सुंदरता को सम्मान देने में है, क्योंकि पेड़ हमारे जीवन के सच्चे साथी हैं। गर्मियों की शाम जब हम पेड़ों की छाया में बैठते हैं तो ठंडी हवा मन को सुकून देती है, थकान को दूर करती है और शरीर को ऑक्सीजन मिलती है। घर में छोटी सी हरियाली भी हमारे जीवन को बहुत सुकून देती है, चाहे घर का आंगन हो या सड़क किनारा। एक एक पेड़ भी अगर हम लगाएंगे तो ये आने वाली पीढ़ियों

के लिए भी बहुत बड़ा उपहार बन सकता है। और सत्यो, पेड़ लगाना केवल पर्यावरण की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि आने वाले कल के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना भी है। हम अपने बच्चों के लिए धन दौलत, घर और सुविधाएं तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनसे भी बड़ी विरासत एक स्वच्छ, हरा भरा और स्वस्थ वातावरण है। सोचिए, आज जो पौधा हम अपने हाथों से लगाएंगे, कल वही किसी राहगीर को छाया देगा, किसी पक्षी को आशियाना देगा और किसी बच्चे को खुलकर सांस लेने का अवसर देगा। प्रकृति को दिया गया हमारा छोटा सा योगदान आने वाले वर्षों में अनगिनत खुशियों का कारण बन सकता है। इसलिए आइए, केवल विश्व पर्यावरण दिवस पर ही नहीं, बल्कि हर दिन प्रकृति के प्रति अपना प्रेम और जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लें। सखियो, पेड़ों की छाव, मिट्टी की खुशबू और प्रकृति का सौंदर्य हमेशा से हमारे गीतों और फिल्मों का भी हिस्सा रहा है। तो आइए सुनते हैं ऐसा ही खूबसूरत गीत।

0: सखियों, सच तो ये है कि प्रकृति की यही मधुरता हमारे जीवन को सुंदर बनाती है, लेकिन बढ़ता प्रदूषण इस प्राकृतिक संतुलन के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। स्वच्छ हवा, निर्मल जल और हरियाली से भरा वातावरण न केवल हमारे जीवन को सुखद बनाता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी सुरक्षित करता है। ऐसे में बढ़ते प्रदूषण की चुनौती हम सभी के लिए चिंता का विषय है। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के प्रति जागरूक होना समय की आवश्यकता है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर आइए सुनते हैं हमारी मेहमान सुनीता जी की वार्ता। वार्ता का विषय है, जरूरी है प्रदूषण नियंत्रण।
1: प्रदूषण आज सारी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है। इससे न केवल हम सभी का स्वास्थ्य बल्कि जनजीवन और समूचा जीव जगत बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण सहित प्रदूषण के कई रूप हमारे सामने आ रहे हैं। विडंबना यह है कि प्रदूषण को रोकने के सभी उपाय बेअसर साबित हुए हैं और यह निरंतर विकराल रूप धारण करता जा रहा है, किंतु प्रदूषण को रोकने के लिए एक परिवार द्वारा प्रभावी उपाय जरूर किए जा सकते हैं। दरअसल प्रदूषण को रोकना केवल सरकार या समाज की ही जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि व्यक्ति और परिवार की भी जिम्मेदारी है। महिलाएं भी प्रदूषण को रोकने के लिए काफी कुछ कर सकती हैं और प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की शुरुआत अपने घर परिवार से ही की जा सकती है। परिवार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण का कोई भी उपाय अपनाने से पहले इस बात की जांच जरूरी करनी होगी कि आखिर हमारे घर परिवार या पड़ोस में प्रदूषण किस प्रकार बढ़ता है। प्रदूषण के स्वरूप को पहचान कर ही प्रदूषण नियंत्रण के प्रभावी उपाय किए जा सकते हैं। जहां तक प्रदूषण की बात है तो परिवार चाहे शहर का हो या गांव का, मुख्यतः वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण ही मुख्यतः हमारे सामने आते हैं। पहले शुरुआत वायु प्रदूषण से करते हैं। आज अधिकांश परिवार फ्रिज, एयर कंडीशनर या कूलर जैसे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी उपकरण सुविधाजनक तो हैं, किंतु प्रदूषण फैलाने में भी इनका काफी योगदान होता है। फ्रिज में रखी वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ, भोजन, फल व सब्जियां इत्यादि कई दिनों तक सुरक्षित अवस्था

0: रहती हैं, किंतु इन्हें बचाने के चक्कर में फ्रिज प्रायः 2400 घंटे चलते रहते हैं। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि ऊर्जा या बिजली की खपत तो होती ही है, अत्यंत हानिकारक CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों का भी काफी मात्रा में उत्सर्जन होता है। ये CFC गैस वातावरण में काफी गर्मी तो उत्पन्न करती ही है, घर परिवार या हमारे कमरों के अंदरूनी वातावरण को भी काफी प्रदूषित करती है। यही स्थिति एयर कंडीशनरों के साथ भी है। आधुनिकता की होड़ में आज बहुत से परिवारों द्वारा एयर कंडीशनरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। घरों में रखे फ्रिज व दूसरे उपकरणों के कारण पहले ही घरों के भीतर काफी गर्मी रहती है। मौसम में बढ़ते तापमान के कारण भी एयर कंडीशनरों का इस्तेमाल निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। एयर कंडीशनर भी भारी मात्रा में हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कर वातावरण को प्रदूषित करते हैं। परिवार और महिलाओं द्वारा फ्रिज या एयर कंडीशनर द्वारा फैलाए गए प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय सरलता पूर्वक किए जा सकते हैं। खाने में ताजे भोजन और फल व सब्जियों का इस्तेमाल कर फ्रिज के उपयोग को तो कम किया ही जा सकता है। जरूरी होने पर फ्रिज को भी बंद कमरे या रसोई की जगह अपेक्षाकृत खुले स्थान पर रखकर घर में प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसी तरह एयर कंडीशनरों के विकल्प के तौर पर पंखे या कूलरों का इस्तेमाल कर प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि घर में या कमरों में पर्याप्त मात्रा में रोशनदान और खिड़कियां बनाकर खुली हवा के संचार की व्यवस्था कर ली जाए तो घर के वातावरण में अत्यंत गर्मी को तो कम किया ही जा सकता है, उत्पन्न गर्मी को तो कम किया ही जा सकता है, एयर कंडीशन से उत्पन्न प्रदूषण को भी रोका जा सकता है। यूं कूलरों से भी प्रदूषण तो उत्पन्न नहीं होता, किंतु देखा गया है कि कूलरों में कई दिनों तक पानी इकट्ठा होता रहता है। इससे मच्छर इत्यादि उत्पन्न होते हैं। मच्छरों को भगाने के लिए जहरीले रसायनों से बनी मच्छर मार दवाओं का या साधनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अस्थमा या सांस की बीमारी तथा त्वचा रोग व एलर्जी इत्यादि की संभावना बनी रहती है। कूलर का पानी नियमित रूप से बदलकर व जहरीली मच्छर मार दवाओं का इस्तेमाल रोककर न केवल बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है, बल्कि प्रदूषण को भी नियंत्रित करने में योगदान हो सकता है। मौजूदा एक संचार का युग है, अतः इस दौर में मोबाइल और कंप्यूटर जैसे यंत्रों का उपयोग निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। संचार के इन अत्याधुनिक उपकरणों ने एक ओर जहां हमारे जीवन को सरल बनाया है, वहीं प्रदूषण को बढ़ाने में इनका खासा योगदान है। यह तथ्य कुछ आश्चर्यजनक प्रतीत हो सकता है, किंतु मोबाइल का अत्यधिक इस्तेमाल हमारे घर के वातावरण में न केवल ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देता है, बल्कि एक किस्म के विकिरण की मात्रा में भी अत्यधिक वृद्धि कर देता है। परिणाम स्वरूप कम सुनने या बहरेपन की बीमारी तो लोगों में बढ़ी रही है। घर के आंगन में या छत के मुंडेर पर पहले अक्सर दिखाई पड़ने वाली गौरैया भी गायब होती जा रही है। मोबाइल की तरह कंप्यूटर भी कम हानिकारक उपकरण नहीं है। कंप्यूटर भी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की तरह काफी मात्रा में गर्मी व क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों का उत्सर्जन करता है। अब मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल बंद तो नहीं किया जा सकता, किंतु आवश्यकता पड़ने पर ही इन उपकरणों का उपयोग कर परिवार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण में योगदान जरूर किया जा सकता है। चाहे थोड़ा ही सही, किंतु एक आम भारतीय परिवार द्वारा जल प्रदूषण को बढ़ाने का काम भी किया जाता है। प्राय सभी परिवारों द्वारा बर्तन व कपड़ों की धुलाई के लिए कास्टिक सोडा व दूसरे घातक रसायनों से बने डिटर्जेंटों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर धुलाई के बाद रसायन युक्त वह पानी नालियों के जरिए नदियों अथवा तालाबों तक पहुंच जाता है। घातक रसायनों से युक्त प्रदूषित जल जब वापस हमारे घरों में पहुंचता है तो इसके सेवन से पेट व शरीर की कई घातक बीमारियां तो होती हैं, नदियां व तालाबों में भी मछलियों और दूसरे जीव जंतु भी मर जाते हैं। इसके अलावा शौचालयों की सफाई के लिए भी तेजाब या हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल होता है। इन रसायनों के इस्तेमाल से भी त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। साबुन, डिटर्जेंट, तेजाब या घातक रसायनों का यह पानी अक्सर घर के बाहर सड़कों पर फैलकर वातावरण को विषाक्त तो बनाता ही है, खेतों में भी पहुंचकर फसलें भी नष्ट कर देता है। अतः सबसे बेहतर तो यही है कि घर परिवार में घातक रसायनों का इस्तेमाल कम से कम किया जाए और इनके अधिक उपयोग से बचा जाए। यह भी देखा गया है कि कतिपय परिवारों द्वारा घर के कूड़े कचरे का सही से निपटान नहीं किया जाता। कुछ लोगों द्वारा कूड़ा यूं ही घर के बाहर सड़क पर या खुले स्थान पर फेंक दिया जाता है। नतीजा यह है कि कहीं कहीं कूड़े कचरे के बड़े बड़े ढेर इकट्ठे हो जाते हैं, जिन पर मक्खी मच्छर तो मंडराती हैं, बहुत से जीवाणु और विषाणु भी उत्पन्न हो जाते हैं जो अनेक संक्रामक बीमारियों को जन्म देते हैं। इसके अलावा गाय, भैंस या दूसरे आवारा पशु भी इस कूड़े कचरे को खाकर बीमार पड़ जाते हैं। पॉलीथीन की थैलियों का प्रचलन आजकल घर परिवार में काफी बड़ा हुआ है। इसके बढ़ते उपयोग के प्रति सरकार एवं विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी लगातार सचेत किया जा रहा है, किंतु पॉलीथीन के उपयोग में कमी नहीं आ रही है, जिसके कारण बरसात में नाली नाले तो बंद हो ही जाते हैं, इन्हें निकलकर गाय व आवारा पशु भी बीमार हो जाते हैं। अगर कूड़े कचरे को फेंकने के लिए ढक्कन वाले कूड़ेदान का उपयोग किया जाए, फलों व सब्जियों के छिलके फेंकने के लिए अथवा पैकेजिंग के लिए पॉलीथीन की जगह कागज की बनी थैलियों का उपयोग किया जाए, तो परिवार द्वारा भी काफी हद तक प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि वातावरण में ध्वनि प्रदूषण हमारे घर परिवार द्वारा भी बढ़ाया जाता है। घर के भीतर तेज आवाज में रेडियो व टेप रिकॉर्डर बजाना, शादी ब्याहों व जन्मदिन के अवसर पर डीजे की तेज धुनों पर डांस करना व विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों अथवा उत्सवों के अवसर पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाना एक आम बात है। इससे काफी शोर या ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है, जिसके कारण बूढ़े, बीमार तथा हृदय व रक्तचाप के रोगियों को तो असुविधा होती ही है। छात्रों को अध्ययन करने व पड़ोसियों को सोने में भी व्यवधान होता है। रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, डीजे अथवा लाउडस्पीकर को मध्यम आवाज में बजाकर गीत संगीत का बेहतर ढंग से आनंद लिया जा सकता है। साथ ही ध्वनि प्रदूषण को कम कर हृदयघात और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। हमारे घर परिवार में धूल धुएं का प्रदूषण भी बढ़ता ही जा रहा है। यूं अब ज्यादातर परिवार भोजन पकाने के लिए रसोई में गैस का इस्तेमाल करते हैं, किंतु अभी भी देश में ऐसे परिवारों की कमी नहीं है जो भोजन पकाने के लिए लकड़ी और पेट्रोलियम पदार्थों सहित कोयले इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह का ईंधन उपयोग में लाए जाने पर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड अथवा कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि जहरीली गैस उत्पन्न होती है और वातावरण विषाक्त हो जाता है। यह भी देखा गया है कि घर परिवार में कारों और दूसरे दुपहिया वाहनों की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। परिवार अथवा महिलाएं रसोई पकाने के लिए परंपरागत ईंधन का इस्तेमाल कर तथा गैर जरूरी सैर सपाटे के लिए वाहनों का इस्तेमाल ना कर प्रदूषण को कम करने में योगदान कर सकती हैं। शॉपिंग या खरीदारी के लिए नजदीकी बाजार तक पैदल भी जाया जा सकता है या फिर बहुत से पश्चिमी देशों की तरह साइकिल चलाने को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। अगर घर आंगन में क्यारियां बनाकर अथवा गमलों में फूल इत्यादि के पौधे लगाए जाए तो घर के वातावरण को खुशनुमा बनाने के साथ साथ प्रदूषण को रोकने में भी खासी मदद मिलेगी। बालकनी या टेरेस पर सजावटी पौधे लगाकर घर की सुंदरता में वृद्धि की जा सकती है और ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि कर स्वस्थ वातावरण भी बनाया जा सकता है। आज बढ़ता प्रदूषण वैश्विक चिंता का विषय है और इस पर नियंत्रण किए बिना मनुष्य जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रदूषण को नियंत्रित किया जाना अब परिवार की ही नहीं बल्कि समय की भी आवश्यकता है।
1: सखियों, अभी आप सभी ने सुनी हमारी मेहमान सुनीता जी की वार्ता। वार्ता का विषय था जरूरी है प्रदूषण नियंत्रण। सखियों, महिलाओं को सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है। कभी कोई नई साड़ी, कभी पसंदीदा रंग की लिपस्टिक, तो कभी शीशे के सामने खड़े होकर खुद को निहारने का मन। और सच कहें तो अपने चेहरे पर मुस्कान और आत्मविश्वास देखकर जो खुशी मिलती है उसकी बात ही अलग होती है। लेकिन कभी कभी यही खुशी थोड़ी कम हो जाती है जब आईने में अपना चेहरा थका थका, बेजान या मुरझाया हुआ नजर आता है। खासकर गर्मियों के मौसम में तेज धूप, पसीना और भाग दौड़ का असर हमारी त्वचा पर साफ दिखाई देने लगता है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी त्वचा को थोड़ा सा समय दें और उसकी देखभाल पर भी ध्यान दें। इसलिए आज हम ब्यूटी टिप्स में आपके लिए लाए हैं गर्मी के मौसम में कैसे रखें अपनी त्वचा का खास ख्याल, ताकि चेहरे की ताजगी और प्राकृतिक चमक बनी रहे। तो सखियों, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात है अपने शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी देना। गर्मियों में पसीने के साथ शरीर से पानी की मात्रा कम होती रहती है, जिसका असर हमारी त्वचा पर भी दिखाई देता है। इसलिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। साथ ही नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ और मौसमी फलों को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें। और जब बात त्वचा की देखभाल की हो रही है तो कुछ आसान घरेलू उपाय भी आपकी मदद कर सकते हैं। सखियों, हर त्वचा की ज़रूरत अलग होती है, इसलिए अपनी त्वचा के हिसाब से फेस पैक अपनाना बेहतर रहता है। सखियों, अब सवाल ये है कि अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से कौन सा फेस पैक इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं, अगर धूप और गर्मी से चेहरा थका थका सा बेजान लग रहा है तो खीरे को कद्दूकस करके उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाएं और 10 मिनट तक चेहरे पर लगाकर रखें। इससे त्वचा को ठंडक और ताजगी का एहसास मिलता है। अगर त्वचा रूखी महसूस

है तो एक चम्मच एलोवेरा जेल में थोड़ा सा शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं और 10 से 15 मिनट बाद धो लें। ये स्किन को नमी देने में मदद करता है। वहीं अगर गर्मी की वजह से स्किन पर चिपचिपाहट या अतिरिक्त तेल महसूस हो रहा हो तो मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। इसे 10 से 15 मिनट तक चेहरे पर लगाकर रखें और फिर सादे पानी से धो लें या सॉफ्ट स्पंज से हटा सकती हैं। इससे चेहरा दिखेगा एकदम फ्रेश। सखियो, इसके साथ ही अपने खान पान पर भी ध्यान दें। तले भुने और अत्यधिक मसालेदार भोजन की जगह हरी सब्जियां, सलाद, खीरा और साथ ही मौसमी फलों को भी अपनी डाइट में शामिल कीजिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर की चमक ही चेहरे पर सबसे पहले दिखाई देती है। और एक बात जो अक्सर हम भूल जाते हैं वो है पर्याप्त मात्रा में नींद। जब शरीर को पूरा आराम मिलता है तो उसका असर चेहरे पर भी दिखाई देता है। इसलिए कोशिश करें कि रोज़ पर्याप्त मात्रा में नींद लें और तनाव से दूर रहें। और अंत में सबसे ज़रूरी बात, अगर स्किन से जुड़ी कोई भी परेशानी बार बार हो रही है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। सखियो, 8 जून को आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष में आकाशवाणी रामपुर द्वारा एक पैदल यात्रा जिसका नाम आकाशवाणी वॉकेथॉन 2026 रखा गया है। हम सभी श्रोताओं, युवाओं, महिलाओं और नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि इस विशेष पैदल यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग लें और इसे सफल बनाएं। सहभागिता के इच्छुक प्रतिभागी गूगल पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपना पंजीकरण अवश्य कराएं। पंजीकरण की प्रक्रिया सरल है और इसमें केवल कुछ मिनटों का समय लगता है। यह पैदल यात्रा प्रातः 6 बजे आकाशवाणी परिसर से प्रारंभ होकर अंबेडकर पार्क तक जाएगी। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे प्रातः 5:30 बजे तक आकाशवाणी परिसर में पहुंचकर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। तो देर किस बात की, आज ही अपना पंजीकरण कराएं और अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर आकाशवाणी के इस गौरवपूर्ण अवसर को यादगार बनाएं। सखियों, अभी जो हमने आपको टिप्स दिए थे उन टिप्सों को अपनाइए और अपनी खूबसूरती को बढ़ाइए। याद रखिए सखियों, खूबसूरती केवल मेकअप से नहीं आती बल्कि अच्छी आदतों, संतुलित आहार, पर्याप्त पानी, अच्छी नींद और खुशहाल मन से आती है। तो सखियों, इस गर्मी अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी त्वचा का भी खास ख्याल रखिए और अपनी प्राकृतिक मुस्कान को हमेशा बनाए रखिए। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखेंगी। सखियों, अब समय हो चला है आप सभी सखियों से विदा लेने का। अगले अंक में फिर होगी आप सभी सखियों से मुलाकात नए विषय लेकर। इसी के साथ अपनी सखी श्रद्धा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुमकुम, आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। अपराह्न के 2 बजने वाले हैं। अब मिडडे न्यूज़ और दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: serves to reaffirm the commitment to protecting the environment and furthering sustainable growth. Union Minister of State for Information and Broadcasting Dr. L. Murugan and Prasar Bharati Chief Executive Officer Gaurav Dwivedi today planted saplings under the Ek Ped Maa Naam campaign at the premises of Akashwani in New Delhi. Talking to Akashwani,
1: Narendra Modi ji called the nation to Maa Ka Naam Ek Ped Lagane Ke Liye. Importance of the environment, we have to save the water and we have to plant that.
0: U.S. President Donald Trump has said the United States has been in direct contact with Hezbollah as part of efforts to reduce tensions in Lebanon and the wider West Asia region. Speaking at the White House, Trump said progress has been made in discussions aimed at reducing violence in Lebanon. He made the remarks after being asked about reports that Hezbollah had rejected a U.S.-backed peace proposal. He said he had discussed the issue with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and other regional leaders. India will take on arch rivals Pakistan in the semi-final of the Men's Under-18 Asia Cup hockey tournament at Kakamigahara Hockey Stadium in Japan today. The match will start at 3:30 p.m. IST. India entered the last four after finishing second in Pool A with 9 points. India's Pragyananda Ramesh Babu remained in contention for the Norway Chess 2026 title after defeating world champion Gukesh Dhamaraju in round 9. The victory took Pragyananda to 15 points, just half a point behind leader Wesley, who has 15.5 points after beating Magnus Carlsen. India Meteorological Department has said conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into some more parts of Central Arabian Sea, entire Goa, parts of Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, remaining parts of Tamil Nadu and parts of northeastern states during the next 2 to 3 days. The weather agency predicted heavy to very heavy rainfall during the day in places over coastal Karnataka, Kerala and Mahe, north interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to dedicate and lay foundation stone of multiple development projects worth over 18,804 rupees in Gujarat today. Centre grants tax exemption to foreign institutional investors on capital gains in government securities. RBI keeps repo rate unchanged at 5.25%, reduces GDP growth projection to 6.6% from 6.9% for current fiscal. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal to arrive in New Delhi on 3-day visit today. World Environment Day being observed, government inaugurates 18 Namo Oxygen Parks in New Delhi. And India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey in Japan this evening. With that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का

0: उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्यीय जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र

0: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6 करोड़ 40 लाख पौधे लगाए गए हैं।
2: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6 करोड़ 40 लाख वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40 लाख से 60 लाख वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
1: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
3: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे यस एंड माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
4: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरणीय संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
5: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर भोकली है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालीन

0: पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:03 क्षमा कीजिए, दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरा दौर।

कार्यक्रम सुनहरा दौर के सभी श्रोताओं को अनुराग सिंह राजपूत का अनुरागमय नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत, फिल्म का नाम है धूम और आवाज है अभिजीत की।

आज सुनहरा दौर में हम आपको सुनवा रहे हैं 2000 के दशक के फिल्मी गीत। कार्यक्रम के इस पहले गीत में अभिजीत का साथ दे रही हैं सौम्या राव।

आज सुनहरा दौर में हम आपको सुनवा रहे हैं 2000 के दशक के फिल्मी गीत। कार्यक्रम के इस पहले गीत में अभिजीत का साथ दे रही हैं सौम्या राव।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरा दौर में 2000 के दशक के फिल्मी गीत। कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है हम तुम।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरा दौर में 2000 के दशक के फिल्मी गीत, अपने रेडियो साथी अनुराग सिंह राजपूत के साथ। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है और आवाज़ें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरा दौर। इसमें हम आपको सुनवा रहे थे 2000 के दशक के फिल्मी गीत। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर अपराहन के 3 बजे हैं। मीडियम वेव पर हमारी आज की प्रथम सभा संपन्न होती है। अब से लेकर शाम 5 बजे तक विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम FM 102.9 MHz पर मौजूद रहेंगे। शाम के 5 बजे मीडियम वेव और FM दोनों मीटरों पर एक साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी। तो आप बताइए पहले तो अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मेरा नाम शीला निको से है। मैं
0: तो आप कहाँ से हैं?
1: चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट वरोरा महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, चंद्रपुर से बात कर रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ मैडम, घर
0: अच्छा,
1: में रहती हूँ और दृष्टिहीन हूँ
0: तो आप बताइए
1: मैं।
0: कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, जो आपको
1: मुझे
0: बहुत
1: गाना सुनना अच्छा लगता है
0: गाना सुनना अच्छा लगता है आपको, और गाना गाना अच्छा लगता
1: जी।
0: है?
1: हाँ, गाना गाना भी अच्छा लगता है, गाना सुनना भी अच्छा लगता है। मुझे
0: तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज?
1: जाग्वर फिल्म में का वो गाना सुनना है, तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है।
0: तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है, तो आपको सुनवाते हैं जानवर फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं।
1: मैं उड़ीसा गंजाम जिला से बोल रही हूँ।
0: जी, आप अपना नाम बताइए।
1: ममता दास मेरा नाम।
0: अच्छा, तो आप क्या करती हैं ममता जी?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: घर में मैं और मेरा हस्बैंड और मेरी दो बेटियां हैं।
0: अरे वाह, दो बेटी हैं आपकी, तो बड़ी हैं कि छोटी हैं?
1: हाँ, बड़ी हो गई है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं नर्सिंग की, बीएससी
0: अरे वाह,
1: नर्सिंग की।
0: बहुत अच्छी बात है। यानी सेवा वाली वो नौकरी कर रही है, वो पढ़ाई कर रही है जिससे कि वो सबकी सेवा कर सके, है ना? जी, तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपका खाली समय होता है तो?
1: मुझे सिलाई आती है तो मैं कभी खाली नहीं रहती। काम खत्म, घर की काम खत्म होने के बाद सिलाई कर लेती
0: बहुत
1: हूँ।
0: अच्छी बात है ये, आप अपना ये अपना जो मनपसंद काम है वो आप करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ना हमें, हम सभी को कोई ना कोई शौक होता है, कोई ना कोई हॉबी होती है, लेकिन क्या है ना, हम उसको
1: हाँ
0: पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं अरे घर के
1: हाँ
0: काम है, ये सब कर लें फिर समय कहाँ मिलता है। लेकिन आपने उस चीज़ को अच्छे से किया है, तो आप क्या क्या
1: मुझे
0: चीज़ें
1: आज
0: सिल
1: बहुत
0: लेती हैं?
1: खुशी हो रही है कि आज सखी सहेली पर मेरी फोन लगी है। तो जून 5 में मेरी छोटी बेटी की बर्थडे है, जो जून 25 में मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे है। तो
0: अरे वाह,
1: मुझे
0: जून में ही है दोनों बेटियों का बर्थडे।
1: हाँ, और मेरी बहन की बेटी के जून 4 में है।
0: अच्छा,
1: तो कुछ हैप्पी बर्थडे के गीत सुनाई देंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत बर्थडे की, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो खूब आगे बढ़ें और आपका नाम
1: हाँ
0: रोशन करें। जी, तो आपने बताया कि आप
1: तो
0: सिलाई कर लेती हैं, तो आप क्या क्या सिलती हैं?
1: सलवार ब्लाउज सब सिलाई कर देती
0: अच्छा,
1: हूँ।
0: सारी चीज़ें आप सिल लेती हैं। तो आपको बाहर के
1: हाँ,
0: सिले हुए कपड़े खरीदने अच्छे लगते हैं, बाहर से शॉपिंग करती हैं, या अपने घर में आपको बनाना अच्छा लगता है?
1: मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो
1: है।
0: बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: वो जो सुजाता फिल्म का गीत है ना,
0: सुजाता का कौन सा?
1: जियो हजारों साल।
0: अच्छा ठीक है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको पसंद का ये गीत।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर फिर से एक बार 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब आप दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी ना कभी तो कामयाब होते ही हैं, और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल नहीं लगाइए और अपनी सखियों को भी अवसर दीजिए अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक का और संपादन में हमारी सहयोगी बनी नम्रता टिकोड़े, और साथ ही विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का। आप आ गए? मुझे तो पता ही नहीं चला, भावना ने रसोई घर से निकलते हुए संदीप से कहा। अभी आया हूं बस, मां ने दरवाजा खोला। पता है तुम्हें, घंटी बजाने ही वाला था कि मां ने दरवाजा खोल दिया, संदीप ने कहा। हाँ, खाना खिला दिया उन्हें, कह रही थी कि आप आओगे तो साथ में बैठकर खाएंगे, पर मैंने आपका ही नाम लेकर कह दिया कि उन्होंने कहा है कि माँ को जल्दी खाना खिला दिया करो, माँ के लिए लेट खाना खाना ठीक नहीं। मैंने खाना खाकर घूमने का और कह दिया, इसीलिए गई हैं, शायद थोड़ा नाराज होकर। तुमने अच्छा किया भावना, ऐसी नाराजगी सर आंखों पर, शुगर में जल्दी खाना घूमना फिरना जरूरी है और माँ इस मामले में बेहद लापरवाह है। तुमसे नाराज होती हैं तो मैं ही कह दिया करूंगा। नाराजगी में क्या कहकर गई है पता है? कह रही थी जो हुकुम, अब तो जैसा आप कहेंगी वैसा ही करना पड़ेगा, भावना ने हंसते हुए कहा और फिर नाटकीय अंदाज में कहने लगी, सोचो जरा क्या क्या सुनना पड़ता है हमें। खैर, कैसा रहा आज का दिन? भावना ने संदीप को पानी देते हुए पूछा। रोज की तरह ही था, बहरहाल मेरा एक सरप्राइज फेल हो गया। सोचा था इस बार तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे, शादी को 2 साल हो गए पर तुम्हें कोई सरप्राइज ही नहीं दे पाया। एक पेमेंट मिलने की उम्मीद थी पर वो अब अगले महीने के लिए टल गई, और अगले ही हफ्ते तो तुम्हारा बर्थडे है। पता नहीं क्यों जो सोचता हूँ हो ही नहीं पाता, सैलरी में तो घर का खर्च ही मुश्किल से निकल पाता है और तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं दे पा रहा, क्या करूं? संदीप ने गहरी सांस ली। अरे ऐसा क्यों कहते हो आप? आप इतना सोचते हो वही काफी है, मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। आपको तो याद भी था, कई सारे पतियों को तो अपनी पत्नी के जन्मदिन तक याद नहीं रहते। याद है वो दीपेश जी, अपनी पत्नी से ही पूछ बैठे तुम्हारा जन्मदिन कब पड़ता है, भावना हंसकर कहने लगी। बर्थडे फिर मन जाएगा, आपका साथ है तो सब बढ़िया है।

सब बढ़िया तो है भावना, लेकिन इस मन का क्या करें? तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हारा अगला बर्थडे बेस्ट होगा। मम्मी ने बताया था तुम्हें चंदेरी साड़ी लेने की बहुत इच्छा है। देखता हूँ बजट में बिठाते हैं, बर्थडे में ना सही, बाद में ही सही। समझो वही तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा रहा। क्या कहा? भावना ने आश्चर्य से कहा, मम्मी जी ने बताया कि मुझे चंदेरी साड़ी लेनी है। आपको पता है मैंने जिक्र किया नहीं और मम्मी ने पहले ही कह दिया कि दीदी के लिए चंदेरी साड़ी लेनी है सबसे पहले। मम्मी जी के लिए तो हर चीज पहले उनकी बेटी के लिए आएगी, फिर बहू के लिए। बहू दिन भर उनका ध्यान रखे पर उनका मन तो अपनी बेटी में ही लगा रहता है।

डांटते हुए कहा। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, आगे से ध्यान रखेंगे, संदीप ने बात को संभालते हुए कहा और भावना से चुप रहने का इशारा किया। भावना को मम्मी जी की ये बातें ताने जैसी चुभ गई और उसके मन का रेडियो ये गीत गाने लगा।

भावना और संदीप खाना खाने लगे। माँ अपने कमरे में सोने चली गई थी। भावना का मूड खराब हो चुका था। संदीप को पूरा एहसास था कि ज्वालामुखी फटने ही वाला है। वो तैयार था। देखा आपने क्या गलत कहा था मैंने? उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही तो कहा था ना। फिर भी कितना सुना दिया मुझे। इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी कोई कदर नहीं मेरी। अरे वो भी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कह रही थी, और तुमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो मुझे कह रही थी भावना, संदीप ने बचाव में कहा। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, वो अक्सर ऐसा ही करती हैं। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मेरी कमियां ही बताती रहती हैं और दीदी की हर जगह तारीफ। मुझे तो लगता है मुक्ता से भी मेरी बुराई ही करती होंगी। भावना ऐसा क्यों सोचती हो? नजरिया बदलो अपना। नजरिया बदलने से कई बार पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तुम्हें क्यों लगता है कि माँ तुम्हारी बुराई ही करती हैं? तुम माँ को लेकर अपने पूर्वाग्रहों से बाहर तो निकलो, तुम्हें बेहतर लगेगा। घर में थोड़ी बहुत बातें तो होती ही रहती हैं, अब इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? माँ भी तो तुम्हारा ध्यान रखती हैं, बस उनके तरीके थोड़ा अलग हैं। अब सोचो तुम्हारी मम्मी भी तो तुमसे कितना प्यार करती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती। तुम परीक्षा की तैयारी कर सको इसलिए तो माँ तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देती हैं, और इस पर थोड़ा बहुत डांट भी देती हैं तो टाल दिया करो, संदीप ने समझाते हुए कहा। मुझे पता था आप यही कहोगे, हमेशा की तरह। आजकल तो मम्मी जी अपनी सहेली के साथ व्यस्त रहती हैं, तो पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पढ़ाई कैसे हो? तो पढ़ाई होगी भी कैसे, पूरा ध्यान तो तुम्हारा माँ पर ही लगा रहता है। हाँ मुझे जो लगा कह दिया, भावना गुस्से में बोली। अच्छा अच्छा तुम नाराज मत हो मेरी प्रिय, तुम गलत सोचती हो। सही सोच रखो, जब तुम्हारी मम्मी घर पर कहती हैं कि पहले मेरी बेटी के लिए ये चीज आएगी, तब तो तुम खुश होती हो, और माँ वो बात कहें तो बुरी लगती हैं। मेरी मम्मी की बात तो आप ही ना करें, वो ऐसी नहीं है। वो तो मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखती हैं, पलकों पर बिठाती हैं उन्हें। ऐसा तुम्हें लगता है, थोड़ी बहुत बातें तो उनकी भी होती ही होंगी। छोड़िए इस बात को, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, ये तो मन की बात है। प्यार तो दिल तक पहुंच ही जाता है, अगर उनके मन में मेरे लिए स्नेह होगा तो पहुंचेगा। भावना आज तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक दिन जरूर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था। बस समय रहते तुम्हें एहसास हो जाए।

अगले दिन भावना ने अपने मूड को ठीक किया। नया दिन, नई शुरुआत। मम्मी जी को चाय नाश्ता दिया। संदीप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुका था। सब्जी अक्सर मम्मी जी ही बनाया करती थी, रसोई में भावना का पूरा साथ देती, लेकिन आज सुबह से ही उन्होंने मना कर दिया था। भावना, जो मन हो वो सब्जी बना लेना, मैं नहीं बना रही। और नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। और तो और, आज तो पूजा भी उन्होंने जल्दी जल्दी कर ली थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी। मम्मी जी अपने कमरे से तेजी से आईं, जैसे वो इस आने वाले का इंतजार ही कर रही थीं। दरवाजा खोला, भावना ने देखा मुक्ता। लो, आज तो ये सुबह से ही आ गई। दोनों अंदर कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। भावना का सिर चकरा गया। ऐसी भी क्या बात, मम्मी जी का पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा, इतनी गपशप की लालसा। हे राम, ये मम्मी जी को जाने क्या होता जा रहा है। उस दिन शाम की चाय पीकर ही मुक्ता अपने घर गई। देर शाम जब संदीप घर आया तो समझ गया कि आज भी भावना का मूड कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। जैसे ही उन्हें एकांत मिला, उसने भावना से पूछ लिया, अब आज क्या हो गया? आज तो मुक्ता सुबह से ही घर आ गई थी, शायद मम्मी जी ने ही बुलाया था, और शाम की चाय पीकर ही घर गई। आज भी मम्मी जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। दोपहर के समय तो खाना खाने के बाद मैं और मम्मी जी रोज रेडियो पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनते हैं। तुम्हें पता है, मम्मी जी का साथ देते देते मुझे भी रेडियो सुनने की आदत हो गई है। रेडियो सुनते सुनते मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। पर आज तो वो सखी सहेली सुनने भी नहीं आई। मैंने उन्हें बुलाया, फिर भी नहीं आई। कहा रात में सुन लूंगी या फिर कल सुनेंगे। तुम मुझे पहले बताओ, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है, मुक्ता का आना या माँ का तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना या सखी सहेली उनके साथ नहीं सुन पाना? संदीप ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। सब कुछ, मम्मी जी ने ऐसा अब तक कुछ नहीं किया। हम एक दूसरे पर कितना ही नाराज हों, पर हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। तुम्हें कहीं मुक्ता से जलन तो नहीं हो रही है? संदीप ने चुटकी ली। मेरी जीवन संगिनी, ओ मेरी अर्धांगिनी, अपने दिल को बड़ा करो, संदीप ने नाटकीय अंदाज में कहा। और माँ से नहीं, मम्मी जी से कहो, जाइए मम्मी जी, जी लीजिए अपनी जिंदगी। और फिर थोड़ा संजीदा होकर कहने लगा, वैसे माँ के प्रति तुम्हारा ये स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, मैं कोई उनके दुश्मन थोड़े ही हूँ? आखिर उन्होंने मुझे आपको जो दिया है। वाकई में, संदीप ने प्यार भरे अंदाज में कहा और दोनों खिलखिला पड़े।

अगले दिन रोज की ही तरह संदीप ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी जी कुछ शांत सी थीं, अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थीं। भावना को उनकी शांति चुभ रही थी। वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात निकलवाती, पर मम्मी जी हाँ हूँ सा छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाती। फिर वही शांति। दोपहर के बाद मम्मी जी के फोन की घंटी बजी और वो फोन लेकर अंदर चली गई। जब बाहर

नहीं, तो भावना ने कौतूहल से पूछा, क्या दीदी का फोन था? पर मम्मी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। भावना को बड़ा बुरा लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं, मैंने ऐसा क्या किया है। खैर, अब मैं भी इन पर ध्यान नहीं दूंगी, अपना काम कर दिया, बाकी उन्हें जो करना है करें, मैं तो मन लगाकर पढ़ाई करूं जिससे मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर इन्हें मेरी कदर होगी। और भावना ने यह सोचकर अपने सारे काम निपटाकर पढ़ाई करने बैठ गई। अगले कुछ दिन घर का माहौल ऐसा ही रहा। दिन गुजरे और वो खास दिन आ गया, आज भावना का जन्मदिन है। माँ ने सुबह सुबह भावना के बेडरूम का गेट खटखटाया, भावना जाओ दरवाजा खोलो, लगता है माँ आई है तुम्हें विश करने। इतने सुबह कौन विश करता है, बर्थडे के दिन भी चैन से सो नहीं सकते, भावना ने खींचते हुए कहा। संदीप ने नींद में ही कहा, तुम्हें पता है ना, माँ हमें यूं ही सुबह सुबह चाय पिलाकर विश करती हैं। देखना, तुम्हारे लिए स्पेशल वाली चाय भी लाई होंगी, मैंने कहा तो था तुमसे माँ हम में फर्क नहीं करती। ठीक है मम्मी जी के श्रवण कुमार, खोलती हूँ दरवाजा, भावना ने उठकर दरवाजा खोला। अरे मम्मी जी, आप इतनी सुबह? हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो, मैंने सोचा रोज तुम चाय पिलाती हो तो आज तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं चाय पिला दूं तुम्हें, ये लो गर्मा गर्म चाय, संजू के लिए नहीं बनाई, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है। भावना ने मुस्कुराकर चाय की प्याली अपने हाथ में लेकर टेबल पर रख दी और मम्मी जी ने भावना को प्यार से गले लगा लिया। फिर उन्हें भावना थोड़ी असहज लगी तो वो कहने लगी, अरे बेटा माफ करना, तुम्हें विश करने की उत्सुकता में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तुम्हें बहुत जल्दी जगा दिया, ठीक है तुम आराम करो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो उठ ही गई थी, आशीर्वाद दीजिए। और भावना ने ये कहकर उनके पैर छू लिए। मम्मी जी ने आशीर्वाद दिया।

माँ, मेरे स्पेशल वाली चाय कहाँ है? बस भावना को पिला दी। संदीप ने माँ को छेड़ते हुए कहा। वो तुम्हारे जन्मदिन पर मिलेगी, माँ ने हंसते हुए जवाब दिया। इतने में भावना चाय और नाश्ता लेकर आ गई। मम्मी जी, वाकई आपकी स्पेशल वाली चाय का कोई जवाब ही नहीं। और संदीप को देखकर बोली, लीजिए आप ये चाय पीजिए। पारिवारिक खुशनुमा वातावरण में सबने मिलकर चाय नाश्ता किया। भावना आज खुश थी। एक तो जन्मदिन की खुशी और उस पर मम्मी जी का प्यार भरा बर्ताव, जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। मन ही मन सोच रही थी, बस आज दिन भर मम्मी जी ऐसी ही प्रेम वर्षा करती रहें और वो मुक्ता ना आए, बस मन गया मेरा जन्मदिन। इससे ज्यादा की मुझे उम्मीद भी नहीं है, यही बहुत है। संदीप को छुट्टी नहीं मिल पाई थी, सो वो ऑफिस के लिए चला गया। इधर भावना अपने कामों में लग गई, पर मम्मी जी का ध्यान दरवाजे की घंटी पर ही लगा था। और दोपहर ढलते दरवाजे की घंटी बजी। भावना कुछ काम कर रही थी, सो उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी कोई है दरवाजे पर, क्या आप देख लेंगी? लेकिन मम्मी जी जानबूझकर अपने कमरे में चली गई, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब भावना को गुस्सा आना लाजमी था। मन ही मन बुदबुदाई, काम कर रही हूं पर नहीं कि दरवाजा भी मैं ही खोलूं, बाकी सब तो बहुत बिजी हैं। उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे का गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो चुका था। एक फूलों का गुलदस्ता और एक पार्सल, दोनों साथ में। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी दूर से उसे ताक रही थी। भावना बेहद खुश थी। खुशी खुशी मम्मी जी को बताया, मम्मी जी देखिए इन्होंने तो इतना बढ़िया सरप्राइज दिया है, सुंदर फूलों का गुलदस्ता और ये गिफ्ट पार्सल। शायद इसीलिए आज ऑफिस चले गए हैं कि ये सरप्राइज दे सकें। बढ़िया है बेटा, गिफ्ट तो देखो क्या है। हाँ मम्मी जी। और उसने गिफ्ट को खोला और वो लगभग उछल पड़ी। चंदेरी की साड़ी, मम्मी जी याद है आपको, हम उस दिन देख रहे थे तो यही साड़ी मैंने ऑनलाइन पसंद की थी। इन्हें कैसे पता चला? उफ, मुझे ये साड़ी इतनी पसंद आई थी और उन्होंने पता नहीं कैसे पर मुझे मेरे बर्थडे पर ही ये गिफ्ट कर दी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ मम्मी जी। कितनी बातें बना रहे थे कि इस महीने नहीं हो पाएगा, बजट नहीं है, और देखिए। माँ भी उसकी खुशी देखकर खुश हो रही थी। भावना साड़ी लपेट कर नाच ही रही थी और उसके मन के रेडियो पर एक बार फिर से गीत बज रहा था। वो गीत था ये।

दिलीप के आने का इंतजार कर रही थी। उसने वही चंदेरी की साड़ी पहन भी ली थी, उसे मैचिंग ब्लाउज भी मिल ही गया था। संदीप को आने में थोड़ी देर ही हो रही थी और घंटी बजी। भावना दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए। संदीप अपने ही बचाव में कहने लगा, अरे भावना, वो तुम्हारे लिए केक लेने लगा तो थोड़ी देर हो गई। भावना मुस्कुराकर देख रही थी। भावना, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कब खरीदी थी? अब आप ज्यादा मत बनो, आपने ही तो आज कमाल कर दिया। मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन बर्थडे है, फूलों का गुलदस्ता, चंदेरी की मेरी पसंदीदा साड़ी, और आप कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। संदीप हैरान था, कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर घंटी बजी। भावना ने दरवाजा खोला, सामने मुक्ता थी। मुक्ता को देखकर यूं तो उसे खुशी नहीं होती थी, पर आज तो वो यूं ही बहुत खुश थी। हैप्पी बर्थडे भाभी, कैसी लगी साड़ी? आंटी ने खूब मेहनत करवाई, इतनी शॉपिंग साइट्स देखी तब जाकर ये साड़ी मिली। आंटी को आपको यही गिफ्ट करनी थी। भाभी बहुत लकी हो आप, आंटी को आपकी पसंद ना इतनी पता है, मैं तो हैरान ही हो गई। वैसे साड़ी आपको पसंद तो आई ना? मम्मी जी की ओर देखकर मुक्ता कहने लगी, आंटी देखिए, रंग तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऑर्डर किया था। भाभी वैसे गुलदस्ता कैसा लगा? वो मेरा आइडिया था, बस मैंने उसमें पीले फूल भी जोड़ने के लिए कहा था। खैर आंटी जी, अब तो आप खुश है ना? भाभी आप जो एग्जाम दे रही हो उसमें अव्वल आओ, आंटी को तो आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, वो कह रही थी आप अगले साल सरकारी अफसर बन जाओगी। कह रही थी मेरी भावना तो ऑनलाइन का काम चुटकियों में कर लेती है, पर उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देना था इसलिए मुझसे हाथ मिलाना पड़ा। इतने में मुक्ता के फोन की घंटी बजने लगी और वो बाहर चली गई। मम्मी जी ने हंसते हुए कहा, कितना बोलती है ये लड़की, बस एक बार शुरू हो जाए। लेकिन अच्छी है, उसी से तो ऑर्डर करवाया, मुझे क्या आता है। भावना अब तुम मुझे सिखा देना साड़ी।

पसंद आई? वही वाली है ना जो तुमने पसंद की थी? भावना अवाक होकर मम्मी जी को देख रही थी। मम्मी जी, ये सरप्राइज आपका था, तो आपने बताया क्यों नहीं? और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर मम्मी जी से लिपट गई। उसे बीते दिनों की सारी बातें अब एक अलग नजरिए से दिख रही थी। क्या फर्क पड़ता है बेटा, संजू ने दिया या मैंने? बात तो तुम्हारे चेहरे की खुशी से है। तुम्हारी खुशी कम तो नहीं हो गई ना कि सरप्राइज मैंने दिया है? मम्मी जी ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं माँ, मेरी खुशी तो कई गुना बढ़ गई। माँ, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसीलिए आपकी मुक्ता से सीक्रेट मीटिंग्स चल रही थी और ये मैं समझ ही नहीं पाई। फिर संदीप को देखकर कहने लगी, माँ ने मेरे लिए सब किया। और फिर कस कर मम्मी जी से लिपट गई। संदीप की भी आंखें भर आईं। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी,

इतने पैसे? अरे तुम जो मुझे पैसे देते हो वो ही पड़े थे, मेरा अपना क्या खर्च है? एक प्रीति है, एक भावना है, और मैं, मुझे तो आप भूल ही जाओ, बस ये दोनों बेटियां ही हैं आपकी। अरे मेरे बेटे, अब प्रीति के लिए चंदेरी साड़ी लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी, उसे भी तो दिलानी है ना। भावना ने शरारत भरी नजरों से संदीप को देखा और सब खिलखिला पड़े। मुक्ता भी आ गई और फिर भावना ने केक काटा और सबने गीत गाया।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव पर और FM पर हमारी आज की दूसरी सभा एक साथ आरंभ हो रही है। सभा के आरंभ में सुनिए फिल्म संगीत का कंप्लीट प्रोग्राम आज शाम।

आज शाम के सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त छवेरिया का नमस्कार। सूरज की किरणें जब धीमी पड़ती हैं और हवाओं में धीमी धीमी ठंडक घुल जाती है, तब सुरों की मिठास दिल को छूने आती है।

0: तो आइए शुरू करते हैं शाम की शुरुआत कुछ मधुर एहसासों के साथ। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे लेते हैं पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास सहभागी बने।
0: श्रोताओं, बात हो रही थी शाम के समय की और शाम के एहसासों की। बातों और चिंताओं पर सोच विचार करते हैं, उन्हें समझते हैं, साथ ही उनका सॉल्यूशन करने के पॉइंट भी मिल जाते हैं। इस समय किताब पढ़ना, संगीत सुनना और परिवार के साथ समय बिताना अच्छा लगता है।

श्रोताओं, शाम ढलती है तो सूरज नहीं, क्योंकि शाम की रोशनी जब शुरू से मिलती है तो हर दिल एक नई धुन पर धड़कता है। हर शाम एक नया संदेश देती है और कुछ यादें भी ढलती हैं। संगीत उन्हीं यादों को आवाज़ देता है, क्योंकि शाम का समय ये वो समय है जब इंसान अपनी दौड़ भाग की ज़िंदगी से पुरसुकून होकर घर लौटता है और जीवन को सुखमय समझता है।

जी हाँ श्रोताओं, आप भी आज इस सुहानी शाम में कुछ देर के लिए चिंताओं को किनारे रख दें, बीते हुए दिन की अच्छी बातों को याद करें और आने वाले कल के लिए नई उम्मीदों को अपने दिल में जगा दें, क्योंकि हर शाम हमें ये संदेश देती है कि चाहे दिन कैसा भी रहा हो, कल एक नई शुरुआत हमारा इंतज़ार कर रही है। इसी के साथ आज शाम से जवेरिया को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आज शाम अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का ये कम्पियट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडिया वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे इस समय आकाशवाणी रामपुर की दूसरी सभा के प्रसारण।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 5:15 हुए हैं। आप प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रही हैं आपकी युवा साथी मोनिका कुमार और नव्या अग्रवाल।

0: सहारे अक्सर छूट जाते हैं, लेकिन हौसले साथ रहते हैं। अपनी ताकत पहचानो, क्योंकि आपकी असली शक्ति आप खुद हैं।
1: नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा शो युववाणी में। मैं हूं आपकी रेडियो साथी नव्या अग्रवाल।
0: और मैं हूं आपकी रेडियो साथी मोनिका कुमार। तो करिए स्वीकार हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आकाशवाणी को पूरे 90 साल होने जा रहे हैं, और इसी शानदार मौके को और भी यादगार बनाने के लिए आपका अपना स्टेशन आकाशवाणी रामपुर लेके आ रहा है वॉकाथॉन 2026।
0: बिल्कुल, तो तारीख नोट कर लीजिएगा, 8 जून। ये वॉकाथॉन 8 जून को सुबह सुबह आकाशवाणी परिसर से शुरू होगी। इसमें आप सभी साधन आमंत्रित हैं, आना सबको है।
1: बस शामिल होने के लिए एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथियों, आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर जाइए, वहां आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। बस उस पर क्लिक कीजिए और अपनी डिटेल्स भर दीजिए।
0: तो देर मत कीजिए, फटाफट रजिस्ट्रेशन कीजिए और 8 जून को हमारे साथ कदम से कदम मिलाइए। तो साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के सवाल के साथ। और हमारा आज का सवाल है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है?
1: साथियों, हमारा सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। हमारा सवाल है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? और इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपको जाना होगा आकाशवाणी रामपुर के फेसबुक पेज पर, और आज की अपडेटेड पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिख भेजने होंगे अपने जवाब। सही जवाब देने वाले श्रोता साथियों के नाम हम अनाउंस करेंगे प्रोग्राम के एंड में।
0: दोस्तों, आपको याद दिला दें कि आज दिन है शुक्रवार, और आज के दिन हमारा आज हफ्ते का महीने का पहला शुक्रवार है, जिसमें हमारा आज का सेगमेंट रहता है चिट्ठी आई है। तो आप अपने प्यारे प्यारे खत हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी आई है, युववाणी अनुभाग द्वारा के निदेशक आकाशवाणी रामपुर पर। अरे नव्या, कभी सोचा है कि अगर एक दिन अचानक सारे पेड़ गायब हो जाए तो क्या होगा?
1: अरे मोनिका, सोच कर ही डर सा लग रहा है। ना साफ हवा मिलेगी, ना ठंडी हवाएं, और ना ही पक्षियों की चहचहाट सुनाई देगी।
0: बिल्कुल, और शायद इसी वजह से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ताकि लोग पर्यावरण की अहमियत को समझें।
1: वैसे पर्यावरण शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ पेड़ पौधे आते हैं, लेकिन मोनिका, पर्यावरण में तो हवा, पानी, मिट्टी, जंगल, पशु पक्षी और हम इंसान भी तो शामिल हैं।
0: बिल्कुल नव्या, आपने सही कहा। मतलब पर्यावरण स्वस्थ होगा तो हमारी जिंदगी भी स्वस्थ होगी।
1: लेकिन आजकल जिस तरह से प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ रहा है, नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं और जंगल काटे जा रहे हैं, वो तो चिंता की बात है।
0: और इसका असर भी दिख रहा है। पहले मौसम काफी हद तक अनुमान के अनुसार चलता था, लेकिन अब कभी तेज गर्मी, कभी अचानक बारिश, तो कभी बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिलती है।
1: हाँ मोनिका, और एक रिपोर्ट के अनुसार बढ़ते प्रदूषण का असर सिर्फ प्रकृति पर नहीं बल्कि इंसानों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है।
0: बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात यह है कि बदलाव आने के लिए हमें कोई बहुत बड़े काम करने की जरूरत नहीं है।
1: जी हाँ मोनिका, जैसे कि घर से निकलते समय बेकार जलती हुई लाइटें बंद कर देना, पानी बर्बाद ना करना, कपड़ों के थैले इस्तेमाल करना, और आसपास में सफाई रखना।
0: और सबसे आसान काम, हर साल कम से कम एक पौधा लगाना और उसकी देखभाल करना।
1: सही कहा, क्योंकि पौधा लगाना तो आसान है, लेकिन उसे बढ़ाना और उसकी असली जिम्मेदारी लेना बहुत मुश्किल है।
0: बिल्कुल, अक्सर लोग फोटो खिंचवा कर पौधा लगा तो देते हैं, लेकिन वह भूल जाते हैं कि पौधा कहाँ है, कैसा है, कुछ नहीं पता।
1: जबकि पर्यावरण संरक्षण कोई एक दिन का अभियान नहीं बल्कि रोज की आदत होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, अगर हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति भी हमारा ध्यान रखेगी।
1: और यही विश्व पर्यावरण दिवस का सबसे बड़ा संदेश है कि धरती हमें विरासत में नहीं मिली बल्कि हमने इसे अपने आने वाली पीढ़ियों से उधार में लिया है।
0: वाह, बहुत सुंदर बात कही। इसलिए आज हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें अपने स्तर से जरूरी योगदान देना चाहिए,
1: क्योंकि साथियों छोटा सा प्रयास ही बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकता है।
0: और आखिर में बस इतना ही, स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन है,
1: और स्वस्थ जीवन ही खुशहाल भविष्य की पहचान है।
0: दोस्तों, अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात।
2: फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।

0: से जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
4: वेलकम बैक साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। और दोस्तों, अब चलते हैं सेगमेंट कुछ खास है आज की ओर।
5: कुछ ख्वाबों की बात,
6: कुछ अपनों का साथ,
5: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
6: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
5: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
6: वाकई कुछ खास है आज,
5: कुछ खास है आज।
4: दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के ऐसे महान व्यक्तित्व की जिन्होंने साधारण परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक का सफर तय किया। जी हां, आज हम मना रहे हैं भारत के 7वें राष्ट्रपति यानी जैल सिंह की जयंती। दोस्तों, यानी जैल सिंह का जन्म 5 मई 1916 को पंजाब के फरीदकोट जिले के संधवान गांव में हुआ था। उनका बचपन बेहद साधारण परिस्थितियों में बीता, लेकिन शिक्षा और समाज सेवा के प्रति उनकी लगन असाधारण थी। धार्मिक ग्रंथों का गहरा ज्ञान होने के कारण उन्हें ज्ञानी की उपाधि मिली और यही उपाधि आगे चलकर उनके नाम का स्थायी हिस्सा बन गई।
7: साथियों, ज्ञानी जैल सिंह बचपन से ही देशभक्ति की भावना में ओतप्रोत थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए चल रहे आंदोलनों में उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाने के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई और जनता की सेवा को ही अपना लक्ष्य बना लिया। वर्ष 1972 में वो पंजाब के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने प्रदेश के विकास और जन कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।
4: दोस्तों, उनकी कार्य कुशलता और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए वर्ष 1980 में भारत का गृह मंत्री बनाया गया। इसके बाद 25 जुलाई 1982 को उन्होंने भारत के 7वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस प्रकार वे देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाले पहले सिख राष्ट्रपति बने। ये उपलब्धि न केवल उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय थी।
7: साथियों, राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा। उन्होंने हमेशा संविधान की गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। वो आम जनता से जुड़े रहने वाले राष्ट्रपति के रूप में भी जाने जाते थे। उनकी सादगी, विनम्रता और जनता के प्रति समर्पण ने उन्हें लोगों के दिलों में विशेष स्थान दिलवाया।
4: दोस्तों, ज्ञानी जैल सिंह का जीवन हमें ये सिखाता है कि यदि व्यक्ति के पास दृढ़ संकल्प, मेहनत और समाज के प्रति समर्पण हो तो वह किसी भी ऊंचाई तक पहुँच सकते हैं। उनका जीवन संघर्ष, सेवा और नेतृत्व का प्रेरणादायक उदाहरण है।
7: तो दोस्तों, आज उनकी जयंती पर हम उनके योगदानों को नमन करते हैं और उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का संकल्प लेते हैं कि हमें भी अपने समाज और देश के विकास में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि यही किसी महान व्यक्तित्व को सच्ची श्रद्धांजलि होती है।
4: तो दोस्तों, आइए ज्ञानी जैल सिंह जी को उनकी जयंती पर श्रद्धा पूर्वक याद करें और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करें।

0: दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी थाली में आने वाली मछली आखिर समुद्र या नदी से कैसे पहुंचती है? और अगर कोई बिना नियमों के छिपकर या ज़रूरत से ज़्यादा मछलियां पकड़ने लगे तो इसका असर क्या होगा?
1: बिल्कुल, यही वजह है कि हर साल 5 जून को अवैध, गैर सूचित और अनियमित मत्स्य पालन का के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना कि समुद्री और जलीय संसाधनों की सुरक्षा कितनी जरूरी है।
0: लेकिन पहले ये समझते हैं साथियों कि अवैध, गैर सूचित और अनियमित मत्स्य पालन यानी कि इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग आखिरकार होती क्या है।
1: अवैध मत्स्य पालन बिना अनुमति या कानून तोड़कर मछली पकड़ना। गैर सूचित मत्स्य पालन मतलब मछली पकड़ने की जानकारी संबंधित अधिकारियों को ना देना। और अनियमित मत्स्य पालन मतलब ऐसे क्षेत्रों में मछली पकड़ना जहां उसके लिए कोई नियमित तय ना किया गया नियम का पालन नहीं किया जाता है।
0: साथियों, सुनने में तो ये सिर्फ नियम तोड़ने जैसा लगता है, लेकिन इसके बहुत बड़े नुकसान भी हो सकते हैं।
1: बिल्कुल, जब ज़रूरत से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाती हैं तो कई प्रजातियाँ धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। इससे समुद्री जैव विविधता पर खतरा बढ़ने लगता है और समुद्री प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है।
0: और साथियों, इसका असर सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहता। लाखों मछुआरों का परिवार अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए इसी पर निर्भर होता है। और जैसे जैसे मछलियों की संख्या कम होती है तो उनकी आय और रोज़गार में भी दिक्कत आती है।
1: यही नहीं, वैज्ञानिकों का मानना है कि स्वस्थ समुद्रीय पारिस्थितिक तंत्र जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी मददगार होता है। इसलिए समुद्र की रक्षा करना हमारे भविष्य की रक्षा करना है।
0: दोस्तों, ये दिवस हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। प्राकृतिक संसाधन असीमित नहीं है। यदि आज हम उनका जिम्मेदारी से उपयोग नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
1: सही कहा, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें पर्यावरण संरक्षण का समर्थन करना चाहिए, समुद्री संसाधनों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए और टिकाऊ विकास की सोच को अपनाना चाहिए।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है साथियों, इसलिए ये अवसर हमें याद दिलाता है कि धरती, जल, जंगल और समुद्र सभी हमारी धरोहर हैं।
1: तो आइए संकल्प लें कि हम प्रकृति के संसाधनों का सम्मान करेंगे और उनके संरक्षण के लिए अपना योगदान देंगे,
0: क्योंकि सुरक्षित समुद्र, सुरक्षित पर्यावरण और सुरक्षित भविष्य तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
1: इसी संदेश के साथ आइए मिलकर एक जागरूक और जिम्मेदार समाज का निर्माण करते हैं।
0: साथियों, कुछ खास है आज में बस इतना ही।

0: कुछ ख्वाबों की बात,
1: कुछ अपनों का साथ,
0: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
1: और उन पर नीली स्याही।
2: दोस्तों आइए अभी सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों सेगमेंट चिट्ठी आई है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके प्यारे प्यारे खतों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अभेश सर। तो सर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेगमेंट में।
1: धन्यवाद मोनिका और धन्यवाद नव्या और साथ के साथ धन्यवाद सभी श्रोता साथियों का जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे खत हम तक पहुंचाए हैं। कार्यक्रमों को सुना, कार्यक्रमों को पसंद किया, कार्यक्रमों की बेहतरी के लिए आपके विचार हम तक पहुंचे हैं जिन्हें पाकर बेहद खुशी की अनुभूति हो रही है। और सबसे पहले आप सभी श्रोता साथियों को अवधेश का नमस्कार। और इसी के साथ शुरू करते हैं पत्रों को पढ़ने का सिलसिला। पहला पत्र जानना चाहेंगे किस श्रोता साथी की तरफ से हम तक पहुंचा है।
0: जी सर, पहला खत हमें भेजा है सिबलाइंस रामपुर से। तनुजा जी लिखती हैं, 31 मई को कार्यक्रम सुनकर मन को बहुत प्रसन्नता हुई। युववाणी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह युवा प्रस्तुतकर्ता की ऊर्जा, आत्मीयता और रचनात्मक साफ झलकती है। 2 जून को परिचर्चा सुनी, बहुत बढ़िया तरीके से कशिका जी ने युवा प्रतिभागियों की साथ मिलकर पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। कशिका जी की सहज प्रस्तुति, मीका ठाकुर जी की प्रभावशाली अभिव्यक्त, रतांश जी का आत्मविश्वास, हर्ष जी का उत्साह, स्वास्तिक जी का सकारात्मक दृष्टिकोण, फरीन जी की मधुर वाणी, मोनिका जी की सादगी, नव्या जी की स्पष्टता और फातिमा जी की संवेदनशील प्रस्तुति कार्यक्रम को और भी आकर्षक बनाती है। आप सभी की मेहनत और समर्पण श्रोताओं तक साफ महसूस होता है। धन्यवाद।
1: ये पत्र हमें पहुंचा है सिविल लाइंस से तनुजा जी की तरफ से। आपने युववाणी कार्यक्रम सुना और अपने पत्र में 3 मई के कार्यक्रम का जिक्र किया है जो आपको बहुत पसंद आया है।

0: उसी के साथ आपने 2 जून को जो हमारा युवाणी कार्यक्रम का एपिसोड प्रसारित हुआ था उसके अंतर्गत जो परिचर्चा थी वो भी, उसका भी आपने जिक्र किया है, वो भी आपको काफ़ी पसंद आई है, जो पर्यावरण के, पर्यावरण विषय के ऊपर थी। आप अपने पत्र में कहती हैं कि जो कार्यक्रम युवाणी के जो प्रस्तुतकर्ता हैं, जो कार्यक्रम को प्रेजेंट करते हैं, उनमें ऊर्जा, आत्मीयता और रचनात्मकता साफ झलकती है। आगे आप अपने पत्र में आपने लगभग हर प्रेजेंटर का नाम का जिक्र किया है, उसके साथ साथ आपने एक क्वालिटी भी उनके साथ अटैच की है। इतना प्रेरक पत्र और सराहना के साथ जो आपने ये अपने विचार भेजे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही हमारे प्रेजेंटर्स का इससे मनोबल बढ़ेगा और बेहतर कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए वो और भी अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार तनुजा जी। आगे आप और देखना चाहेंगे हमारे किस श्रोता का पत्र हम तक पहुंचा है, अगला पत्र हमारे किस श्रोता साथी का है।
1: जी सर, अगली चिट्ठी हमें आई है कृतिका अग्रवाल जी की ओर से। इन्होंने लिखा है, प्रिय युवाणी परिवार, आप सभी को हमारा नमस्कार। आपका कार्यक्रम युवाणी सच में श्रोता के दिल को छू लेने वाला सेगमेंट है। जिस सादगी के साथ आप हर प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं, वे सुनने वालों को अपनापन का एहसास कराता है। हमें सबकी प्रस्तुति बहुत पसंद आती है। मैं खासकर नताश जी, जिनकी हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, हर्ष, मेघा ठाकुर, कशिका और नव्या, शरीन जी के सराहना करना चाहूँगी। उनकी मधुर आवाज़, स्पष्ट अभिव्यक्तता और आत्मीय अंदाज कार्यक्रम को और भी खास बना देती है। वे ये लोग जिस तरह से कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं, हर प्रस्तुति में भावना और जिम्मेदारी भी झलकती है। आप सभी की मेहनत काबिले तारीफ है। आशा है कि युवाणी का ये सुंदर सफर यूं ही निरंतर आगे बढ़ता रहेगा।
0: निश्चित रूप से युवाणी का ये सुंदर सफ़र आगे निरंतर बढ़ता रहेगा, क्योंकि हमारे श्रोता साथियों का साथ हमारे साथ है, उनके प्रेरणादायक कामनाएं हमारे साथ हैं। और ये पत्र हम तक पहुंचा है कृतिका अग्रवाल जी की तरफ से, रामपुर से। आप अपने पत्र में कहती हैं कि आपको जो युवाणी कार्यक्रम है वो श्रोताओं को के दिलों को छूने वाला लगता है, और हर प्रेजेंटर जो है काफ़ी सादगी के साथ, अपनेपन के साथ इस कार्यक्रम को प्रेजेंट करता है। अपने पत्र में आपने कुछ प्रेजेंटर्स के नाम भी मेंशन किए हैं। आशा करते हैं कि इस मंच के माध्यम से उन तक आपकी सराहना ज़रूर पहुंच रही होंगी। और जैसा कि आपने कामना की है कि युवाणी का सफ़र ये निरंतर यूं ही चलता रहे, बिल्कुल हम भी आशा करते हैं कि युवाणी का ये सुंदर सफ़र इसी तरह निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, और आप सबका साथ भी, हमारा जो आपका साथ है वो भी हमेशा कायम रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।
1: सर, सेगमेंट में खत्म तो अभी बहुत है, लेकिन अभी हम रुकेंगे एक थोड़े से छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए। हम अपने श्रोता साथियों को सुनवाते एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों आइए अब फिर से अपने सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगली चिट्ठी हमें किन श्रोता साथी की आई है।
1: साथियों, हमें एक चिट्ठी आई है मोहल्ला हलवान शेरकोट बिजनौर से। मोहम्मद वाकर फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितार बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी खान, बिट्टू भैया और हीना खोसर की। आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। सलाम, कैसी हैं आप मोनिका जी और नव्या जी? हम सब आपके रेगुलर लिसनर्स हैं, सभी प्रोग्राम सुन रहे हैं और पसंद आते हैं हमें। हम हेलो फ्रेंड सेगमेंट बहुत पसंद करते हैं। हम एक बात जानना चाहते हैं कि क्या चिट्ठी आई है? प्रोग्राम हर हफ्ते कर दिया गया है, प्लीज़ बताएं।
2: हमारे नियमित श्रोता साथी हैं और नियमित रूप से आपकी चिट्ठियाँ हम तक ज़रूर पहुँचती हैं, और इसी क्रम में आज भी आपकी चिट्ठी हम तक पहुँची है। आप हैं मोहल्ला हलवायान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, और आपके साथ में हैं मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी खान, बिट्टू भैया और हिना कौसर जी। आप अपने पत्र में लिखते हैं कि आप कार्यक्रम रेगुलर सुनते हैं और आपको युववाणी कार्यक्रम बेहद पसंद आता है, खासकर की जो सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स है ये आपको बहुत पसंद आता है। और आगे आपने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि क्या चिट्ठी आई है, प्रोग्राम हर हफ्ते कर दिया गया है, प्लीज़ बताइए। चिट्ठी आई है प्रोग्राम जो सेगमेंट है वो हर हफ्ते तो नहीं है, महीने के पहले तीसरे और पाँचवें शुक्रवार को है, और आज महीने का पहला शुक्रवार है और आज चिट्ठी आई है के अंतर्गत आज आपकी चिट्ठी आप पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, आपके विचार जानने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप हमारे युवाणी कार्यक्रम को नियमित रूप से सुनते हैं और पसंद करते हैं और अपने विचार भी आपने हम तक पहुंचाए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद मोहम्मद वकार फरीदी जी। अगला पत्र हमारे किस श्रोता साथी की तरफ से हम तक पहुंचा है?
0: सर, अगला खत हमें भेजा है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी। ये लिखते हैं, आज का चिट्ठी आई है, कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी तरफ से प्यार भरा आदाब। हमें युववाणी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, रोज़ ही हम इस कार्यक्रम को सुनते हैं। कुछ खास है आज, आज का सवाल, हेलो फ्रेंड चिट्ठी आई है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। चिट्ठी आई है कार्यक्रम तो हर हफ्ते कर दें, मंगलवार को आप जो गज़लें प्रसारित करते हैं उनको फरमाइशी करके

0: आपकी मेहरबानी होगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर सभी स्टाफ और श्रोताओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी और अबरार हुसैन अंसारी जी, आपकी तरफ से ये चिट्ठी हम तक पहुंची है। आप अपनी चिट्ठी में कहते हैं कि आपको कार्यक्रम चिट्ठी आई, जो सेगमेंट चिट्ठी आई है, युवाड़ी के अंतर्गत प्रसारित होना पत्रोत्तर होने वाला पत्रोत्तर सेगमेंट आपको काफ़ी पसंद आता है। आपको युवाड़ी के और भी सेगमेंट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, जैसे हेलो फ्रेंड्स, आज का सवाल। आज आगे आप कहते हैं कि चिट्ठी आई है, सो सेगमेंट है, इसको हर सप्ताह कर दिया जाए और मंगलवार को जो गज़लें प्रसारित होती हैं वो फरमाइशों पर आधारित कर दी जाए। आपका सुझाव अच्छा है और आगे जब भी कोई बदलाव की गुंजाइश होगी और ऐसी संभावनाएं हमको दिखेंगी तो ज़रूर इस पर विचार किया जाएगा, ऐसा ज़रूर कोशिश की जाएगी इसको इस तरह करने की। आपने युवाड़ी कार्यक्रम को सुना, पसंद किया और उस पर आधारित अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाईं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद लाल मोहम्मद अंसारी व साथी। अगली चिट्ठी हमारे किस श्रोता साथी की तरफ से पहुंची है?
2: सर, अगली चिट्ठी आई है हमें संध्या चौरसिया जी, उदयपुर राजस्थान जी की ओर से। इन्होंने लिखा है, प्रोग्राम पेश करने वालों को प्यार भरा आदाब। अवधेश गौतम जी के निर्देश में युवाणी कार्यक्रम बहुत बेहतरीन हुआ है। हमें सभी कार्यक्रम बहुत पसंद आते हैं, जैसे कि भारत के गलियारे से साइंस नामा, कुछ असाइनी जैसे नतांश जी, मेघा ठाकुर, तरुणा जी, कशिका जी और असरार जी के कार्यक्रम बहुत पसंद हैं।
1: उदयपुर राजस्थान से संध्या चौरसिया जी की तरफ से हमें ये पत्र प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि इतनी दूर से आपने ये पत्र हम तक पहुँचाया है और इतने सारे आकाशवाणी चैनल्स की उपलब्धता होने के बावजूद भी आपने रामपुर आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुना, उसमें भी युवाणी कार्यक्रम को आपने सुना और उस पर आधारित आपकी चिट्ठी हम तक पहुंची है। आप अपने पत्र में कहती हैं कि युवाणी कार्यक्रम आपको काफ़ी अच्छा लगता है, कार्यक्रम के अंतर्गत जो सेगमेंट भारत के गलियारे से और साइंस नामा, ये आपको बेहद पसंद आते हैं। आपने कुछ साइनीज के नाम भी अपने पत्र में मैंशन किए हैं। संध्या चौरसिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार कि आपने युवाणी कार्यक्रम को सुना। रामपुर आकाशवाणी से प्रसारित होने वाला ये कार्यक्रम जो युवाओं पर आधारित है आपने सुना और इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी हम तक पहुंची। इसी कामना के साथ आपका धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहेंगे कि आगे भी आपका जुड़ाव हमारे केंद्र से, हमारे युवाणी कार्यक्रम से हमेशा बना रहेगा और ये पत्रों का जो भेजने का सिलसिला है, जो पढ़ने का सिलसिला है, वो यूँ ही बना रहेगा। अगला पत्र पढ़ना चाहेंगे कि किस हमारे श्रोता साथी की तरफ से हम तक पहुंचा है।
0: सर, अगला खत हमें भेजा है बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीषा यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान, सोफिया खान। ये लिखते, आकाशवाणी रामपुर का युवाणी मंच हमारे लिए सिर्फ एक रेडियो कार्यक्रम नहीं बल्कि रोज नई जानकारी और अद्भुत मनोरंजन से भरा एक अनमोल खजाना है। इसके तहत प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम इतने बेहतरीन होते हैं कि वे न केवल हमारे दिल जीत लेते हैं बल्कि हर दिन हमें कुछ नया, कुछ अच्छा सिखाने की प्रेरणा देते हैं। देश, दुनिया, पर्यावरण, इतिहास और समाज से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को जिस सहजता से यहाँ परोसा जाता है वह वाकई काबिले तारीफ है। इस पूरे सफ़र को जो बात सबसे जादुई और ख़ास बनाती है, जब भी हम रेडियो ऑन करते हैं तो हमारे पसंदीदा उद्घोषक की आवाज़ में घुली शालीनता, मधुरता और अपनापन सीधे हमारे दिल में उतर जाता है। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है मानो परिवार का ही कोई सदस्य हमसे रूबरू हो। कार्यक्रम को संचालित करने का जो सलीका यहाँ के उद्घोषकों के पास है उसकी कोई बराबरी नहीं। शब्द का सही चुनाव, बात करने का सलीका और श्रोताओं को हर पल बांध कर रखने का हुनर यहाँ के सभी श्रोताओं को सबसे अलग और सर्वश्रेष्ठ बनाता है। युवाओं के लिए नए और ज्ञानवर्धक विषय चुनना और उनके बेहद सरल और रोचक तरीके से समझाना, आकाशवाणी रामपुर की युवाणी के सभी शानदार कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों में अपनी आवाज़ से जान फूंकने वाले हमारे सभी प्रिय उद्घोषकों को मेरा सादर प्रणाम। आपकी जादुई आवाज़ और ये ज्ञानवर्धन प्रस्तुति हमारे जीवन में रोज़ नई ऊर्जा, उमंग और सकारात्मक भरती है। रेडियो के इस सुनहरे और आत्मीय जादू को हमेशा जिंदा रखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। आकाशवाणी रामपुर की ये पूरी टीम हमेशा यूं ही चमकती रहे और ये हमारा मार्गदर्शन करती रहे।
1: और दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी राजवीर सिंह यादव जी। साथ में हैं कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सूफिया खान। आपने ये पत्र भेजा है बीजना मुरादाबाद से। आप हमारे युववाणी के काफ़ी सजग लिसनर हैं, नियमित श्रोता हैं। नियमित रूप से आपकी चिट्ठियाँ हम तक पहुँचती हैं, आपके विचार हम तक पहुँचते हैं। जैसी आपकी चिट्ठी होती है उससे ये साफ झलकता है कि आप कितने तन्मयता के साथ हमारा कार्यक्रम युववाणी सुनते हैं, और वैसे ही आपकी अपेक्षाएं इस कार्यक्रम से होना स्वाभाविक हैं। और पूरी कोशिश की जाती है कि अपने जो युवा श्रोता हैं, जो भी हमारे श्रोता हैं, उनकी उम्मीदों पे हम खरे उतरें। आपका ये पत्र हमें प्राप्त हुआ। पत्र में आपने विस्तृत तरीके से अपनी प्रतिक्रिया इस में जाहिर करी है। आपको युववाणी के अंतर्गत जो विभिन्न सेगमेंट्स हैं और जो विभिन्न विषयों पर सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं वो आपको काफ़ी पसंद आई हैं। लगभग आपने हर जो उसका हर डायमेंशन आपने कवर करा है इस कार्यक्रम का, और अपनी सराहनाएं भी इस पत्र के माध्यम से हम तक पहुंचाई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार राजवीर सिंह यादव व साथी। जैसा कि आपने अपने अंतिम पंक्तियों में लिखा है कि आकाशवाणी रामपुर की यह पूरी टीम हमेशा यूं ही चमकती रहे और हम और आपका मार्गदर्शन करती रहे, हमारी भी यही कामना है कि आपका और हमारा साथ अटूट रहे, अनंत रहे, और ये जो पत्रों का आदान प्रदान है ये सिलसिला हमेशा चलता रहे।
0: तो दोस्तों आइए आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: तो आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और हमें अगली चिट्ठी आई है जेल रोड बेगम वाली बगिया से खुशनुमा भांजी नूर खानम जी की ओर से। लिखती हैं, कार्यक्रम प्रस्तुत करने वालों को और अवधेश सर को मेरा प्यार भरा आदाब। 1 तारीख को युवाणी का कार्यक्रम प्रस्तुति थी हुमा मैम और इकरा मैम की। प्रोग्राम सुना, बहुत अच्छा लगा, खासकर स्टार्टअप में ज्वेलरी डिज़ाइन और चर्चा बहुत अच्छी लगी। 2 तारीख को प्रस्तुति थी कशिका मैम और तरुणा मैम की। उस दिन आकाशवाणी वॉकथॉन 2026 पर चर्चा हुई, बहुत अच्छी लगी। 3 तारीख को प्रस्तुति थी आफताब सर और खुशी मैम की। प्रोग्राम सुना, अच्छा लगा। 4 तारीख को प्रस्तुति थी असरार सर और इकरा मैम की। प्रोग्राम सुना, ठीक लगा। इसके अलावा कार्यक्रम के सारे ही सेगमेंट अच्छे लगते हैं, सारे ही कंपेयर्स बहुत अच्छे से प्रोग्राम पेश करते हैं और उनकी मेहनत साफ नज़र आती है। बाकी आगे भी चिट्ठी लिखती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।
1: ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है जेल रोड बेगम वाली बगिया से खुशनुमा जी की तरफ से और साथ में है भांजी नूर खानम। आपने 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख और 4 जून की प्रस्तुतियाँ सुनी और उसी पर आधारित अपनी प्रतिक्रिया भी हम तक भेजी है। आपको युवाणी कार्यक्रम काफ़ी पसंद आया है, आपने ये प्रतिक्रिया हम तक भेजी है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। इसी कामना के साथ कि आगे भी आपका जुड़ाव हमारे कार्यक्रम का साथ हमेशा बना रहेगा। अब क्योंकि समय कम है हमारे पास, जल्दी जल्दी हमारे जो आगे अगले पत्र हैं वो जल्दी से पढ़ते हैं। अगला पत्र हमारा किस श्रोता साथी की तरफ से है?
2: सर, अगला खत हमें भेजा है गंगा सिंह रावत रामपुर रोड हल्द्वानी से। ये लिखते हैं, युवाणी मेरा पसंदीदा प्रोग्राम है और रहेगा। आज पर्यावरण दिवस पर एक अपील करूंगा कि अपने कार्यक्रम को हम साफ और सुरक्षित रखें, ताकि हम पर्यावरण को साफ और सुरक्षित रखें, ताकि आने वाली पीढ़ी भी पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सके।
1: निश्चित रूप से जो आपका मैसेज है, जो आपकी अपील है, बेहद सार्थक है आज के परिप्रेक्ष्य में। पर्यावरण को हमें साफ और सुरक्षित ज़रूर रखना चाहिए और आने वाली पीढ़ी के लिए भी पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान भी देना चाहिए। ये चिट्ठी थी गंगा सिंह रावत जी की तरफ से, रामपुर रोड हल्द्वानी से आपने हम तक पहुँचाई थी। और इसी के साथ हमारे एक श्रोता साथी की तरफ से चिट्ठी और प्राप्त हुई है, महमूद खां मोहल्ला बारादरी से हम तक आपने ये चिट्ठी पहुंचाई है। आपको भी युवाणी कार्यक्रम काफ़ी पसंद आया है, चिट्ठी भेजने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। और इसी के साथ आप सभी श्रोताओं को आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा और इस चिट्ठी आई है सेगमेंट से आपसे अनुमति चाहूँगा। नमस्कार।
3: चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है।
4: दोस्तों आप सुन रहे थे सेगमेंट चिट्ठी आई है।
0: साथियों आप जानते हैं हमारे सवाल का जवाब और जवाब देने वाले श्रोता साथियों के नाम। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं और इसका सही जवाब है साथियों जनरल NS राजा सुब्रमणि।
4: और सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता साथी हैं आप सभी सुदर्शन शाह, नंद कुमार ठाकुर, धीरज भाई रवारी, मोहम्मद रफीक पवार, हीरामणि वर्मा, अजान कुमार वंदना, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, जॉन डिकेस्टो, धर्मेंद्र छेपा, दिनेश वर्मा, मोहम्मद फरमान, सुरेश राठौर, मोहम्मद अल्ताफ, मिसवा समसी, धर्मेंद्र कश्यप, अजीत कसाना, नन्ना खान, नानक खन्ना, विजय सुलेकर, संजय ढींगिया, अनिल बी गोड़के, देवशंकर तामूरिया, लालगिरी गोस्वामी, सिद्धार्थ गोंडाने, बी कमाल, मोहम्मद शाहरून अंसारी, राधेश्याम पांडे। दोस्तों आप सभी श्रोता साथी ने दिए थे इस सवाल का सही जवाब। और आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हमारा पता है
0: साथियों, कार्यक्रम चिट्ठी आई है युवाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन संख्या है 244901, हमारा नंबर है 9410087876, हमारा ईमेल एड्रेस है patmila@rampur.gmail.com। तो दोस्तों अब दीजिए कार्यक्रम को संपन्न करने की इजाज़त अपनी रेडियो साथी नव्य अग्रवाल
4: और मोनिका कुमार को।
0: आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6 बजने को है। अब कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: समाचार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के विकास को गति देंगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होंगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इसे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: इससे पहले सूरत में प्रधानमंत्री ने हजीरा में वर्तमान औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस नए केंद्र से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को मजबूती मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान से कृषि, विमानन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। असम मंत्रिपरिषद का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल रक्षण प्रसाद आचार्य ने इस अवसर पर नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं इस समय आकाशवाणी रामपुर की दूसरी सभा के प्रसारण। संध्या के 6:05 हुए हैं। अब सुनिए आवश्यक सूचना खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। प्रभारी निरीक्षक थाना बेजोई जिला संभल हमें सूचित करते हैं कि मधु पत्नी श्री किशनपाल निवासी भैयापुर विगत 4 मई 2026 से लापता हैं। मधु की उम्र 40 वर्ष, रंग गेहुआ, कद 5 फीट, शरीर और चेहरा सामान्य है। यदि किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई जानकारी हो अथवा सूचना प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। थाना बेजोई जिला संभल। मोबाइल नंबर है 9454457659। सूचना समाप्त हुई।

0: एक अन्य सूचना। प्रभारी निरीक्षक थाना बनियाठेर जिला संभल हमें सूचित करते हैं कि जिशान पुत्र श्री शराफत निवासी ग्राम जनेटा विगत 29 अप्रैल 2026 से लापता हैं। जिशान की उम्र 22 वर्ष, रंगे हुआ, कद 5 फीट और शरीर व चेहरा सामान्य है। यदि इनके बारे में किसी को कोई जानकारी हो अथवा सूचना प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। बेजोई थाना जिला जनपद संभल। सूचना समाप्त हुई।
1: फास्ट मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।

0: मन में।
1: 8 जून 2026 सुबह 6 बजे आकाशवाणी रामपुर के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलिए आकाशवाणी वाकथन 2026 में, एक नमन आकाशवाणी की 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को। ये वाकथन बनेगी प्रतीक स्वस्थ जीवन, सामाजिक एकता और श्रोताओं के साथ जुड़े दिल के अटूट रिश्ते का। 90 वर्षों से आकाशवाणी से गूंजती ये आवाज जन जन के मन की सच्ची परवास। 8 जून को सुबह 6 बजे आकाशवाणी स्टूडियो से अंबेडकर पार्क रामपुर तक हमें चाहिए आपका साथ आकाशवाणी वाकथन 2026 में। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के पिन पोस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, जहां से आप अपनी डिटेल फिलअप करके पंजीकरण कर सकते हैं। ऑफलाइन पंजीकरण हेतु आकाशवाणी कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। याद रखिएगा, 8 जून हमारा जुनून।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मेरी आवाज 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं इस समय आकाशवाणी रामपुर की दूसरी सभा के प्रसारण। संध्या के 6:10 होने को है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म वीर ज़ारा से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और सोनू निगम। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत है मदन मोहन का।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर और सोनू निगम को, फिल्म थी वीर ज़ारा। कार्यक्रम का अगला गीत उस्ताद गुलाम अली साहब के स्वर में, गीत के बोल लिखे समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का। फिल्म का नाम है बेवफा।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर संध्या के 6:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनन वाले सब भैया बहनन को आपकी बहन दीपा
1: और आपके बहन आपके भैया जसविंदर की
0: राम राम,
1: राम।
0: और सुनाओ जसविंदर भैया, कैसे हो, क्या हाल चाल है?
1: हम तो ठीक हैं दीपा बहन, लेकिन आप अपनी सुनाओ, आप कैसी हैं?
0: हम भी अच्छे हैं भैया, लेकिन आज बहुत दिन बाद चौपाल पर नजर आ रहे हो, क्या बात, सब राजी खुशी हैं?
1: दीपा बहन, भगवान की कृपा है, सब ठीक हैं। तुम सुनाओ, आज बड़ी चिंता में लग रही हूँ, गौ माता को बछड़ा कैसे हुआ है? पिछले हफ्ता हमने सुनी कि वह बुखार हो।
0: बछड़ा तो अब ठीक है भैया, डॉक्टर के पास साहब के पास गए ना, उन्हें दिखाओ, दवाई दिलाई और साथ में कही कि बोले कि खुरपका मुंह पका को टीका जरूर लगवा लियो,
1: अच्छा,
0: नहीं तो बार बार बीमार पड़े। और उसी बात के लिए आपके पास आई हूँ भैया, का जो जरूरी है।
1: बहुत बढ़िया करो बहन, आपने जो डॉक्टर साहब को दिखा लो। टीका पशु को कवच होता है, पर तुम बताओ टीका को लेकर मन में शंका कैसी?
0: शंका ना है भैया, बस जानकारी पूरी ना है।
1: अच्छा।
0: आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाओ जाते भैया, जय कह रहे सब गांव में कि पौधे लगाओ। मैं सोच रही हूँ कि हम हर साल पेड़ तो लगाते हैं, पर वो सूख क्यों जाते हैं, और इसको पशुओं के टीका से का संबंध है भैया?
1: दीपा बहन देखो, तुमने जो आज जड़ की बात है ना वो पूछी। देखो पर्यावरण मतलब सिर्फ पेड़ लगाना ना होता है, पर्यावरण को मतलब होता है हवा, पानी, मिट्टी, पशु पक्षी और हम मनुष्य, ये सब एक माला के मोती की तरह होते हैं।
0: अच्छा।
1: और सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक भी अगर मोती टूट गो तो समझ लो माला बिखर जाएगी।
0: जरा सही से बताओ भैया, मोहना थोड़ी देर में समझ में आती है, थोड़ी सही से समझाओ ताकि मैं अपने पशुओं को सही रख सकूं और अपने काम को।
1: दीपा बहन देखो, मान लो तुम्हारी गाय को गलघोटू बीमारी हो गई, और अब तुम क्या करोगी कि भागत भागत डॉक्टर के पास जाऊं, और डॉक्टर का कराए ना वो उसको एंटीबायोटिक टीका लगावे, दवाई दे, और जा चक्कर में दूध जो है वो आपको बंद हो जाए, गाय जो है वो कमजोर हो जाए, दूध देना बंद कर दे, और तब का हुआ है कि गोबर कम हुआ है।
0: हाँ भैया जा तो है, लेकिन पिछले साल हमारी गैया के साथ बिल्कुल जय भाव।
1: अब आगे की बात तो सुनो, जब दवाई तुमने गाय को दी ना, वो गई कहाँ? उसको कुछ हिस्सा गोबर और पेशाब के रास्ते बाहर निकलो, वही गोबर तुमने खेत में डाल दो, अब वो दवाई मिट्टी में चली गई। मिट्टी में जो केचुआ और अच्छे कीट होता ना, वे बस दवाई से मरण लगता है। ऊपर से बारिश आई तो वो दवाई बहकर तालाब में चली गई, वहां जब दवाई जाई तो वहां को पानी, वहां जो मछली रह रही है वे सब खराब।
0: हाँ भैया, हम तो जब बात पता है नहीं, मैं सोचो कि जब मतलब बीमार एक गाय पूरे गांव को बीमार कर सकती है।
1: बिल्कुल आपने सही बात कही बहन, इसीलिए कहता ना रोकथाम इलाज से बेहतर है। अगर हमने समय पर टीका लगवा लो ना, तो गाय बीमार ना पड़ी, ना दवाई लगाई, ना मिट्टी खराब हुई, ना पानी दूषित हुआ, जो भावना असली पर्यावरण बचाओ।
0: हाँ भैया, अब मेरी आंखें खुल गई, आप तो टीका के बारे में पूरा बताइए रहे, कौन कौन से लगते हैं, अब जो बता दो और कब लगावे।
1: दीपा बहन ध्यान से सुनो, नोट कर लो चाहे।
0: अच्छा।
1: सरकार मुफ्त में लगवाती है।
0: अच्छा।
1: अब 21 मई से ना पिछली, और 20 जून तक राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है।
0: अच्छा।
1: और जाके तहत जो टीमें हैं ना, वे घर घर जा रही हैं, और गाय भैंसन के लिए 4 जरूरी टीके लगते हैं, जिनमें सबसे पहले होता है खुरपका मुंहपका, जिसे कहते हैं FMD, सबसे खतरनाक बीमारी होती है।
0: अच्छा।
1: साल में 2 बार हर 6 महीना में कान में जो पीलो टैग लगो देखो ना आपने पशुओं में, उसके हिसाब से सरकार जो है उनकी गिनती रखती है।
0: अच्छा।
1: दूसरा टीका लगता है गलघोंटू, जो बरसात में फैलने वाली बीमारी है, इसलिए जाको मई जून में, यानी कि इस समय जून चल रही है तो इस समय लगता है, बारिश से पहले लगवा लो ना, तो इससे जो है थोड़ी सी गले में सूजन तो आती है लेकिन 24 घंटे में चली जाती है। तीसरा जो टीका है ना दीपा बहन, वो है लंगड़ा बुखार, फागुन चैत के महीना में लगवाते हैं, इसमें पशु लंगड़ान लगते हैं, तो बस जो है जो टीका लग जाता है तो वो समस्या खत्म हो जाती है। और जाके अलावा होता है ब्रुसेलोसिस, जो बहुत जरूरी है बहन, जो सिर्फ 4 से 8 महीना की जो बछिया होती हैं या बछड़ा होता है उनको लगता है, जिंदगी में एक बार ये बीमारी थन से दूध में आती है और आदमी को भी हो जाती है, और जय कारण बनता है बांझपन को। तो ये कुछ जरूरी टीका है जिनको लगाने हैं।
0: भैया आपने तो पूरा कॉलेज खोल दो, हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दे दी। एक बात और बताओ, कई लोग कहते हैं कि टीका लगाने से दूध कम हो जाता है, पशु बीमार पड़ जाते हैं, का जो बात सच्चा?
1: देखो बहन, जब बात जो हमारे किसान साथी हैं वो गलत फहमी ही जाती है उनको।
0: अच्छा।
1: देखो टीका लगाने के बाद 1-2 दिन के लिए तो हल्को बुखार आ सकता है, पशु थोड़ा सुस्त हो सकता है, जब निशानी होती है कि टीका असर कर रहा है।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: जैसे बालकन के टीका लगता है
1: बिल्कुल वैसोई हाँ। शरीर लड़नो सीखता है उस दिन। हरो चारो गुड़ और साफ पानी अगर अपने पशुओं को देना तो एक दो दिन में ही ठीक हो जाता है। दूध भी वापस बिल्कुल उतनो ही देने करता है, पर अगर टीका ना लगा हुआ है और बीमारी हो गई है
0: हाँ।
1: तो फिर दूध महीनन के लिए बंद हो जाता है और जान को खतरा अलग से।
0: हाँ भैया अब बात समझ में आ गई, मतलब 2-3 दिन की परेशानी हम महीनों को नुकसान क्यों उठावे।
1: बिल्कुल।
0: कल के कार्यक्रम में हमें क्या क्या करने हैं भैया जो बता दो।
1: देखो कल कम से कम एक साथ जो करेंगे ना पंचायत घर पर, आप वैसे तो हमारे किसान साथी ना आधो पौधा लगाए हैं
0: हाँ।
1: लेकिन कल कम से कम जो है 11 बजे पंचायत घर पर पहुंचेंगे, वहाँ नीम के पीपल के जामुन के पौध लगाएंगे और उसी जगह जो डॉक्टर वाले पशु हैं ना, पशु वाले जो डॉक्टर हैं उनको भी हम बुलाए कर वहाँ कैंप लगवावेंगे। जो भाई बहन अपने पशु लावेंगे ना उनको मौके पर ही पंजीकरण और टीकाकरण दोनों करवाए
0: दोनों हो जाएंगे भैया, बहुत
1: बिल्कुल।
0: बढ़िया विचार है। मैं अपनी महिला मंडल में सब बहनों को बता दूंगी और सब सुबह सुबह पशुओं को नहला धुला कर वहीं पहुंच जाएं भैया।
1: हाँ और एक प्रण जौ लेने हैं बहन
0: वो
1: कि
0: का
1: आज के बाद तीन काम जरूर करेंगे।
0: वे कौन कौन से
1: पहलो हर पशु को टीकाकरण कार्ड बनवावेंगे और तारीख याद रखेंगे। दूसरों गोबर से जैविक खाद और बायोगैस जरूर बनवावेंगे। यूरिया पर निर्भरता जो है अपनी कम कर देंगे। और तीसरों हर त्यौहार पर एक पेड़ अपनी गौ माता के नाम से जरूर लगावेंगे।
0: हाँ भैया जी तो बहुत बढ़िया बात है, आपने तो दिल खुश कर दो। आज समझ में आयो कि विश्व पर्यावरण सिर्फ शहर की बात ना है भैया, असली पर्यावरण तो हमारे गांव में, हमारे आंगन में, हमारी गौशाला में बस रहो।
1: बिल्कुल सही बात कही दीपा बहन, स्वस्थ पशु हुए ना तो खेत में हरियाली हुई, हरियाली हुई तो हवा साफ हुई और हवा साफ हुई तो हमारे बच्चे तंदुरुस्त होंगे। तो ये चक्कर ऐसे ही चलता रहता है, इसको ही शास्त्रन में वसुधैव कुटुंबकम कहो जाता है, मतलब पूरी धरती एक परिवार है।
0: हाँ भैया अच्छा एक आखिरी बात और बता दे भैया,
1: वो कौन सी?
0: टीका लगाने के बाद कोई परहेजो करने पड़ता है?
1: हाँ बहन दो बातें जो है अपनी गांठ बांध लो बिल्कुल। पहले टीका लगन के बाद 21 दिन तक पशु को दूध खूब उबाल के पीने हैं आपको।
0: अच्छा।
1: और उस पशु को मंडी में भी आपको ना बेचने हैं। दूसरों टीके लगाने के 2 दिन बाद पशु को ज्यादा भाग दौड़ तक ना कराने हैं, मतलब उनको ज्यादा ना भगाने हैं।
0: अच्छा।
1: और छांव में बांधने हैं और साफ पानी पिलाने हैं, ये कुछ काम आपको करने हैं।
0: हाँ भैया तो मैं सब याद रखूंगी और सबको बताऊंगी। हो
1: बिल्कुल दीपा बहन जो तो ही कुछ बात। और अब हम अपने किसान साथियों को बता दें, देखो आज है महीना को पहले शुक्रवार।
0: हाँ
1: और पहले शुक्रवार को हम लेकर आते हैं अपने किसान साथियों के लिए उनको पसंदीदा कार्यक्रम लोक मंजरी। और बाकी अंतर्गत हमारे किसान साथी जो पत्र भेजते हैं वे हम उनके माध्यम से उनकी फरमाइशें सुनवाते हैं। और हम अपने किसान साथी उनको बता दें कि हमारे किसान साथी जो है हमें फोन भी कर सकते हैं। और देखो हम फोन नंबर तो बतावेंगे लेकिन बासा पहले हम अपने किसान साथी उनको सुनवाते हैं कुछ संदेश।
2: गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: दीपा बहन अपने किसान साथियों को बता दें कि जब फोन नंबर पर फोन करके हमारे किसान साथी अपने पसंदीदा लोकगीत रसिया नौटंकी कुछ भी सुन सकते हैं। फोन नंबर लिख लें हमारे किसान साथी 0595-23-24-326। और दीपा बहन अब करते हैं स्टार्ट कार्यक्रम लोक मंजरी।

0: और दीपा बहन लोक मंजरी कार्यक्रम सुनन वाले सभी भैया बहनन को हमारे कार्यक्रम में
1: स्वागत
0: स्वागत है।
1: है।
0: और देखो दीपा बहन, जो पहलो पत्र हमें भेजो है ग्राम डूंगरपुर पोस्ट शाही मीरगंज जिला बरेली से, और जा पत्र को लिखन वाले हमारे भैया हैं कमलकांत मौर्या, सचिन मौर्या, रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, बीरेंद्र श्रीवास्तव, गजेंद्र पाल, राजेंद्र पाल, देवदत्त, भगवान दास और सुनील चंद्रा। और अगलो पत्र दीपा
1: भैया
0: बहन कहाँ सा हुआ?
1: अगलो पत्र मेरे पास है, जय लोकगीत सुनन के लिए ग्राम कमालपुर मीरगंज बरेली से। लिखने वाले हैं जोगेंद्र सिंह, हरी राम, राजा राम, हरि प्रसाद, हरचरण, जानकी, देवकी नंदन और इनके परिवार के सभी साथी।
0: दीपा बहन, एक पत्र जाई फरमाइश से संबंधित और मिलो है हमें। पत्र लिखन वाले हमारे भैया हैं छत्रपाल, सतीश कुमार, जतिन कुमार, अतुल, हेतराम, सोमपाल और इनके साथ जो साथी हैं वे सब ग्राम धनेली उत्तरी मिलक रामपुर से लिखो है। इनने भैया जो फरमाइश करी है ना दीपा बहन, वो करिए एक लोकगीत की, जिसके बोल हैं सासुल घर आए गई जिसको अपनी मधुर आवाज दई है दिशा सक्सेना ने। तो आबो सुनते हैं इनकी फरमाइश को लोकगीत।

0: और भैया अगले लोकगीत की फरमाइश हमें भेजिए ग्राम पड़री ब्लॉक शेरगढ़ बहरड़ी बरेली से। लिखन वाले हैं नरेंद्र, धर्मेंद्र, संजीव, करण, लीला देवी, मिथिलेश कुमारी, ओमवती, शीला देवी, लक्ष्मी, कुसुम और ललिता देवी।
1: दीपा बहन, एक पत्र और हमें जाई फरमाइश से संबंधित मिलू है, और वो हमें मिलू है रजलामई फरुखाबाद से। लिखन वाले हैं अभय प्रताप सिंह, लाली सिंह, छवि सिंह, चिराग सिंह, चेतना सिंह और परी सिंह को।
0: और भैया जय लोकगीत के लिए फरमाइश आई है ग्राम किरा मिलक रामपुर से। राम उतार, बिक्की, प्यारे लाल, कमल कुमार, प्रेम, बाबू राम, सोहन लाल, तोता राम, हरपाल और राम प्रकाश।
1: इतने दीपा बहन जो फरमाइश भेजी है वो बीना के गाए लोकगीत की फरमाइश भेजी है। तो साथियों, आपके रेडियो सेट पे बीना की आवाज़ में जो मधुर लोकगीत।

0: दीपा बहन देखो, अभी हमारे किसान साथी ने जो बीना की आवाज़ में सुनूं, हाय दैया नंदी की बोल है लोकगीत के। और अब अगले फरमाइश के लिए हमें जो फरमाइश भेजी है वो ग्राम कमुआ नगला बिलासपुर रामपुर से लिखन वाले हैं प्रदीप कुमार, नत्थू लाल, प्रबल पटेल, उज्ज्वल पटेल और इनके सभी साथी।
1: और भैया जय लोकगीत के लिए मेरे पास फरमाइश आई है कनकट्टी बिलासपुर रामपुर से सुरेश कुमार, राम रतन, चंद्रभान, संतोष, शैलेश कुमार, भागमल, सीताराम, छोटे लाल, चमन सिंह, मुरेंदर, हरिबाबू, गगन, नीरज, अभय और तुलाराम की।
0: दीपा बहन एक पत्र और हमें मिलो है जाई फरमाइश से संबंधित, जिला मुरादाबाद दलपतपुर उत्तर प्रदेश से लिखन वाले हैं मुकेश कश्यप, काजल कश्यप, सोमा, मीना, लक्ष्य, सोनी, बलबीर सिंह, पंकज, सोनू, सुरेश और शीतल कश्यप को। इनने जो फरमाइश भेजी है दीपा वो लिख कर भेजी है लचक लचक जाए तोरी, सरिता कक्कड़ की आवाज़ में जो लोकगीत सुनन की फरमाइश भेजी है, तो सुन बात है इनके लिए सरिता कक्कड़ की आवाज में जो लोकगीत हैं।

0: और दीपा बहन, जो अगलो लोकगीत सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है, कटरा चांद खा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 बरेली से फरमाइश भेजी है अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, रिंकी मौर्या, प्रकाश मौर्या, कपिल मौर्या, बेदराम मौर्या, कैलाश मौर्या, सुनील मौर्या, खुशबू मौर्या, आरोही मौर्या और स्वाति मौर्या ने।
1: और भैया जय लोकगीत सुनने के लिए हमारे पास फरमाइश आई है मेघा नगला जदीद रामपुर जिला से, सतीश कुमार, राधे श्याम, राजीव, मोहन लाल, धर्मवीर, प्रमोद, मुनीस, धर्मपाल, यशपाल, राम अवतार, कृष्ण पाल, मनोज और इनके सभी साथियों ने।
0: एक पत्र हमें और मिलुआ है ग्राम दलपतपुर बहेड़ी बरेली से, लिखन वाले हैं ओम पाल गंगवार, रमेश, मुकेश, अर्पित और इनके परिवार वाले। और इनने दीपा बहन जो फरमाइश भेजी है वो भेजी है सोनिका व अमित की आवाज़ में लोकगीत सुनन की। तो किसान साथियों, सुन पाते हैं आपको सोनिका व अमित की आवाज़ में जो लोकगीत।

0: दीपा बहन, देखो पत्रों का तो सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन आज का लोकमंजरी कार्यक्रम बस यहीं तक। और कार्यक्रम लोकमंजरी से अपने भैया जसमिंदर
1: और अपनी बहन दीपा को दो अनुमति।

0: दीपा बहन, देखो हमारे किसान साथी ना भी जो लोक मंजरी कार्यक्रम फरमाइशी लोकगीतन को सुनो, और अब बात करते हैं कुछ कृषि संकेत में।
1: हाँ भैया, आज हम देख रहे हैं कि तुम कुदाल लेके मेड़ पे बैठे का कोई खास बात है भैया?
0: हाँ, देख रहे कि कल की बारिश में ना मेड़ कहाँ से टूटी। आपने देखी कल बारिश भाई,
1: हाँ
0: तो
1: भैया,
0: सारी काली मिट्टी जो ही ना वो बहकर नाले में चली गई और मन बहुत दुखी भाव।
1: सच कह रहे हो भैया, मेरे खेत को उजय हालों से हम साल मिट्टी बह हर साल मिट्टी बह जाती है और हम हाथ मलते रह जाते हैं। खाद डालो, बीज डालो, सब पानी लगाओ, सब बह जाते भैया।
0: इसीलिए तो कहता हूँ बहन हम कि मेड़ ही खेत की रखवाली होती है। मेड़ अगर मजबूत हुई ना तो मिट्टी भी रुकाई, पानी भी ना, तो खेत को बटुआ फटो समझो।
1: हाँ भैया, पहले के लोग कहते कि मेड़ सिर्फ बंटवारे के लिए ना होती है, पर अब समझ आ रही है कि मेड़ बिना खेतियों को कोई मतलब ना है।
0: बिल्कुल बहन, मेड़ सा बारिश को पानी खेत में ही रुक जाता है, वो धीरे धीरे जमीन में उतरता है और जैसा जो पानी को इस तरह ना वो ऊपर आ जाता है, और जाको गर्मियन में यानी कि जो इस समय चल रहा हो ना बहुत फायदा मिलता
1: हाँ भैया, और ऊपर की जो काली मिट्टी है ना,
0: है।
1: उसी में तो सारी ताकत होती है, वही बह जाए तो खेत भूसा बन जाता है।
0: बिल्कुल सही बात कही
1: मेरे
0: आप।
1: बाबूजी कहते हैं ना, एक अंगुल मिट्टी बन के लिए 100 साल लग जाते हैं।
0: सही कहते हैं बाबूजी। अब हम जो एक बरसात में ही 100 साल की मेहनत बहाए देते हैं, इसलिए मेड़ को 1.5 फुट ऊंचो और कम से कम 2 फुट चौड़ो रखना चाहिए, तो बास जो मेड़ है ना वो अच्छी बनेगी।
1: कूटनो तो जरूरी है भैया, नहीं तो पहली बारिश में ही बैठ जाएगी मिट्टी सारी।
0: बिल्कुल।
1: और मैं सोच रही ना कि खाली मिट्टी की मेड़ तो फिर से बह जाएगी, उस पर कुछ जमानो जरूरी है।
0: देखो दीपा बहन, बिल्कुल सही बात कही आपने। खाली मेड़ जो होती है ना वो कच्ची दीवार जैसी होती है, उस पर जो एक खस घास लग होती है ना, अगर बाको लगा देना तो बहुत ही बढ़िया रहा है। उसकी जड़ तो रस्सी जैसी होती है, मिट्टी को ऐसे जकड़ लेती है ना जैसे पानी हिले उ नहीं सकता। बिल्कुल
1: हाँ, खस तो बहुत बढ़िया चीज़ है भैया, उसकी खुशबू आती है और गर्मी में शरबत हो बनता भैया बाकू। कुछ लोग मेड़ पर अरहर बो देते हैं, दाल भी घर में काम आ जाती है और हमारी मेड़ों मजबूत हो जाती हैं।
0: भैया देखो बहन, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। अगर अरहर की जड़ की बात करा ना तो वो बहुत गहरे तक जाती है, मेड़ को अंदर से मजबूत कर देती है, ऊपर से फली भी मिल जाती हैं, दोहरों फायदा है ना।
1: हाँ बिल्कुल भैया, और ढलान वाले खेत में तो ध्यान देने ही पड़ते हैं, वहां तो पानी ऐसे भागता है जैसे कोई रोकन वालों ही ना है।
0: ढलान में मेड़ को अगर हमारे जो किसान साथी हैं दीपा बहन, अगर टेढ़ो मेढ़ो बनावे ना तो वो बहुत बढ़िया रहता है। सीधो बनानो बिल्कुल काम ना आ पाता है, क्योंकि सीधो जब होता है ना तो जो पानी को प्रेशर होता है वो बाहर गिराए देता है। गोलाई में बनावो तो पानी गोल गोल घूम कर रुक जाए और उसकी जो समोच उसको ना समोच मेड़बंदी हो कहते हैं वासा।
1: हाँ भैया, नाम भले ही मुश्किल है, काम तो आसान है, बस थोड़ी सी अकल लगान की जरूरत है।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने।
1: मैं तो जय इस बार मेड़ पे ना सहजन के 2-4 पेड़ लगवा दूंगी, उससे फली सब्जियों के काम आवे और हमें कोई दिक्कत हो ना होई।
0: एकदम सही बात कही आपने दीपा बहन। एक बात हमेशा याद रखना हुआ, मेड़ बनाने के बाद हर साल बरसात से पहले देख लेने हैं, जहाँ से जो टूटी हुई ना वहाँ मिट्टी डाल देने हैं, और ना तो सारी जो मेहनत है ना वो मिट्टी में मिल जाएगी।
1: हाँ भैया, भैया एक बात और सुनिए कि सरकार भी मेड़ मंदी में मदद करती है,
0: बिल्कुल
1: मनरेगा
0: आपने,
1: वाले आकर बता देते भैया जी बात है
0: बिल्कुल
1: हमें।
0: आपने सही बात कही दीपा बहन। जो गांव के सरपंच हैं ना, अगर उनसे आप मिलकर बात करो तो वे क्या करते हैं कि बामा मजदूर भी अपने पास से लगा देते हैं, और अगर आपको मनरेगा को जॉब कार्ड बनो वो है हमारे किसान साथी इनको खुद को, तो वे खुद बामा काम कर सकते हैं, उनको मजदूरी मिल जाएगी बामा।
1: तब तो बहुत अच्छा हो भैया, मैं आज ही महिला मंडल में बात करूंगी, सब बहनों को मिलकर अपने खेत की मेड़ ठीक करूंगी और एक साथ काम हो भी जाए और उन्हें जानकारी मिल जाएगी।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने दीपा बहन। इतनी सी बात है, जिसने मेड़ संभाल ली ना उसने अपनी मिट्टी संभाल ली, और जिसने मिट्टी संभाल ली उसने अपने बच्चन को पेट संभाल लो।
1: बिल्कुल भैया।
0: तो जो तो ही कुछ बात कृषि संकेत के अंतर्गत, देखो मेड़बंदी हमारे किसान साथियों को करनी है,
1: वो तो
0: आपने
1: है।
0: तो आप तो करंगी है। और अब हम बता दें कि कार्यक्रम में बहुत अधिक समय ना है, लेकिन चलत चलत हम बता दें अपने किसान साथियों के लिए कि कल के कार्यक्रम में का का हुए वो,
1: हाँ भैया, कल प्रधानमंत्री आवास योजना पे तो चर्चा हुई।
0: और साथ ही सुनवांगे एक भेंट वार्ता चारे के लिए मक्का की खेती, जिस विषय पर बातचीत करी जाएगी डॉक्टर एम एस पाल और राजेंद्र भट्ट के बीच।
1: और भैया मनोरंजन कराओ जाए एक लोकगीत से और कृषि संकेत में सब्जी वाली फसलन की देखभाल
0: पर बातचीत करवाबेंगे, सुनवाबेंगे अपने किसान साथियों के लिए, साथ ही सुनवाएंगे एक क्षेत्र संकलित कार्यक्रम और साथ ही देंगे मौसम को पूर्वानुमान।
1: और भैया कल के मौसम को तो अनुमान बता दे हमारे भैया बहनों को।
0: बिल्कुल दीपा बहन, कल को जो मौसम को हाल है वो लगभग इस तरह से रहने को संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड और वायुमंडलीय आर्द्रता की बात करें तो 45% और हवा की दिशा पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा से और हवा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रहने की संभावना व्यक्त करी जा रही है। जो तो हो हमारा आज को कार्यक्रम, हमारे किसान साथी हमें पत्र लिखना ना भूलें। पत्र लिखने के लिए हमारे कार्यक्रम को पतो है
1: कृषि जगत कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर पिन 244901।
0: और अब जय वादे के साथ के अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात। अपने भैया जसमिंदर
1: और अपनी बहन दीपा को दे अनुमति।
0: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 7 बजे मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे समय आकाशवाणी रामपुर की दूसरी सभा के प्रसारण। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज सुनिए रजा हुसैन खान से सारंगी वादन।

0: अभी आपने सुना शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सारंगी वादन, कलाकार थे रजा हुसैन खान। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।
1: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।

0: मन में।
1: 8 जून 2026 सुबह 6 बजे आकाशवाणी रामपुर के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलिए आकाशवाणी वाकथन 2026 में, एक नमन आकाशवाणी की 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को। ये वाकथन बनेगी प्रतीक स्वस्थ जीवन, सामाजिक एकता और श्रोताओं के साथ जुड़े दिल के अटूट रिश्ते का। 90 वर्षों से आकाशवाणी से गूंजती ये आवाज, जन जन के मन की सच्ची परवास। 8 जून को सुबह 6 बजे आकाशवाणी स्टूडियो से अंबेडकर पार्क रामपुर तक हमें चाहिए आपका साथ आकाशवाणी वाकथन 2026 में। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के पिन पोस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, जहां से आप अपनी डिटेल फिलअप करके पंजीकरण कर सकते हैं। ऑफलाइन पंजीकरण हेतु आकाशवाणी कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। याद रखिएगा, 8 जून हमारा जुनून।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आप आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम महाअभियान का किया आगाज, कहा पौधरोपण और जल संरक्षण कर जनता भी निभाए जिम्मेदारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का किया शुभारंभ, कहा वायु प्लास्टिक का इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में है बड़ा कदम। बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल प्रदेश का 13वां रामसर स्थल घोषित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धि पर जताई खुशी। और वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दो दिवसीय बैठक का आज हुआ समापन, अंतिम दिन ब्रिक्स सदस्य देशों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर दिया बल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बृहद पौधरोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम महाअभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 35 करोड़ पौधरोपण लक्ष्य के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम पौधरोपण महाअभियान 2026 के लोगों का भी अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें और पेड़ लगाकर प्रकृति का संरक्षण करने का संकल्प लें।
1: 5 संकल्प हम सबको इस अवसर पर लेने होंगे। 1, हर नागरिक एक पेड़ मां के नाम पर अवश्य लगाएगा, कम से कम एक पेड़, यह हर नागरिक का दायित्व है। 2, पेड़ लगाना ही नहीं उसकी सुरक्षा का दायित्व भी लेना है, हर एक ओर से उसे बचाना है। 3, जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। 4 संकल्प होना चाहिए सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह रोके, उससे भी हमें पर्यावरण को होने वाले नुकसान के साथ हमें वो करना पड़ेगा। और अंतिम जो संकल्प है वह प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली को अपनाना।
0: कार्यक्रम में विश्व बैंक के सहयोग से 2741 करोड़ रुपए की लागत वाली उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंध परियोजना का भी शुभारंभ किया गया। साथ ही श्रावस्ती स्थित गुलेरा केन नाला को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री की मौजूदगी में विश्व बैंक और प्रदेश सरकार के बीच MOU का हस्तांतरण हुआ। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लखनऊ की कुकरेल रेंज में पौधरोपण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महर्षि चरक औषधि वन की भी स्थापना की। यहां उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। दौरे के पहले दिन उन्होंने बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ किया। ये पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गन्ने के मूल्य में अच्छी बढ़ोतरी की गई है और बायो इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गन्ना आधारित बायो प्लास्टिक के इस्तेमाल से न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम होगा।
2: जब हम गन्ने से बायो प्लास्टिक बनाएंगे तो हमारी निर्भरता विदेशों पर कम होगी और हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनेंगे। साथियों, पीएलए दुनिया के सबसे सस्ते बायो प्लास्टिक में से एक है और जब यह डिस्पोज होगा तो यह कचरा नहीं खाद बनेगा, फर्टिलाइजर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाएगा, यानी कि हर तरीके से फायदा ही फायदा, कहीं से कोई नुकसान नहीं।
0: बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल को देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्रभूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि भारत ने पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और आर्द्रभूमि सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। श्री योगी ने कहा कि ये उपलब्धि विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुराताल प्रदेश का 13वां रामसर साइट है। लखनऊ में विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने सुराताल के रामसर साइट बनने का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलरामपुर में 294 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश की पहचान निवेश और सुरक्षा के माहौल के लिए हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आज हर जनपद के समग्र विकास के लिए काम कर रही है।
1: यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पे खुशहाली ला रही है। बहन और बेटियों के स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। व्यापारी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से आज हर जनपद विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। वाराणसी में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दो दिवसीय बैठक का आज समापन हो गया। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को और मजबूत बनाने पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में

0: आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब समेत 11 देशों ने हिस्सा लिया। संस्कृति मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव अमिता प्रसाद सरभाई ने बताया कि आज बैठक में भारत की मूल्यवान धरोहरों को वापस लाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा, विकास और संस्कृति के समन्वय के साथ आगे बढ़ने को लेकर भी चर्चा की गई।
1: हमेशा यही कोशिश रही है सरकार की और स्पेशली संस्कृति मंत्रालय की कि जो हमारे जो भी स्टोलन आर्टिफैक्ट्स हैं या जो स्मगल करके ले गए जाए गए या उसके पहले कॉलोनियल टाइम्स में ले जाए गए उनको कैसे वापस लाया जाए क्योंकि वो हमारी धरोहर, तो उसी के ऊपर चर्चा हुई है और कैसे डेवलपमेंट और कल्चर साथ साथ हो, विरोधाभास ना हो उसमें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर आज से विशेष अभियान की शुरुआत हो गई है। अभियान के तहत प्रदेश में भी आज से 21 जून तक जनपदों के प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधि समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद स्थापित करेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपालों का आयोजन कर जन समस्याओं का निस्तारण करेंगे। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में वृक्षारोपण कर समेकित जन कल्याण और जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है।
2: भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने 5 जून से 21 जून के बीच में कार्यक्रम निर्धारित किया है। आज एक पेड़ माँ के नाम, तो आज यही कहूंगा 12 वर्ष नहीं, इसी तरह 2047 जो उनका सपना है कि 2047 में हमारा विश्व में देश हमारा बहुत आगे रहे, पूरी दुनिया को दिशा दे और आगे बढ़े और गरीबों की सेवा करते रहे।
0: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में अकादमी सम्मान समारोह में वर्ष 2021 से 24 तक के लिए चयनित कलाकारों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित इस समारोह में 51 विशिष्ट कलाकारों को संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए ये सम्मान प्रदान किए गए। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही पूर्वी जनपदों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम महाअभियान का किया आगाज। कहा, पौधरोपण और जल संरक्षण कर जनता भी निभाए जिम्मेदारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का किया शुभारंभ। कहा, बायो प्लास्टिक का इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में है बड़ा कदम। बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुराहताल प्रदेश का 13वां रामसर स्थल घोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धि पर जताई खुशी। और वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का आज हुआ समापन। अंतिम दिन ब्रिक्स सदस्य देशों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर दिया बल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
4: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर संध्या के 7:31 हुए हैं। आप सुन रहे हैं इस समय हमारी दूसरी सभा के प्रसारण। अब प्रस्तुत है पर्यावरण दिवस पर विशेष मेरी माटी मेरा देश। इसके अंतर्गत आज सुनिए, सुरक्षित पर्यावरण सुरक्षित भविष्य। संकलन है सुरेंद्र कौर का और आलेख है दीपिका की। प्रस्तुति है विक्रांत चौधरी की।

0: मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रेणु तिवारी का नमस्कार। कितनी मनोरम है ये धरती, प्रकृति और ये पर्यावरण। कल कल बहते पानी के झरने, हरी भरी सी धरती और इसके इंद्रधनुषी नजारे। कलरव करते नभ में पक्षी जीवन का राग सुनाते हैं, मस्त पवन के झोंकों में यूं ही बहते जाते हैं। फूलों से रस चुनने को कितने भवरे आते हैं, कली कली पर घूम घूम कर देखो कैसे इतराते हैं। बारिश की बूंदें भी देखो सबके मन को भाती हैं, हरा भरा कर धरती को सबको जीवन दे जाती हैं। कितनी मनोरम है ये धरती, प्रकृति और ये पर्यावरण। हमको जीवन देने वाली प्रकृति का करना है हमको संरक्षण। पर्यावरण अर्थात परिआवरण, यानी हमारे चारों ओर जो आवरण है वही पर्यावरण है। पर्यावरण वायु, जल, धरती, आकाश और प्रकृति से मिलकर बना है, जिसमें वृक्ष, पर्वत, समुद्र तथा अन्य जीव जंतु भी शामिल हैं। हमारी पृथ्वी सौर मंडल का इकलौता ग्रह है, जिस पर जल है, जीवन है और है प्राणवायु ऑक्सीजन, जिसे सहेजने का कार्य करते हैं हरे भरे वृक्ष। प्रकृति और मानव का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है। हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता प्रकृति में है, परंतु लालच को पूरा कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। आज पर्यावरण प्रदूषण की समस्या हमारे बढ़ते लालच का ही परिणाम है। वर्तमान स्थिति ये है कि जल हो या मृदा, वायु हो या जंगल, सब कुछ संकट में है। ऐसा भी नहीं है कि पर्यावरण प्रदूषण से मानव अछूता है। पर्यावरण प्रदूषण मानव अस्तित्व के लिए भी संकट उत्पन्न कर रहा है। पर्यावरण प्रदूषण, इसके कारण और प्रदूषण दूर करने के उपाय, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर बात करने की जरूरत है, काम करने की आवश्यकता है। इन्हीं प्रश्नों पर रजा पीजी कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर बेबी तबस्सुम से बात की हमारे सहयोगी मनोज कुमार ने।
1: श्रोताओं, पर्यावरण संरक्षण के लिए यूं तो अनेक प्रयास किए जाते रहे हैं, तमाम जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ आंकड़े ऐसे हैं जिनको देखकर जानकर लगता है कि हम पर्यावरण संरक्षण को लेकर कब जागरूक होंगे, अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं रजा पीजी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर बेबी तबस्सुम। मैम, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार श्रोताओं।
1: मैम, यूं तो हम हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अनेक बुद्धिजनों द्वारा भी पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए अनेक अभियान चलाए जाते हैं, आम जन को भी जागरूक किया जाता है, लेकिन फिर भी हमारे सामने पर्यावरण संकट है, क्या कहेंगे आप?
2: सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि 5 जून 2024 को जो इसकी स्थापना 1972 में की गई थी पर्यावरण दिवस को मनाने के लिए, और हर बार एक थीम दिया जाता है और एक कंट्री जो होती है वो उसकी होस्ट होती है, और इस बार की मेजबानी जो कर रहा है देश वो है सऊदी अरब, और जो थीम दिया गया है वो है भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। तो ये जागरूक करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, और हमारे देश में भी बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से लेकर जैव विविधता 2002 तक बहुत सारे कानून बनाए गए हैं।
1: बिल्कुल मैम, हमें बार बार चेताया भी जाता है, आगाह भी किया जाता है कि पर्यावरण संरक्षण किया जाए। कई नियम और कानून की बात अभी आप कर रही थी, तो आपने बात की पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि क्या प्रावधान है, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं।
2: पर्यावरण संरक्षण 1986 की जो जरूरत पड़ी हम लोगों को, वो एक्चुअली हुआ इस तरह से कि हमारी अपनी जो संविधान है उसमें बहुत सारी कानून जो बनाए गए थे उसके हिसाब से हम लोग अपनी चीजों का ध्यान रख नहीं पा रहे थे। उसमें संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था, और उसके बाद में हम लोगों को ये कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 से लागू किया गया। ये भारतवर्ष की बात है। अधिनियम की पृष्ठभूमि और उद्देश्यों के अंतर्गत जो शामिल किए गए कुछ पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना, मानव पर्यावरण के स्टॉकहोम सम्मेलन के नियमों को क्रियान्वित करना, मानव प्राणियों जीवों पादपों को संकट से बचाना, पर्यावरण संरक्षण हेतु सामान्य एवं व्यापक विधि निर्मित करना, विद्यमान कानूनों के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणों का गठन करना तथा उनके क्रियाकलापों के बीच में समन्वय स्थापित करना, मानवीय पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था करना भी इसमें शामिल था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एक व्यापक कानून है।
1: मैम, बात अधिकारों की होती है, जिम्मेदारियों की होती है, कर्तव्यों की होती है, तो पर्यावरण को बचाना भी हमारा एक दायित्व बनता है। इस परिपेक्ष में क्या कहता है हमारे संविधान का अनुच्छेद 48, 48A और 51A?
2: 48 संविधान अनुच्छेद 48A से 51A जो लागू किया गया वो ये निर्देश देता है कि पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार सुनिश्चित किया जाए तथा देश के वनों तथा वन्य जीवन की रक्षा की जाए। अनुच्छेद 51A जी नागरिकों को कर्तव्य प्रदान करता है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें तथा उसका संवर्धन करें और सभी जीवधारियों के प्रति दयालु रहें। स्वतंत्रता के पश्चात बढ़ते औद्योगिकरण, शहरीकरण तथा जनसंख्या वृद्धि से जो पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर घटाव हुआ है, कमी आई है, उसके संतुलन को बनाने की पैरवी करते हैं ये सभी संविधान के अनुच्छेद।
1: मैम, पर्यावरण को लेकर यदि बात आंकड़ों की जाए तो कई संस्थाएं ऐसी हैं जो हमें ये बताती हैं कि पर्यावरण की क्या स्थिति है, हम किस पायदान पर हैं वायु गुणवत्ता में, और भूजल स्तर हमारा क्या है, स्वच्छता में हमारी स्थिति क्या है। इन सब आंकड़ों पर अगर थोड़ा सा प्रकाश डालें तो
2: वायु गुणवत्ता जिस तरह की हम लोग आजकल सुन ही रहे हैं कि शहरों में शहरीकरण की वजह से गुणवत्ता निरंतर गिरती ही जा रही है और उसका जो इंडेक्स है वो काफी निचले स्तर पर आ चुका है, जिसमें करें और रामपुर जैसे शहर को भी देखा जाए तो हमारा वायु इंडेक्स इस समय 17.8 के करीब दिख रहा है। और इसी तरह से हर जगह पर जो हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से पर्यावरण चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, वाष्पीकरण बहुत ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा हो रही है और उसी वजह से क्योंकि ज्यादा गर्मी होने की वजह से भूजल स्तर जो है वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से करता है, तो जो 21 फीट तक का पानी हमारे भूजल में जो था वहां पर आपको अब पानी मिलना बंद हो चुका है, जिसकी वजह से निरंतर जल स्तर में गिरावट महसूस की जा रही है और जल गिरावट होती जा रही है। और जितने भी जल स्रोत हैं जो हमारे पास में 75% के करीब अब तक जो नोटिस किए गए हैं, जो छोटे छोटे तालाब होते थे और छोटे छोटे शहरों में जो जगहें होती थी जिनमें भू संरक्षण के साथ साथ पानी संरक्षण भी किया जाता था, वहाँ वो सब सूख चुके हैं।
1: बिल्कुल मैम, पिछले कुछ दिनों से हम देख भी रहे हैं कि तापमान 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है, नदियां सूख रही हैं, तालाब बचे नहीं हैं, तो वायु गुणवत्ता सांस लेने लायक नहीं है, वनों का क्षेत्रफल कम हुआ है, प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण दिवस पर चलते चलते आपकी क्या सीख रहेगी हमारे श्रोताओं के लिए?
2: सबसे पहले हम लोगों को ना सिर्फ जागरूक होना है बल्कि हमारा इस समय का जो सबसे बड़ी परेशानी है वो कचरा प्रबंधन को लेकर है। हम लोग चीजों में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जितना उपयोग कर रहे हैं उतना हम अपनी धरती को दे नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उसका संतुलन लगातार बिगड़ रहा है। तो हम लोग जिन जिन चीजों का जितना उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो जल है, वायु है, मिट्टी है और जिस भी तरह की चीजों को ले लिया जाए, तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के साथ साथ उसके संरक्षण के लिए भी जागरूकता होना बहुत जरूरी है। एक आम व्यक्ति जो है उसको भी जागरूक होना पड़ेगा। मनुष्य और ये सारे संसाधन जो हैं वो एक ही इकोसिस्टम के पार्ट हैं और जब एक भी इकोसिस्टम की कोई भी कड़ी बिगड़ती है तो सारा का सारा संतुलन बिगड़ता है। तो हम लोग क्योंकि इस पायदान में सबसे ऊपर स्तर पर हैं तो मनुष्यों को ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझनी होगी और अपनी पीढ़ी को भी समझानी होगी कि हम जितनी भी चीजों का दोहन कर रहे हैं, एक तो हमें जरूरत के हिसाब से ही उनका दोहन करना चाहिए और उसके साथ साथ जो भी दोहन किया जा रहा है उसके हिसाब

0: से हमें प्रकृति को चीजों को वापस भी करना है। जिस तरह से हमने यहाँ पर रामपुर में देखा पिछले कुछ दिनों में, हम लोगों ने 2 साल तक स्टडी किया तो यहाँ पर पाया गया कि उसने जो जल स्तर होते हैं उसमें एक हैवी मेटल का अमाउंट जो बताया गया है कि 0.02% तक अगर होता है तो वो मनुष्यों और जानवरों है ना सिंचाई के काबिल माना जाता है, लेकिन उसमें निरंतर वृद्धि देखी गई है। और जो हम लोग टैप वाटर यूज कर रहे होते हैं, जो घरों में पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी 21 फीट से ज्यादा नीचे वाले पानी को हम लोग अब प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि भू स्तर जो ऊपर वाला है वो बिल्कुल सूखा जा रहा है। और अभी भी समय है कि हम लोग जागरूक बने और अपना अपना कर्तव्य समझे।
1: कार्यक्रम में आज हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर बेबी तबस्सुम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: पर्यावरण हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण हमारी सेहत और गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन अनियंत्रित शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और बढ़ती जनसंख्या ने पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया है। बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। अधिक उपज पाने के लिए रासायनिक खादों और उर्वरकों का प्रयोग, इसने मिट्टी की सेहत बिगाड़ दी है, तो आवास के लिए अंधाधुंध वन कटान से वायु प्रदूषण बढ़ा है। आधुनिक उपकरणों और वाहनों के धुओं ने हमारी हवा को जहरीला बना दिया है। कचरे से नदियों और समुद्रों तक का अस्तित्व खतरे में आ गया है। अपनी अज्ञानता और लोभ के कारण हमारी धरती पर गंभीर संकट आ गया है। विश्व पर्यावरण दिवस हमें याद दिलाता है कि इस धरती को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी हमारी ही है। विश्व पर्यावरण दिवस

0: 5 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अलग अलग थीम के साथ ये दिन मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। इस वर्ष का स्लोगन है आवर लैंड आवर फ्यूचर, वी आर जनरेशन रिस्टोरेशन। भारतीय संविधान में भी पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद 48 ए में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्यों को पर्यावरण संरक्षण और सुधार का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 51 ए में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वो पर्यावरण की रक्षा व सुधार करे, जिसमें वन, झील, नदी और वन्य जीव शामिल हैं। हमने बात की उप जिलाधिकारी शाहबाद श्री सुनील कुमार से। उन्होंने जनमानस को मार्गदर्शक संदेश देते हुए अपने विचार रखे।
1: श्रोताओं, हमारे साथ हैं श्री सुनील कुमार, आप उप जिलाधिकारी शाहबाद रामपुर में हैं। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। सर, इस समय गर्मी का प्रचंड रूप हम काफी दिनों से देख रहे हैं और इसके पीछे का कारण प्रदूषण और पर्यावरण का असंतुलित होना हमारे कई पर्यावरण एक्टिविस्ट बता भी रहे हैं। तो आज पर्यावरण दिवस है, क्या कहेंगे आप आम जनमानस से?
2: आम जनमानस को कहना चाहूंगा कि पर्यावरण के अपने अवयव हैं, जैसे उसमें जल, पेड़ पौधे या वन कह लीजिए, भूम है, इन सब चीजों को मिला के हमारा पर्यावरण बनता है। तो इनमें जब असंतुलन आ जाता है तो सामने में कई समस्या के रूप में उत्पन्न होता है। आज जो हम लोग देख रहे हैं, भीषण गर्मी से जनता परेशान है और पानी की समस्या भी आ रही है, बिजली की भी समस्या आ रही है। तो इसमें हम संदेश देना चाहेंगे कि इन सब चीजों से बचने के लिए सर्वप्रथम अत्यधिक वनीकरण करें, अपना जो भी खेत है उसमें में पेड़ पौधे का रोपण करें। उसके बाद सरकार तो सड़क के किनारे, चक रोड के किनारे वनारोपण कर ही रही है और प्रत्येक वर्ष एक लक्ष्य आता है, करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं पूरे प्रदेश में। तो ये अपने लेवल पे भी पब्लिक करे, पब्लिक अपने खेतों में भी इसको लगाए, उसका प्रोत्साहन करे। वो सिर्फ न पर्यावरण के संतुलन के लिए जरूरी है बल्कि उनका आर्थिक फायदा भी इसमें है।
1: बिल्कुल।
2: और जल के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जल का जो दोहन है, अभी देखें नया ट्रेंड हुआ है, सब समर सीवर लगा रहे हैं घरों में
1: जी,
2: और उससे अत्यधिक पानी जितना का हो, जितना उपयोग है उससे ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं, चलता हुआ छोड़ रहे हैं, पानी बह रही है, जल का जो है डिप्लीशन हो रहा है, अत्यधिक दोहन से जल स्तर नीचे जा रहा है, तो इसके चलते समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। और भूमि के बारे में भी यही हाल है, कहीं कटान से परेशान है, संरक्षण का काम गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन अपने लेवल पे भी भूमि में जो एक क्रॉपिंग स्कीम होता है उसको अगर लागू करे कि भूमि के उर्वरा के उर्वरपन के हिसाब से या जल की उपलब्धता के हिसाब से अगर उसको हम प्लानिंग करें कि जैसे जहां जल कम उपलब्ध है वहां मोटे अनाज को प्रोत्साहित करें।
1: बिल्कुल।
2: मोटा अनाज में जैसा कि आपको सबको मालूम है कि ग्लूटेन कम होता है, तो ये नहीं शुगर के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है बल्कि उसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में है, तो उसके लिए डाइजेशन का बड़ा अच्छा वो एक सामान होता है कोर्स ग्रेन, जिसको हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने श्री अन्न कह करके जो है संबोधित किया है, श्री अन्न मोटे अनाज को।
1: जी जी।
2: तो जहाँ जल कम है, उपलब्धता कम है, वहाँ इसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है, वहाँ गन्ना या फिर धान या गेहूं की जगह पे मोटे अनाज को वरीयता देने की आवश्यकता है। तो अगर हम तरह तरह के एक समान कॉमन सेंस का प्रयोग करके अगर हम ऐसा प्रयास करते हैं जल संरक्षण का, भूमि संरक्षण का और वनीकरण के दिशा में अच्छा काम पब्लिक जागृत होकर करती है तो काफी संतुलन आएगा। और ये जो गर्मी से लोग परेशान है कि आप देख रहे हैं कितनी प्रचंड गर्मी हो रही है कि कई लोग जो है हीट स्ट्रोक के शिकार हो रहे हैं, मृत्यु भी हो रही है, तमाम चीजें हो रही है, इस पे बिल्कुल रोक लगेगा और हमारी धारा भी पुष्पित फलवित और जो लिमिटेड संसाधन में एक अच्छा उत्पादकता जो है, प्रोडक्टिविटी है, उसको इनाम के रूप में हमको देगी।
1: बिल्कुल सर, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: मेरी माटी, मेरा देश, मेरी माटी, मेरा देश।
0: पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार के प्रयास सतत रूप से जारी है, परंतु सत्य तो ये है कि जन सहभागिता के बिना कोई भी आंदोलन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता। हमारी लापरवाही के चलते पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो गई है। हरे भरे जंगलों

0: ये जगह कंक्रीट के जंगलों ने ले ली है। वाहनों और उपकरणों के शोर ने दिन का चैन और रातों की नींद छीन ली है। हवा इतनी जहरीली हो गई है कि बिना ऑक्सीजन मास्क के सांस लेना मुश्किल है। कचरे और प्लास्टिक के ढेर के नीचे नदियां और समुद्र अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण का परिणाम जलवायु परिवर्तन, अतिवृष्टि, सूखे और तूफान के साथ साथ बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हमारे सामने है। ऐसी स्थिति में जागरूक व्यक्ति और संस्थाएं पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित हैं। आज ऐसे ही एक व्यक्तित्व हमारे साथ हैं, श्री नेपाल सिंह।
1: नदियों को बचाने के लिए और पेड़ पौधों से इस धरा को हरा भरा बनाने के लिए सतत रूप से प्रयासरत रहते हैं प्रकृति सेवा समिति के संरक्षक श्री नेपाल सिंह पाल। नेपाल सिंह जी, आज आपने खास मुहिम चलाई हुई है वो वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करने की, तो उसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को?
2: वो सर, मैं बताता चलूं कि नगर निगम मुरादाबाद की एक सहयोगी संस्था है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो उसके द्वारा यहाँ जो जिला अस्पताल है उसके पास में एक लोहिया पार्क है जहाँ पर बेस्ट टू बंडर पार्क बनाया जा रहा है। तो नगर निगम की सहयोगी संस्था AIILSG द्वारा जो है वो बेस्ट टू बंडर पार्क बनाया जा रहा है, तो उसमें बेस्ट मटेरियल जो भी लोगों के घर में पड़ा है तो उसकी अपील भी प्रकृति सेवा समिति द्वारा यानी कि हमारे द्वारा की गई कि जो व्यक्ति उसमें अपना बेस्ट मटेरियल घर में पड़ा हुआ है, पहले उनके उपयोग का था, आज उपयोग में नहीं है, तो उस मटेरियल को आप हमें दे सकते हैं और उसका मटेरियल का उपयोग यहाँ बेस्ट टू बंडर पार्क जो बनाया जा रहा है उसमें किया जाएगा और प्रकृति सेवा समिति जो है उनको जो भी मटेरियल देंगे उनको अपनी तरफ से एक सर्टिफिकेट यानी कि प्रोत्साहन या प्रशस्ति पत्र जो है वो प्रदान करेगी। कूड़ा कचरा भी कम होगा सर, सफाई भी अच्छी रहेगी।
1: बहुत ही अच्छी सोच के साथ नेपाल सिंह जी आप इस कार्य को कर रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी तरफ से कौन से ऐसे प्रयास किए जाते रहे हैं अब तक जिससे कि हमारी प्रकृति हरी भरी बनी रहे?
2: उसमें सबसे बड़ा तो यही रहता है कि अवेयरनेस जागरूकता कार्यक्रम लोगों को घर घर बताया जाए, चाहे स्कूल कॉलेज में बताया जाए या कम्युनिटी में बताया जाए, या फिर हम कर सकते हैं कि हम प्लांटेशन करें जहां पर खाली जगह है, जैसे सार्वजनिक स्थल हो सकते हैं, स्कूल कॉलेज हो सकते हैं, सड़क का किनारा हो सकता है, उसमें नदी तालाब के किनारे भी हो सकते हैं, उसे जो है हम मतलब ज्यादा से ज्यादा पौधरोपण करें। दूसरा इसमें जरूरी बनता है सर, जो प्रकृति का हरित कवच और धरा को हरा भरा बनाने का प्रयास है वो ये है कि जो हमारे हरे भरे पेड़ लगाए हुए हैं चाहे वो किसी के द्वारा भी लगाए गए हैं उनको कटने से बचाना, क्योंकि उनके बनने में जो है वो बरसों का समय लगा है।
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि अगर हम पेड़ पौधों को लगाएंगे तो जो हमारी धरा है वो हरी भरी बनी रहेगी।
2: बिल्कुल सर।
1: और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जल संरक्षण कितना जरूरी है हमारे लिए?
2: सीधी सी बात है, सभी कहते हैं कि जल को बनाया नहीं जा सकता लेकिन बचाया जा सकता।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो जल संरक्षण के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम जल का सदुपयोग करें, यानी कि जितना हमारी जरूरत है उतना हम जल लें और उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, किसी भी तरीके से जो है जल को बहने ना दें, बर्बाद ना होने दें। उसके लिए हम कोशिश करें कि किस प्रकार से जो है हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। जैसे हम ब्रश भी करते हैं तो टोटी बंद करके ब्रश करें, किसी बर्तन में पानी लेके करें, सब्जी की धुलाई इत्यादि करते हैं तो हम जो है उस समय खुले में उसकी धुलाई ना करें, किसी बर्तन में लेके उसकी धुलाई कर सकते हैं। सीधे सीधे हम जैसे देखते हैं कि समरसेबल का उपयोग होता है, लोग समरसेबल का बटन दबाया और पानी को ऐसे ही बहाने लगते, तो लोगों से बात करते हैं तो कई लोग तो ये कहते हैं कि अरे आपका क्या जा रहा है उसमें। हमने कहा हमारा भी जा रहा है, आपका भी जा रहा है, वर्तमान का भी जा रहा है, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, तो अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारे बुजुर्गों के समय में था पानी नदी और तालाब में था, आज के समय में वर्तमान में हम देख रहे हैं तो पानी बोतल में है, लेकिन आने वाले समय में जो पानी है वो हम मतलब भविष्य की पीढ़ी को मिले तो आप क्या चाहते हैं, कि पानी ना मिले? तो उसके लिए हम सभी को साझा प्रयास करने पड़ेंगे।
1: बहुत अच्छी और सारगर्भित बातचीत आपकी हुई है हमारे बीच में, तो हमसे बातचीत करने के लिए श्री नेपाल सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पर्यावरण यानी प्रकृति हम सबकी है, इसको संरक्षित करने की जिम्मेदारी भी हम सभी की है। कैसे हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करें, ये एक विचारणीय प्रश्न है। पर्यावरण संरक्षण का मूल मंत्र है 3R, यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखते हैं तो सरलता के साथ प्रकृति से सामंजस्य बिठाने में सफल होंगे। अगर हम संसाधनों का आवश्यकता से अधिक दोहन करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों तक ये संसाधन समाप्त हो जाएंगे। आवश्यकता से अधिक दोहन यानी बर्बादी के चलते ही वर्तमान में हम गंभीर पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। आज आवश्यकता है जल संरक्षण के साथ जल संवर्धन की। फसल अवशेषों का प्रयोग ईंधन, खाद और अन्य कामों में करना, पुरानी वस्तुओं का नए रूप में इस्तेमाल करना, जैसे पुराने कपड़ों का प्रयोग रजाई, तकिया या फिर थैले बनाने में करना, इस तरह हम बढ़ते कचरे की समस्या को दूर कर सकते हैं। पुरानी वस्तुओं को रिसाइकल कर हम पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। कांच और प्लास्टिक को रिसाइकल कर हम इन रासायनिक उत्पादों के निर्माण और प्रयोग को कम कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण किसी व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सबका दायित्व है। बेहतर भविष्य के लिए युवाओं की जिम्मेदारी कुछ ज्यादा हो जाती है। हमारे साथ है एक युवा, निखिल।
3: निखिल जी, हम जानते हैं कि आप युवा हैं, तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है, क्या कहेंगे?
4: मैं तो यही कहूंगा कि लोग जागरूक हों, नेचर बचाएं, क्योंकि नेचर को हम बचा सकते हैं, नेचर हमें बचा सकती है। ये दोनों साथ साथ चलेंगे तो ये पर्यावरण बचा रहेगा, वरना तो सब कुछ व्यर्थ ही है।
3: आपकी तरफ से क्या प्रयास किए गए हैं अभी तक एनवायरमेंट को लेकर के?
4: सर, मैंने 2020 से कोविड हेल्थ ग्रुप शुरू किया था, लोगों को जागरूक करना शुरू किया था एनवायरमेंट के बारे में। मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके एक ग्रुप शुरू किया, दून डगर, मतलब कि देहरादून की डगर, जिसमें हम लोग हर संडे को लोगों को इकट्ठा करके ट्रैक करवाते हैं कि लोग नेचर से कनेक्ट हो सके। एट द सेम टाइम हम ट्राई करते हैं कि उस जगह को क्लीन कर दिया जाए, ताकि वो जगह जो इतनी सुंदर है, पर्यावरण जो इतना सुंदर दिखता है, उसको वैसे ही रखा जाए जैसे कि वो पहले रहता था। हम हर संडे को प्रयास करते हैं कि उस जगह को, जिधर भी हम जाएं, उस जगह को क्लीन कर दें।
3: बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच के साथ आप ये काम कर रहे हैं। लेकिन निखिल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, ये प्रेरणा कहाँ से मिली?
4: सर, जैसा कि मैं आपको बता दूं, बचपन से पहाड़ों में रहा हूं, पहाड़ी हूं मैं, हमेशा से ही क्लीन जगहों में रहने की आदत है, पेड़ों के बीच में रहने की आदत है, और जैसे जैसे लोगों से गंदा करता जा रहे थे, क्योंकि जहाँ आपका जीवन बीता होता है ना सर, अगर वो जगह टूटती बिखरती नजर आती है तो आपको बड़ा दुख होता है। तो इसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, इंस्पायर किया कि मैं जगह को क्लीन करना शुरू करूँ, प्लांट लगाने शुरू करूँ, बस, और फिर तब से अब तक चल रहा है।
3: बिल्कुल, एक युवा होने के नाते आपसे ये सवाल करेंगे हम निखिल, कि आने वाली जो पीढ़ी है या हमारी जो यूथ जनरेशन है, उसको एनवायरनमेंट के लिए मतलब क्या करना चाहिए, कितना जागरूक रहना चाहिए?
4: पहले तो सर, अरे हर स्कूल में एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, उसे प्रैक्टिकली यूज करना भी सिखाना चाहिए। पेड़ लगाने क्यों जरूरी है, बहुत छोटी सी चीज है सर, हम इसको इतना निग्लेक्ट कर देते हैं, कचरा कहीं भी फेंक देते हैं, पेड़ कहीं भी काट देते हैं। पर्यावरण की जो साइकिल है ना सर, कि घर के बाहर एक गिलहरी भी जो घूमती है वो पूरे इकोसिस्टम को बचा के रखती है। घर के बाहर घूमता हुआ सांप, बिच्छू, जो भी है, वो पर्यावरण का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये सब चीजों के बारे में बचपन से ही बच्चों को जागरूक किया जाए, ना सिर्फ पढ़ाई के तौर पे, पर प्रैक्टिकली भी। हर बच्चे को, हर माता पिता को हर संडे जब भी उनसे समय हो सकता है, एक पेड़ कहीं ना कहीं लगाएं। जो आप बीज आपके पास है कहीं भी फेंकिए जंगलों में, जितना जंगल बढ़ेगा उतना ही ह्यूमन रेस को फायदा होगा।
3: निखिल, कहा जाता है कि पहाड़ सुंदरता के प्रतीक होते हैं, चारों तरफ हरियाली होती है, तो वो पेड़, वो हरियाली, वो धरा बचाने के लिए हम कौन से ऐसे प्रयास हैं जो कर सकते हैं, क्योंकि आपकी टीम बराबर इस फील्ड में काम कर रही है और आपने बहुत सारे युवाओं को जोड़ रखा है अपने साथ।
4: कहीं पर हमें पेड़ लगाने शुरू करने पड़ेंगे, जागरूक रहें कि भाई अगर आपके आसपास के लोग पेड़ कटवा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप कंप्लेन कीजिए जंगलात में, खुद ही रोकिए, सबसे पहले तो आप खुद इनिशिएटिव लीजिए कि वो जगह के पेड़ ना काटे जाए। उत्तराखंड में जो पहाड़ी मधुमक्खियां, उनको बचाया जा सकता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। मेरे दो इनिशिएटिव चलते हैं, एक अनंता एनजीओ है मेरा, दून डगर नाम का इनिशिएटिव है। दून डगर बेसिकली ये है सर कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़ते हैं संडे को, तो हम ट्रैक करवाते हैं ताकि लोग ये देख सके कि अपने घर की चार दीवारों के बाहर भी एक दुनिया है जो सुंदर है।
3: बिल्कुल,
4: लोग, और फिर जब वो कूड़ा देखते हैं ना सर एक दो बार, फिर उनको खुद बुरा लगता है, तो अंदर से उनकी

0: पड़ती कि यार इतनी सुंदर जगह में आया, लोगों ने कूड़ा फेंक दिया, ठीक है। फिर हम हमेशा जितना हम कूड़ा होता है हम वो फेंकते नहीं है कहीं भी, जहाँ कबाड़ी वाला होता है, जहाँ से उसको रिसाइकिल किया जाता है, हम वहीं डिस्पोज करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि इन चीजों को करने के बाद एक इंसान के अंदर, जिसने एक बार भी क्लीन ड्राइव कर लिया ना सर, क्योंकि उसमें स्ट्रगल बहुत होती है, ताकि गए उठाया कूड़ा नहीं सर, तानी कहाँ पानी के अंदर पड़ा रहता है कूड़ा, ठंड में उठा लेते हैं हम, झाड़ियों में छिलविल भी जाते हैं, तो जब इतनी मेहनत के बाद वो जो कूड़ा निकलता है ना सर, ऐसा बंदा खुद लगता है कि यार मैं कूड़ा ना फेंकूं, कि मैंने इतनी मुश्किल से वो जगह साफ की थी ना, खुद उसके अंदर की आवाज उसको फिर शांत नहीं होने देती, फिर वो कूड़ा कभी नहीं फेंकता। पहले मेरे अंदर भी गंदी आदत थी कि मैं चलते थे कहीं भी कुछ भी फेंक देता था, अब नहीं करता।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात निखिल आपने की है, और एक युवा सोच आपकी है, और उस युवा सोच के साथ प्रकृति को बचाने का, पर्यावरण को बचाने का आपने जो जिम्मा लिया है वो बहुत सराहनीय कदम है आपका निखिल, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। मेरी माटी, मेरा देश,
2: मेरी माटी, मेरा देश। हरियाली के गीत में प्यार भरा पैगाम, पर्यावरण सुधारिए, स्वस्थ रहो सुखधाम। जलवायु पर्यावरण, वृक्ष जीव इंसान, पर्यावरण बचाइए तभी बचेगी जान। विश्व पर्यावरण दिवस हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी को स्वच्छ और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। आइए हम सब संकल्प लें कि अपनी इस जिम्मेदारी को पूर्ण ईमानदारी से निभाएंगे।

मेरी माटी मेरा देश, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष विषय था सुरक्षित पर्यावरण सुरक्षित भविष्य। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से रिले किया गया। संकलन था मनोज कुमार का, आलेख था रेणु तिवारी का और प्रस्तुति थी अवधेश कुमार गौतम की। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम गीत गाता चल।

जी हाँ श्रोताओं, सुरों की महफिल सजी है, दिलों का पैगाम आया है, आपकी फरमाइशों ने आज फिर रंग जमाया है। गीत गाता चल के सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त जवेरिया का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत सुनना चाहा है मेहरनगर उमरखेड़ महाराज से अभिजीत घवड़कर राही श्रीमती सरिता घवड़कर प्रिंस एकाज घवड़कर, बदलापुर मुंबई से प्रणीता घवड़कर सिद्धांत घवड़कर लाडला टुक टुक घवड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से विशाली शैलेश घवड़कर सुमित घवड़कर कुमारी धोनी। गिराम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी लालू मिस्त्री अंसारी मोहम्मद मुनाजिर अंसारी अबरार हुसैन अंसारी अल्ताफ हुसैन अंसारी आशिक हुसैन और मुन्ना अंसारी। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल संगीता रानी जिंदल पप्पू महक खुशदिल सुनीता रानी जिंदल आरजू पप्पू खुशदिल हसमुख लाल जिंदल बुलबुल शक्ति खुशदिल संजीव बंटी जिंदल। वारसी क्लब सिंधोली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी इमरान शेख रेहान शेख करुला मुराद आवाज से अयूब खान इरम गुड़िया और शुएब खान। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया एंजल भाटिया सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगेना बरेली उत्तर प्रदेश से बैनी सिंह सागर पन्नीलाल सागर आशीष कुमार सागर अमर सिंह हितेश सागर राजेश कुमार वर्मा रूबी भारती एकता भारती दिव्या भारती रचना भारती और श्रीमती ओमवती भारती। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी नाजमा बेगम सिद्दीकी रियाज रिफाकत मोहम्मद रिहान समरीन परवीन और माहिरा नूर। मुताला महाराज से विजय सुरलकर रतन माला सुरलकर आरती गौरी और ओम कुमार। राज पैलेस मऊनाथ भजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा प्रीति वर्मा कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई सवरकर पिंकी सवरकर आर्यन कृष्ण और पीहू सवरकर। आप सभी ने सुनना चाहा है मोहम्मद रफ़ी को, फिल्म का नाम है मेरे हुजूर। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और संगीत है शंकर जयकिशन का।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी को, फिल्म थी मेरे हुजूर। आप सुन रहे इस समय आकाशवाणी रामपुर से कार्यक्रम गीत गाता चल। आप भी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो उठाइए अपना फ़ोन और टाइप कीजिए हमारा नंबर 9410087876 और व्हाट्सएप पर लिख भेजिए हमें अपनी फरमाइश, अपने नाम और अपने ज़िले के साथ। कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहा है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। जैतू का किशनपुर से आलम दिलकर, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज़ा आलम और चांदनी नाज। मेन बाज़ार कुलवाड़ी महाराज से गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर और प्रदीप यमेकर। रायद्वारा रोड मीठा कुआ रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी, अर्पित और अभेरिया आयरूश। ग्राम पंचायत काले गांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, श्री प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी सौर देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी कल्पना देशमुख। मोताला महाराज से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। ग्राम पंचायत पठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश मिथिलेश वर्मा। विश्रम कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गोण और मोहम्मद शादाब खत्री। जामा मस्जिद रोड सनावत से हाजी इसाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनी

आप सुन रहे समय आकाशवाणी रामपुर से कार्यक्रम गीत गाता चल। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।

0: SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
1: आप सुन रहे हैं समय आकाशवाणी रामपुर से कार्यक्रम गीत गाता चल। आप भी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो उठाइए अपना फोन और टाइप कीजिए हमारा मोबाइल नंबर 9410878776 और हमें अपनी फरमाइश व्हाट्सएप कर दीजिए। कार्यक्रम का अगला गीत फरमाइश करता आप सभी MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्य आरव खुराना और एस के पप्पी। नरकोणा छत्तीसगढ़ से महाराजन कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शायना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम और सद्दाम। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा, विशाल प्रिया, तिशानी और निमित आहूजा। अगली फरमाइश भेजिए हमें चांदनी चौक संगली महाराज से सक्षम अजीत चवार, श्रेणिक चवार, ज्योति चवार और लता राजराम चौहान। जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक, सुशील नायक और सुरेश चौरसिया फरूकाबादी। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्य मल्होत्रा, भाई सुच्छा सिंह पाठक और जयपाल यादव व विनोद पुरी। फंडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लावली, आरती अरोड़ा। डिंडोरी नासिक से विशाल गवली, सोनाली गवली, समर्पण गवली और भक्ति गवली। मेरठ कैंट से दृढ़दर्शन और कविता गौड़। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। बरेंडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वेश्रमी ढोमने, कंचल ढोमने, अर्जुन घमेनकर और धीरज सवासरे। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नईम बेगम, शुएब खान, सलमा खान, मुस्तफ़ा खान, आफिया खान और शाहिद भाई, राहु भाई। सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी। आप सभी ने सुनना चाहा है मोहम्मद रफ़ी को, फिल्म का नाम है आरजू, गीत के बोल लिखे शंकर जयकिशन ने और संगीत है हसरत जयपुरी का। आप सभी की पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट पर आपकी नज़र।

आप सुन रहे समय आकाशवाणी रामपुर से कार्यक्रम गीत का तचल और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त जवेरिया। कार्यक्रम का अगला गीत फरमाइश करता आप सभी कांट रोड लदावली से अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना। नलेश्वर नगर नरवेल महाराज से पीएस नहाकार, निर्मला नहाकार, विशाल नहाकार, सोपान तांडे। मलकापुर से नारायण इंगले और आशीष मुहेकर। गांव चोहलदा बागपर से संजय डिंगड़िया, नमल डिंगड़िया और अपार डिंगिया। मोताली महाराज से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और कुमकुम सुरलकर। कोल्हापुर महाराज से विजय शाहपुरकर, अमित अशोक मधुकर और अमर समुद्रे। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम, मुन्ना दानिश और आसिफ शेख। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और कुमारी कल्पना देशमुख। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, वंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई सवड़कर, पिंकी सवड़कर, आर्यन किशन और पीहू सवड़कर। राज पैलेस मऊनाथ भजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। गावना थाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगी शर्मा, मेहंदी शर्मा, सौरव शर्मा, सैना शर्मा और निवान शर्मा। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमशुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन, तुबा आफरीन, शमीम अख्तर अंसारी। संगमित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यमतवाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी। आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है झुक गया आसमान। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और संगीत है शंकर जयकिशन का।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर को। कार्यक्रम का अगला गीत

नमस्कार आप सभी। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। ताहात कणगले जिला कोल्हापुर से तुषार कुरणे, प्रशिक कामबट्ठे, एकता कामबट्ठे, मेघना कुंडने, उत्कर्षा कामबट्ठे, अरुण यंट गुंडकर और मुपो चंदूर। राजद्वारा कोठी अफसर आला से रूमा खान, बॉबी खान, मदिया खान, सुभान खान, शबनम अब्बासी, गुलफशा जीनत अमान और शम्मा परवीन। गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, रजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, शहनाज, बाबू अंसारी, हबीब अहमद इदरीसी और इरफान खान। हिंगोली महाराज से शाहजी बोट की श्रीमती नंदा बोट के, हनुमान बोट के, अंबेडकर चौक वाकुंडी से उत्तम जमदांडे और सौरा जमदांडे, महाकौशल जबलपुर मध्य प्रदेश से सोनाली दुबे, मोनिका तिवारी और रानू मैडम। जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मनवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिना मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह। बन्ने बुजुर्ग फलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। नाज मंजिल महसोली सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। बागपत उत्तर प्रदेश से ममता डिंगड़िया और कुणाल डिंगड़िया। दादरी गेट भिवानी से किशन मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा। ग्राम ढकिया केसरपुर जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश से एके राजपूत, अनिल कुमार राजपूत, कैलाश चंद्र राजपूत, रामेश्वर दयाल वर्मा, सत्यपाल वर्मा, भगवान दास राजपूत, रवि कुमार वर्मा, श्रीपाल यादव, मनोज कुमार सक्सेना और गुड़िया और चंचल कुमारी। डोंडीलोरा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तमोरिया, अजय देव तमोरिया, तुषार देव तमोरिया, डोली बेबी, पूजा तमोरिया, राधिका और प्रभा देवी तमोरिया और मास्टर अलकबीर। आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है गंगा जमुना सरस्वती। गीत के बोल लिखे इंदिवर ने और संगीत है अनु मलिक का।

आप सुन रहे इस समय आकाशवाणी रामपुर से कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम का अगला व अंतिम गीत सुनना चाहे हमारे इन सभी श्रोताओं ने, हिंगोली महाराज से रामचंद्र इंगोले। बीरखेड़ा पीतरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक मयंग मूरत, चेतना नाहट, दीक्षा किशन मूरत। कटरा मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर अंसारी, निखत परवीन, नुसरत परवीन, सलीम जावेद, शमीम अख्तर अंसारी और शाहिद हसन आजमी।

मोहल्ला बारादरी, महमूद खां रामपुर से भाई रफा साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, बहन फिरोज़ा मुस्कान और अफसर अली नगमा नाज मंसूरी। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। ईदगाह गेट मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी, रईस दूल्हा अंसारी। आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है लोफर।

अभी आप सुन रहे थे व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम गीत गाता चल। ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।

0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
0: गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और

0: 40 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
1: The negotiating team which came from
2: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
1: With Nepal we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुग्यानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर-18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा।

0: इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage, pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under 18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kakamigahara in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's green energy share. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy. He said the world is gradually progressing towards a greener future and India is actively contributing to this transition.
2: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
2: Surat sirf swachhta aur circular economy tak hi simit nahi hai, balki green growth ke dusre madhyamon ka bhi abhutpurva gati se vistar ho raha hai. Surat aisi vyavastha banane mein juta hai jahan sadkon par chalne wali sari basein electric hongi. Saath hi yahan Surat metro ka bhi vistar ho raha hai. ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे।
1: After reaching Surat this afternoon, the Prime Minister first visited Hazira and reviewed the ongoing industrial and infrastructure operations. Later in the evening, Mr. Modi launched various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. These projects include

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमन में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तवानाई के शोबे में खुद की कफालत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि इक्तसादी पेशरफ्त को मुतवाजिन करके नीज माहौलियाती तहफ्फुज के जरिए भारत सरसब्ज मुस्तकबिल की जानिब फाल तौर पर क़यादत कर रहा है। मईशत में मजबूत रुझान के नतीजे में साल 2025-26 में मुल्क की GDP की पेशरफ्त 7.7% रखी गई है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि स्मार्ट सरहदी प्रोजेक्ट अमलावरी के अपने हतमी मरहले में है। हिसास सरहदी मकाम पर अगले साल पायलट शुरुआत मुतारिफ की जाएगी। जुनूब मगरबी मानसून बुहरा अरब, गोवा और कर्नाटक के मजीद हिस्सों में पेशरफ्त कर रहा है। और हॉकी में भारत जापान के काका मिगारा के मकाम पर सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से शिकस्त देकर मर्दों के अंडर 18 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए तवानाई के शोबे में खुद की फालत पर जोर दिया है कि दुनिया एक माहौलियात के लिए साजगार मुस्तकबिल की जानिब पेशरफ्त कर रही है और भारत इक्तसादी पेशरफ्त को मुतवाजिन करके नीज माहौलियाती तहफ्फुज़ के जरिए इसकी फाल तौर पर क़यादत कर रहा है। गुजरात के शहर सूरत में आज 18,800 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि भारत की 250 गीगावाट की मजमूई काबिल क़द्र तवानाई में से अकेला गुजरात 50 मेगावाट फराहम करता है, जो कि मुल्क की सब्ज तवानाई का 5वां हिस्सा होता है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि रियासत शमसी तवानाई से माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया में तब्दीली में एक वसी रोल अदा करना चाहती है, जो तवानाई में खुद की फालत हासिल करने के लिए लाजमी है। इस मौके पर अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि ये इकदाम पेशरफ्त की क़्यादत करेंगे और अवाम के लिए ज़िंदगी की आसानी को बेहतर बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने खुशी जाहिर की कि माहौलियात के दिन के मौके पर वो सूरत में हैं, जो कि मुल्क के साफ तरीन शहरों में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौजूदा तवानाई का आलमी बहरान तवानाई में खुद किफालत की कलीदी अहमियत को उजागर करता है।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था।

0: ऑरेंज कैप अपने नाम कर लिया। जब आईपीएल 2026 अपने नायक की तलाश कर रहा था, तब एक 15 वर्षीय बल्लेबाज ने पूरे टूर्नामेंट की कहानी बदल दी। वैभव सूर्यवंशी का ये सीजन सिर्फ सफल नहीं था, बल्कि आईपीएल इतिहास के सबसे यादगार अभियानों में से एक बन गया। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी अभी शुरुआत भर है।
1: कल यानी 6 जून को क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण प्रारूप टेस्ट क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने होने जा रही हैं। यह है महामुकाबला मुल्लांपुर न्यू चंडीगढ़ के नए और शानदार महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: आईपीएल 2026 का रोमांच खत्म हो चुका है, लेकिन क्रिकेट का एक और बड़ा अध्याय शुरू होने जा रहा है। अब सभी की निगाहें इंटरनेशनल क्रिकेट पर हैं, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान लगभग 8 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में आमने सामने होने वाले हैं। ये एकमात्र टेस्ट मुकाबला 6 जून से 10 जून 2026 तक न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर में खेला जाएगा। इस टेस्ट मैच के लिए शुभमन गिल को भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी गई है और केएल राहुल उपकप्तान होंगे। ये मुकाबला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC साइकिल का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यह मैच कई युवा खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का सुनहरा अवसर लेकर आया है। भारतीय टीम में यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरेल जैसे युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। वहीं गेंदबाजी विभाग में मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, मानव सुथार, हर्ष दुबे, गुरनूर बरार और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खिलाड़ी टीम की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर जम्मू कश्मीर को खिताब दिलाने वाले तेज गेंदबाज नबी भी भारतीय टीम के साथ नेट बॉलर के रूप में जुड़े हैं। उनके साथ गुरजपनीत सिंह, प्रिंस यादव, सारांश जैन, जीशान अंसारी और शिवांग कुमार भी टीम की तैयारियों में मदद कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि शुभमन गिल की अगुवाई में यह युवा भारतीय टीम मैदान पर कैसा प्रदर्शन करती है। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक टेस्ट मुकाबले के लिए, क्योंकि आईपीएल के बाद अब बारी है सफेद जर्सी वाले असली टेस्ट की।
1: हाल ही में भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच एक बेहद रोमांचक T20 सीरीज खेली गई। इंग्लैंड के मैदानों पर दोनों ही टीमों ने अपना पूरा दमखम दिखाया और क्रिकेट फैंस को भरपूर मनोरंजन दिया। इंग्लैंड दौरे पर गई कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की शुरुआत बेहद शानदार रही। 28 मई को चेम्सफोर्ड में खेले गए पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए इंग्लैंड को 38 रनों से करारी शिकस्त दी। इस मैच में भारत की स्टार बल्लेबाज जमीमा रोड्रिग्स का बल्ला जमकर बोला और उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। इस धमाकेदार जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली थी, लेकिन इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम अपने घर पर इतनी आसानी से हार कहां मानने वाली थी। 30 मई को खेले गए दूसरे मुकाबले में मेजबान टीम ने जबरदस्त वापसी की। इंग्लैंड ने इस मैच में शानदार खेल दिखाते हुए भारत को 26 रनों से हरा दिया। फ्रेया कैंप के बेहतरीन प्रदर्शन ने इंग्लैंड को सीरीज में 1-1 की बराबरी दिला दी और अब सारा दमदार अंतिम और निर्णायक मुकाबले पर आ टिका था। 2 जून को टॉन्टन के काउंटी ग्राउंड्स पर सीरीज का तीसरा और फाइनल T20 मैच खेला गया। दांव पर सीरीज की ट्रॉफी थी। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने एक आक्रामक रुख अपनाया। कप्तान हरमनप्रीत कौर के तेज 56 रनों और यस्तिका भाटिया की 32 रनों की उपयोगी पारियों की बदौलत भारत ने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 180 रन का बहुत ही मजबूत और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया। जमीमा रोड्रिग्स ने भी 29 रनों का अहम योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी की। युवा बल्लेबाज एलिस कैप्सी ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली और महज 43 गेंदों पर 82 रनों की तूफानी पारी खेल डाली, जिसमें 9 चौके और 3 शानदार छक्के शामिल थे। दूसरी छोर से कप्तान हीदर नाइट ने भी अपना पूरा अनुभव झोंकते हुए 42 गेंदों पर 70 रन बना डाले। इन दोनों की बेजोड़ साझेदारी की बदौलत इंग्लैंड ने 19वें ओवर में ही महज 4 विकेट खोकर 184 रन बना लिए और मैच 6 विकेट से जीतकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा

0: कर लिया। भले ही टीम इंडिया को इस T20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन भारतीय महिला खिलाड़ियों ने जिस जज्बे के साथ क्रिकेट खेला उसने सबका दिल जीत लिया और क्रिकेट फैंस के लिए रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। 10 जून को कार्डिफ में ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच में भारत और इंग्लैंड एक बार फिर से आमने सामने होंगे, जहां भारतीय टीम अपना बदला चुकता करना चाहेगी। इसके अलावा 10 जुलाई का भी बेसब्री से इंतजार रहेगा, जब ये दोनों टीमें क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर अपने टेस्ट मैच खेलने उतरेंगी। WTT फिडे टेबल टेनिस में भारत की दिव्यांशी भौमिक ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: दिव्यांशी भौमिक 15 वर्ष की आयु में टेबल टेनिस प्रतियोगिता में सिंगल्स खिताब जीतने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं। विश्व रैंकिंग में 211वें स्थान पर काबिज दिव्यांशी ने फाइनल में चीनी ताइपे की विश्व नंबर 38 ये यी तियान को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से पराजित किया। वे जापान की स्टार खिलाड़ी मीवा हरिमोतो के बाद WTT फीडर सर्किट में महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली दुनिया की दूसरी सबसे युवा खिलाड़ी मानी जा रही हैं। दिव्यांशी ने अपने शानदार अभियान में एक और स्वर्ण में उपलब्धि जोड़ते हुए महिला डबल्स वर्ग का स्वर्ण पदक भी जीता। दिव्यांशी ने सिंड्रेला दास के साथ मिलकर जापान की साची आओकी और कोकोना मुरामात्सु की जोड़ी को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराया।
0: अब बात करते हैं विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग्स की, जहां भारतीय खिलाड़ियों का जबरदस्त दबदबा देखने को मिला है। जैस्मिन लंबोरिया ने शीर्ष स्थान अपने वर्ग में हासिल कर लिया है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में भारतीय मुक्केबाजों का दबदबा कायम है। जैस्मिन लंबोरिया महिलाओं की 57 किलोग्राम कैटेगरी में शीर्ष मुक्केबाज बन गई हैं। 60 किलोग्राम में एशियाई चैंपियन प्रिया घांगस और 50 किलोग्राम में विश्वनाथ सुरेश टॉप 3 में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम वर्ग में विश्व नंबर 1 के तौर पर अपना दबदबा बनाए रखा है, जबकि प्रीति नंबर 3 पर पहुंच गई हैं। 70 किलोग्राम में अरुंधति चौधरी, 80 किलोग्राम में पूजा रानी और 80 से अधिक किलोग्राम वर्ग में नुपुर विश्व में दूसरे स्थान पर काबिज हैं। 51 किलोग्राम में निखत जरीन और 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहेन ने भी दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में अपनी जगह बनाए रखी है। पुरुषों की टीम में भी ऐसी ही निरंतरता है। सचिन और नरेंद्र लगातार अंतर्राष्ट्रीय सफलता के बाद टॉप 5 में शामिल हो गए हैं। 70 किलोग्राम वर्ग में हितेश गुलिया छठे और 65 किलोग्राम वर्ग में अविनाश जम्वाल 8वें स्थान पर हैं। 75 किलोग्राम वर्ग में आकाश और 85 किलोग्राम वर्ग में लोकेश भी टॉप 10 में शामिल हैं। पुरुष वर्ग के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश 11वें और 70 किलोग्राम वर्ग में दीपक 12वें स्थान पर हैं। विश्व रैंकिंग में भारत की ये जबरदस्त बढ़त विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल्स और विश्व चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन के कारण ही संभव हुई है।
0: भारत ने दुनिया को कई अनमोल तोहफे दिए हैं, लेकिन योग शायद उनमें से सबसे खूबसूरत और जीवन बदलने वाला तोहफा है। हम सभी जानते हैं कि योग हमारे मन, शरीर और आत्मा को स्वस्थ रखता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऐतिहासिक आयोजन की, जो इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच रहा है। प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 4 जून से 8 जून तक गुजरात की अहमदाबाद शहर स्थित एका एरेना में इतिहास रचा जा रहा है। विश्व योगासन चैंपियनशिप के इस पहले संस्करण में 70 से भी ज्यादा देशों के 500 से अधिक एथलीट्स भारत की धरती पर अपनी शारीरिक क्षमता और लचीलेपन का जादू दिखा रहे हैं। अमेरिका, जापान, नीदरलैंड से लेकर युगांडा और केनिया तक पूरी दुनिया इस महाकुंभ का हिस्सा बन चुकी है। कल यानी 4 जून को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली इस ऐतिहासिक चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने एक बहुत ही अहम बात की। उन्होंने कहा कि समय के साथ हर जीवन परंपरा एक नए चरण में प्रवेश करती है और यह चैंपियनशिप योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में एक नई पहचान दिला रही है।
3: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: इसमें पारंपरिक योगासन, आर्टिस्टिक और रिदमिक योगासन जैसी अलग अलग कैटेगरी

0: ग्रीस हैं। खिलाड़ी हवा में गजब का संतुलन बनाते हैं, म्यूजिक के बीट्स पर अपने जोड़ीदार के साथ तालमेल बिठाते हुए कठिन आसनों का प्रदर्शन करते हैं। वहां मौजूद 80 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जजेस इनकी फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, स्टेमिना और परफेक्शन के आधार पर इन्हें मार्क्स देते हैं। और जब बात विश्व स्तर पर हो रही हो तो हमारे भारतीय खिलाड़ी कैसे पीछे रह सकते हैं। हमारी स्टार एथलीट आरती पाल जैसी कई प्रतिभाएं इस विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आरती भारत की पहली ऐसी योगासन एथलीट हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड्स के लिए रिकमेंड किया गया है।
1: मेरा नाम डॉक्टर आरती पाल है, मैं इंटरनेशनल योगासन एथलीट हूँ और पतंजलि यूनिवर्सिटी में योगासन की प्रोफेसर हूँ और मैं अर्जुन अवार्ड के लिए फर्स्ट नॉमिनेटेड खिलाड़ी हूँ। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर 4 से 8 जून तक जो वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप यहाँ पर आयोजित है गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, उस चैंपियनशिप में भारत की पूरी टीम का प्रतिनिधित्व मैं कैप्टन के रूप में कर रही हूँ। निश्चित रूप से भारत की इस वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो मेजबानी है, भारत के माध्यम से ये मेजबानी जो हो रही है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए ये एक पहल है, क्योंकि योगासन जो है ये भारत का एक गिफ्ट है पूरे वर्ल्ड को। और पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में आज हम जिस प्रकार की स्थिति देख रहे हैं, जिस प्रकार से ये परिस्थितियां बनी हुई हैं, अस्थिरता है, ऐसे समय में योग और योगासन एक ऐसी विधा है जो पूरे विश्व को जोड़ सकती है। ये भारत की एक सॉफ्ट पावर है जो पूरे विश्व को, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ कर सकता है। लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन की अगर मैं बात करूँ तो 2015 के बाद से, जब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पूरे विश्व में पहुंचा दिया, उसके बाद से योग और योगासन एक ऐसा विषय हो गया है जो केवल भारत तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व में आज सभी देश योग करते हैं, योगासन करते हैं, योग के अलग अलग फॉर्म्स को प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो चैंपियनशिप है, इसमें जो भी सारे देश आए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर करीब 78 कंट्रीज आई हुई हैं, तो सभी जो देश आए हुए हैं, ये सभी अच्छे स्तर का अभ्यास करके यहाँ पर आए हुए हैं। और निश्चित रूप से मैं कहूंगी कि योग और योगासन दोनों का लेवल बड़ा है और विश्व के सभी देश इसको जान रहे हैं, इसको मान रहे हैं, इसका अभ्यास कर रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि योगासन का जनक भारत है, तो निश्चित रूप से हम इसके जनक हैं। वी आर द फाउंडर ऑफ दिस गेम एंड वी हैव प्रैक्टिस अ लॉट फॉर दिस इंटरनेशनल चैंपियनशिप। पिछले 20-25 दिनों से हमारा कैंप यहाँ पर गुजरात के अहमदाबाद में ही साई एनसीओई कैंपस में लगा हुआ था, जो कि नारायणपुरा में है। तो पिछले 20-25 दिनों से हम जो अभ्यास कर रहे हैं, उसके दम पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं 20-25 दिन का तो कैंप था, लेकिन उसके पहले से सालों से हमारे एथलीट, योगासन एथलीट इस विधा का अभ्यास कर रहे हैं। योगासन का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि मैंने बताया कि योग और योगासन कोई नया विषय नहीं है, ये सालों पहले, हजारों सालों पहले भारत में अभ्यास की जाने वाली एक विधा है। हालांकि 2020 में इसको एक फेडरल स्ट्रक्चर का फॉर्म दिया गया, जिसके बाद इसको एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के रूप में रिकग्नाइज किया गया। और 2020 से आज 2026 तक की जर्नी की यदि मैं बात करूं, तो आज सारे जितने रेप्यूटेड हमारे कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो, नेशनल गेम्स हो, पुलिस गेम्स हो, सिविल सर्विसेज हो, CBSE गेम्स हो, AIU गेम्स हो, ये सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे बन चुके हैं जहाँ पर योगासन का समावेश हो चुका है। और बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही हर्ष की बात है कि आगामी जो 2026 में एशियन गेम्स आयोजित हैं, उसमें भी योगासन का इंक्लूशन किया गया है। और फ्यूचर की यदि मैं बात करूं, तो 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हम योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के रूप में देखेंगे। और निश्चित रूप से हम ऐसी आशा भी करते हैं, और आपके माध्यम से हम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी से निवेदन भी करते हैं कि योगासन ओलंपिक गेम्स का भी भाग बने।
0: ऐसी ही कई युवा टैलेंट्स इस चैंपियनशिप में देश के लिए मेडल जीतने का जज्बा लेकर उतरे हैं। इस आयोजन का विजन बहुत बड़ा है, केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने साफ कर दिया है कि हमारा लक्ष्य सिर्फ इस चैंपियनशिप तक रुकना नहीं है। भारत का सपना है कि 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 के ओलंपिक्स में योगासन को एक ग्लोबल स्पोर्ट के रूप में शामिल किया जाए। यानी वो दिन दूर नहीं जब हम ओलंपिक्स में भी योगासन के लिए भारत को गोल्ड मेडल जीतते हुए देखेंगे। आने वाली 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं, और उससे ठीक पहले अहमदाबाद में हो रहा ये आयोजन हम सभी के लिए हेल्थ और वेलनेस का डबल डोज लेकर आया है। रामपुर की मिट्टी ने हमेशा से ही नायाब हीरो को तराशा है और जब बात खेलों की हो तो इस शहर का जुनून देखते ही बनता है। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल की और रामपुर के चमकते फुटबॉल स्टार सैयद अली जैदी की। आइए जानते हैं उनकी कहानी उनकी जुबानी।
2: मैं सैयद मोहम्मद अली जैदी, मात्र 12 वर्ष की उम्र से ही मुझे फुटबॉल में रुचि रही है और फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा प्रतियोगिता जिसमें करी गई थी तो आगरा में मात्र 12 वर्ष की उम्र में मैंने भाग लिया, जिसमें मैंने स्टेट खेला है, एक डिस्ट्रिक्ट खेला है और एक जोन खेला है। और उसी वर्ष में मैंने एक और प्रतियोगिता जो कि 2025 में गवर्नमेंट द्वारा कराई गई थी काशी विश्वविद्यालय में, मैंने भाग लिया और उसमें उसी प्रतियोगिता में मैंने स्टेट खेला। और बचपन से ही इस गेम में मुझे रुचि रही है। मैंने अकेले ही अपने शहर में, अपने होम ग्राउंड में मैंने प्रैक्टिस करी है हर दिन डिसिप्लिन में। और फुटबॉल हमारी लाइफ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खेल है क्योंकि इससे हमारी फिटनेस बनी रहती है, एक डिसिप्लिन बना रहता है जिससे लाइफ स्पैन बहुत अच्छा होता है। बचपन से ही जिस खिलाड़ी को मैंने देखा और जो मेरा पसंदीदा है उनका नाम मेसी है, बचपन से ही उनको देखने का शौक रहा है, उनका गेम खेलने का तरीका, ये सब चीज़ें मैंने उन्हीं से सीखी हैं। और रही बात खेल की तो ज़्यादातर लोग फ़ोन पे ही अपना समय बर्बाद करते हैं, लेकिन इससे अच्छा ये है कि आसपास के जो भी होम ग्राउंड्स हैं आपके या जहाँ भी आप खेल सकते हैं वहाँ पे फुटबॉल, हॉकी या कोई भी स्पोर्ट्स हो वहाँ पे खेला करें, क्योंकि इससे आपका ही लाभ है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल कोटे के द्वारा लोगों को अब नौकरियाँ देना शुरू कर दी हैं, जितना आप अच्छा खेलेंगे उसी तरीके से आपको और अच्छे चांसेस मिलते रहेंगे और नौकरी के भी ऑप्शंस मिलते रहेंगे। मेरा यही कहना है कि अब के जो यूथ है वो ज़्यादातर फ़ोन पे रहती है और उसकी जगह जो आपके होम ग्राउंड हैं, जो आसपास जितने भी ग्राउंड हैं वहाँ पर आकर अपना स्पोर्ट्स का टैलेंट दिखाएं, वहीं पे खेला करें, क्योंकि आने वाली यूथ यही है और इससे हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। श्रोताओं, मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि मोबाइल से हटकर ग्राउंड पर आएँ, अपना टैलेंट दिखाएँ। इससे ये होगा कि आपके स्वास्थ्य भी अच्छी रहेगी, मोबाइल देखने से ज़्यादातर स्वास्थ्य का बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप घर पे ही हैं, लेटे हुए हैं। रही बात मोबाइल देखने से नज़र की दिक्कतें और स्वास्थ्य की दिक्कतें बहुत बढ़ती जा रही हैं, तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अपने जितना जो भी टैलेंट है इसके लिए आप लोग होम ग्राउंड्स में जाएं, अपने जो भी आसपास जहाँ भी खेलने की जगह है वहाँ पे खेला करें। इससे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे आगे चलने के, नौकरी में ऑप्शंस मिलेंगे, काफ़ी ऑप्शंस हैं। श्रोताओं, मैं ग्रीनवुड से ही मैंने पढ़ाई अभी कर रहा हूँ और कक्षा 3 या 4 से मैंने फुटबॉल खेलना शुरू करी थी, मेरा उसी में रुचि थी और तब से ही मुझे उसके अंदर लाभ था कि मैं बचपन से ही खेलना मैंने शुरू कर दिया था। शुरुआत में तो इतनी सुविधा नहीं हुआ करती थी, हमने आपस में ही दोस्तों में खेला करते थे, लेकिन फिर भी उसके बाद हमने जब घर पे भी दिखने लगा कि हम फुटबॉल खेल रहे हैं ये है, तो घर वालों ने भी सपोर्ट किया। और फिर उसके बाद हमने जब स्टेट खेल लिया और डिस्ट्रिक्ट खेल लिया तो फिर लगने लगा कि हाँ, इसी में फिर अपना जो है फ्यूचर बनाएंगे। तो यही कहना चाहता हूँ कि भी अपना जो भी टैलेंट है जिस भी स्पोर्ट्स में, ज़रूरी नहीं कि फुटबॉल ही खेलें, हॉकी है, क्रिकेट है, उसका अपना टैलेंट दिखाएं, अपनी इंडिया और कंट्री को और अपनी सिटी को, अपने फैमिली को, इन सबको रिप्रेजेंट करें। इसी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के प्रति मेरा बनारस विश्वविद्यालय में जब मैं मैच खेलने गया था तब मेरा नेशनल के लिए चयन हुआ था। तो यही कहना चाहूँगा कि खेलते खेलते आपको अलग अलग राहें मिलेंगी, अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे खेलने के, और मैं यही चाहूँगा कि मेरा आगे चल के फ्यूचर में नेशनल टीम में सिलेक्शन हो जिससे मैं अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकूँ और फिर मैं इंटरनेशनल में खेलूँ और उसमें ही अपनी इंडिया और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ।
0: आकाशवाणी रामपुर के खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स राउंडअप में आज इतना ही। कार्यक्रम के अगले अंक में फिर से हाजिर होंगे खेल जगत की विभिन्न गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए अवधेश गौतम को दीजिए अनुमति।
3: स्पोर्ट्स राउंडअप।
4: अभी आपने सुना खेल जगत पर आधारित आकाशवाणी रामपुर द्वारा विशेष कार्यक्रम स्पोर्ट्स राउंडअप। प्रस्तुति थी अवधेश कुमार गौतम की। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

रेडियो वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी रामपुर की दूसरी सभा के प्रसारणों के साथ आप जुड़े हैं। अब रात्रि के 10 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे सजीव फोन इन प्रोग्राम हेलो रामपुर।

आप भी चाहते हैं अपनी पसंद का गीत सुनना, तो उठाइए अपना फ़ोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0595232423 और बताइए अपनी फरमाइश और हो जाइए प्रोग्राम में शामिल।

0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है सजीव फोन इन प्रोग्राम हेलो रामपुर। हेलो रामपुर के सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त जवेरिया का नमस्कार। देखते हैं हमारे पहले कौन से श्रोता साथी हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो रामपुर।
1: हेलो रामपुर
0: जी, हमारे कौन से श्रोता साथी हमसे बात कर रहे हैं?
1: मैं वार्षिक क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी बात कर रहा हूँ।
0: जी जीशान वारसी जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम ठीक ठाक हूँ, आप बताएं। आकाशवाणी परिवार में सभी लोग कैसे हैं?
0: जी, आकाशवाणी परिवार में सभी लोग ठीक हैं। और बताएं, आपको आकाशवाणी के कार्यक्रम कैसे लगते हैं? आप कब से सुनते हैं?
1: मैं आकाशवाणी की अगर बात कर जाए तो मैं सन 2007 से आज तक आकाशवाणी केंद्रों से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम एक नंबर लगते हैं और मैं बहुत पसंद करता हूँ।
0: जी, बहुत खूब। इतने सारे केंद्रों में से आपने आकाशवाणी रामपुर को सुनते हैं। आज आपकी कॉल लगी है, तो आप किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज मुझे सुनना है, फिल्म का नाम है आप तो ऐसे ना थे, और गीत के बोल हैं तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। और मैं दो तीन नाम लेना चाहूंगा। मेरे बड़े भाई हैं करूला मुरादाबाद से अयूब खान, और मेरा छोटा भाई है सिंधौली मीरगंज से इमरान शेख।
0: जी, बस यही है। ठीक है,
1: जी
0: तो सुनिए आपकी पसंद पर ये गीत मोहम्मद रफ़ी और मनहर उदास की स्वर में। आपके रेडियो सेट पर आपकी नज़र।
1: जी
0: आकाशवाणी में
1: बहुत
0: कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: अभी आपने सुना मनहर उदास और मोहम्मद रफ़ी को। आप सुन रहे इस समय आकाशवाणी रामपुर से कार्यक्रम हेलो रामपुर। हमारे अगले श्रोता कौन से जुड़े हैं हमारे साथ? हेलो रामपुर।
1: हाँ जी, हेलो रामपुर।
0: हेलो रामपुर, हमारे कौन से श्रोता साथी बात कर रहे हैं?
1: जिला अमरोहा नई बस्ती फतेह खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी बोल रहा हूँ मैम।
0: जी, कैसे हैं बहारुल हसन सिद्दीकी साहब?
1: बस अच्छे हैं मैम। आपका प्रोग्राम सुनने हैं, हेलो रामपुर सुनने हैं, वो गाता रहे प्रोग्राम तो आपने पेश किया, वो भी अच्छा लगा।
0: जी, आज आपकी कॉल लगी है तो किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम रहेगा दलाल मूवी, और गाने के बोल रहेंगे और वो तेरे संग चोरी चोरी अखियाँ मिला गए, ये गाने के बोल रहेंगे तो करके कुछ नाम थे
0: जी,
1: जैसे मोहम्मद आलम सिद्दीकी हैं, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी हैं, बिटिया दीसा सिद्दीकी हैं, शीतान सिद्दीकी, नाविया सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, यासिन अंसारी, सुदेश चौहान, अतीक तौफीक, दानिश सिद्दीकी, महेश तुर्खेन से, विक्राम प्रेमी साहब रामपुर से, और गंगा रामपुर से, बेलापुर मुरादाबाद से मुकेश कश्यप जी हैं, राशिद अंसारी हैं, पासवाड़ा से मुजाहिर अंसारी,
0: जी
1: ये
0: ठीक
1: सब
0: है
1: रहे हैं।
0: ठीक है। आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पर, आपकी नज़र आकाशवाणी में कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो रामपुर।
1: हाँ हेलो रामपुर, नमस्कार मैम
0: नमस्कार। हमारे कौन से श्रोता साथी हमसे जुड़े हैं
1: जी? मैं जिला मुरादाबाद ग्राम बीबीपुर से मकसूद हुसैन बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी, मकसूद हुसैन जी कैसे हैं?

0: देखिए आज जो है पर्यावरण दिवस है, तो थोड़ी सी बात मैं इस पर करना चाहता था
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए अपने विचार।
0: हाँ तो मैम देखिए, एक तो साफ सफाई का विशेष का ध्यान रखें, सफाई कर्मी के वेट में ना रहें, अपने घर के आगे का कम से कम अपने घर के जो सफाई है, नालियां वगैरह है, कूड़ा है, साफ कर दें। सहयोग होता है, जब स्वस्थ वातावरण रहेगा तो बीमारी भी कम होगी। और पेड़ अधिक लगाएं, पेड़ों से जो है बहुत बहुत बड़ी हमें जो है मतलब फायदा होता है।
1: जी बिल्कुल, स्वस्थ वातावरण में ही स्वस्थ जीवन निवास करता है। जब हमारे आसपास सफाई होगी तभी हम स्वस्थ रहेंगे, और पेड़ अधिक रहेंगे तो ऑक्सीजन भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी।
0: ज़्यादातर मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलता है पेड़ों से मैम।
1: बिल्कुल, तो आज आपकी कॉल लगी है, आपने बहुत अच्छे विचार साझा किए। आप ये बताएं आज किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
0: मैम एक पुरानी फिल्म है मिस्टर एंड मिसिज बॉम्बे, उसमें रफी जी का और लता जी का बहुत ही प्यारा गीत है, जाने कहां मेरा बिगड़ गया जी, अभी अभी यहीं तक किधर गया जी। मेरे ख्याल से इसमें जो है गीता दत्त जी की आवाज है
1: जी, ये मोहम्मद रफी साहब और गीता दत्त जी की आवाज में ये गीत है।
0: हाँ तो मैम सुनने वाले के साथ में डॉक्टर अकबर हुसैन, मोहम्मद दानी सिद्दीकी, रजा हुसैन है, हाजी गफ्फार खान साहब हैं, मोहम्मद इशरत, मुकेश और साथ में सभी सुनने वाले, और आप भी हो मैम।
1: जी ठीक है, आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पर, आपकी नज़र आकाशवाणी में। कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं इस समय आकाशवाणी रामपुर से कार्यक्रम हेलो रामपुर। हमारे कौन से अगले श्रोता साथी जुड़े हैं? हेलो रामपुर।
1: हेलो रामपुर
0: जी, कौन से श्रोता बात कर रहे हैं?
1: मैं गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान आपसे बात कर रहा हूँ।
0: जी हाजी गफ्फार खान साहब, कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए, आपके और आकाशवाणी परिवार के क्या हाल है?
0: जी आकाशवाणी परिवार में भी सभी लोग ठीक हैं, अच्छे हैं। आप ये बताएं, आज आपकी कॉल लगी है तो आप किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: एक बहुत पुरानी फिल्म है सट्टा बाजार।
0: जी
1: और गाने के बोले दादा ठहरो जी अब्दुल गफ्फार।
0: अच्छा जी, आपका इसमें तो नाम ही रिलेट हो रहा है, बहुत अच्छा गाना लेकर लाए हैं आप।
1: जी और कुछ सुनने वालों के नाम है?
0: जी जी बताइए।
1: राजिया खान है, सिमरन खान है, इरफान खान, नवाबुद्दीन भाई, इकराम अली प्रेमी, मसूद हुसैन साहब, शबनम अब्बासी, शाहनूर अंसारी, हबीब अहमद इदीसी, गुलफशा इदीसी, अनीसुर रहमान, आकाश दत्तोजी, पम्मी पक्के बागसी, यही सब सुनना चाहेंगे।
0: जी ठीक है, आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पर मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के स्वर में, आपकी नज़र।
1: बहुत शुक्रिया
0: जी आकाशवाणी में कॉल करने के लिए धन्यवाद।

करे हमको भी तुमसे है प्यार, रुमाल हमें दे के जाना, हो तेरे चाहने वाले हैं हजार, रुमाल हमें दे के जाना, हो गोरी हमको

0: आप सुन रहे हैं इस समय आकाशवाणी रामपुर से कार्यक्रम हेलो रामपुर। आप भी चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो उठाइए अपना मोबाइल और डायल कीजिए हमारा नंबर 0595-232-426 और कॉल कीजिए और शामिल हो जाइए अपनी पसंद के साथ हमारे प्रोग्राम में। देखते हैं हमारे अगले कौन से श्रोता साथी जुड़े हैं। हेलो रामपुर।
1: हेलो हेलो रामपुर
0: जी। हेलो रामपुर, कौन से श्रोता साथी बात कर रहे हैं हमसे?
1: शुभ रात्रि।
0: शुभ रात्रि।
1: अनुप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ। मेरा गांव का नाम है रामकृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट है श्री भूमि, असम से तालुका से।
0: जी
1: तो मुलाकात की जरूरत नहीं
0: पड़ी। जी आपने इतनी दूर से कॉल किया है तो आप ये बताइए कि किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी आज सुनो, जरूर सुनो, मैं बता दूंगा। तो दो लाइन बोलो मैम।
0: जी बोले।
1: को मुलाकात की जरूरत नहीं पड़ती, बस याद करते ही चेहरे पर खुशी आ जाती है ना?
0: जी।
1: और आज एक गाने का फरमाइश मेरा है, फिल्म का नाम है दीवाना मस्ताना। और गाने का बोल ऐसे, ओ मम्मी मम्मी

0: ऐसे करके गाने हैं
1: जी, बहुत
0: और
1: खूब
0: कुछ पुस्तकों में याद करता हूँ।
1: जी।
0: पहले है बसंतीलाल सूर्यवंशी जी, सतीश भाई, अविनाश जी और प्रेमजी चक्रवर्ती जी, कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार जी और अनवर भाई बिहारी जी और श्रीकांत जी फ्रॉम महाराष्ट्र।
1: जी, आपने आकाशवाणी में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पसंद का गीत उदित नारायण के स्वर में, आपके रेडियो सेट पर आपकी नज़र।

0: हेलो रामपुर।
1: रामपुर, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। हमारी कौन से श्रोता हमसे बात कर रहे हैं?
1: मैं बोल रही हूँ कि राधिया गांधी समाधि से। बहुत
0: अच्छा, कैसी हैं?
1: अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अल्लाह का करम, अल्लाह सब ठीक रखे। आपको आकाशवाणी के कार्यक्रम कैसे लगते हैं?
1: बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, रेडियो में बहुत अच्छे गाने गाने सुनती हूँ, अच्छे लगते हैं।
0: अच्छा, आपका रेडियो के लिए जुड़ाव, आप सुनती हैं, सुनकर अच्छा लगा। आज जैसा कि आज पर्यावरण दिवस है, तो आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगी?
1: ये मालूम नहीं है।
0: अच्छा, आज आपकी कॉल लगी है, तो किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगी, बताइए।
1: वो है कि लैला मजनू, और गाना है रेशमी पारस की, झनकार के सबको।
0: ठीक है
1: अब कुछ सुनने वालों के नाम,
0: जी, बताएं।
1: सबसे पहले शारदा परवीन, ऊंची मस्जिद से थाना से, और वो शमा परवीन होगी, गुलशा सदीकी, और क्या देंगे, और वो और आप और हम।
0: ठीक है, आपने आकाशवाणी में कॉल की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पसंद का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में, आपके रेडियो सेट पर आपकी नज़र।

0: हेलो रामपुर।
1: हाँ हेलो रामपुर मैम जी, आदाब।
0: आदाब, कौन से श्रोता बात कर रहे हैं?
1: मैम जिला रामपुर ग्राम खैराने से मोहम्मद कामिल बात कर रहा हूँ।
0: जी कामिल जी, कैसे हैं सब आपके घर परिवार में?
1: मैम सब एकदम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हो।
0: जी आकाशवाणी परिवार में भी सब लोग ठीक हैं। आप ये बताएं कि आज जैसा कि पर्यावरण दिवस है,
1: जी
0: तो
1: मैम,
0: आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: मैम पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा, पेड़ों को कम से कम काटें और ज्यादा से ज्यादा हमें लगाने चाहिए मैम, और आसपास के साइडों में सब पे हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, के वनों की कटाई कम होगी तभी हमें ऑक्सीजन मिलेगा, और प्लास्टिक कूड़ा कचरा हम ऐसे नहीं फेंकेंगे, तभी आसपास सफाई रहेगी।
1: जी
0: बिल्कुल
1: जी मैम देखिए, ऐसा होता है अगर हम कुछ पेड़ काटते हैं, अगर हमने दो पेड़ काटे एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमें उसके बदले में ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए ताकि
0: जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा
1: स्वस्थ हवा मिलेगी, तो बीमारियों से भी बचेंगे हम, और भी कई तरह की जो वो होती है हम उससे बचे रहेंगे, ऑक्सीजन हमें मिलती रहेगी, अच्छा रहेगा मैम।
0: जी बहुत खूब। आज आपकी कॉल लगी है, किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैम फिल्म का नाम है सौतन और गाने के बोले मोहब्बत हो चुकी है, इसी टाइप के बोले ये सॉन्ग सुनवा देना, मेरे साथ में कुछ सुनने वाले हैं
0: जी
1: मोहम्मद तालिब परवेज, वसीम अकरम, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, अनीसुर रहमान, ये सब सुनना चाहेंगे।
0: जी आपने आकाशवाणी में कॉल की, इसके लिए धन्यवाद। आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पर, आपकी नज़र।
1: थैंक यू।

0: आप सुन रहे समय आकाशवाणी रामपुर से कार्यक्रम हेलो रामपुर। हमारे अगले श्रोता साथी कौन हैं, बात करते हैं। हेलो रामपुर, हेलो रामपुर, हेलो रामपुर,
1: हेलो रामपुर
0: जी, हमारी कौन सी श्रोता बात कर रही हैं?
1: जी, मैं तहसील सर रामपुर से बोल रही हूँ।
0: जी, क्या नाम है आपका?
1: जी, मेरा नाम राघव है।
0: जी, तो आपको आकाशवाणी के कार्यक्रम कैसे लगते हैं? कहाँ रहती हैं आप? अच्छा, तो आज पर्यावरण दिवस है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल सही बात है कि कूड़े कचरे को डस्टबिन में डालें, नालियों में जहाँ तहाँ नहीं डालें, और पेड़ों को कम से कम काटें और पेड़ लगाएं, तभी हमें ऑक्सीजन मिलेगा। आज आपने कॉल की है, किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगी?
1: मैं प्यार झुकता नहीं मूवी का, तुमसे मिलकर ना जाने की और भी कुछ याद है।
0: जी जी सुनने वाले श्रोता साथियों के नाम बता दीजिए।
1: मैम, मेरे हस्बैंड विजय राठौर, मेरी मदर इन लॉ
0: जी,
1: और ये शिवाय शिवाय राठौर, राघव राठौर, शिवांशी राठौर
0: जी। बहुत खूब, आपने कॉल की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पसंद का गीत, आपके रेडियो सेट पर आपकी नज़र, फिल्म प्यार झुकता नहीं से।

0: हेलो रामपुर
1: हेलो रामपुर, नमस्कार मैम।
0: जी। नमस्कार, हमारे कौन से श्रोता साथी जुड़े हैं
1: जिला मुरादाबाद, ग्राम दूलापुर से मुकेश कश्यप आपसे बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी? मुकेश जी, तो
1: जी मैम,
0: आज आपकी कॉल लगी है, तो आप ये बताइए कि आज पर्यावरण दिवस है, तो
1: जी
0: आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को सबसे पहले?
1: मैम, मेरा मैसेज यही रहेगा कि मैम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और पानी को बर्बाद होने से बचाएं, क्योंकि मैम देखा जा रहा है कि कहीं तो बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं बिल्कुल सूखा पड़ रहा है मैम। तो इसका कारण हम ही है मैम, क्योंकि पेड़ काट रहे हैं, लगा नहीं रहे।
0: जी
1: और मैम मेरा एक सवाल हो रहा है, मतलब पेड़ लगा देते हैं कुछ लोग, तो उसकी देख रेख नहीं करते, तो वो बेकार हो जाता है पेड़। तो
0: जी
1: पेड़ लगाने
0: बिल्कुल
1: के बाद उसकी देख रेख भी रखनी है।
0: जी, पेड़ लगाएं भी और उनकी देखभाल भी करें, बहुत खूब। आज आपकी कॉल लगी है, तो किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है कर्ण अर्जुन, ये
0: जी
1: बंधन तो प्यार का बंधन।
0: जी
1: नाम बोल सकते हैं?
0: जी बताएं।
1: मेरे भले भाषा सोनू सुरेश राजपाल पंकज, मेरी बहन काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक और बलवीर से।
0: जी, आपने आकाशवाणी में कॉल की, आपका धन्यवाद। आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पर, आपकी नजर।

0: आप सुन रहे हैं इस समय आकाशवाणी रामपुर से कार्यक्रम हेलो रामपुर। देखते हैं हमारे अगले व अंतिम श्रोता हमसे कौन जुड़े। हेलो रामपुर।
1: हाँ जी नमस्कार मैडम।
0: जी नमस्कार, हमारे कौन से श्रोता साथी बात कर रहे हैं?
1: मैडम जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम
0: जी लोकेंद्र जी, कैसे हैं? आपके घर
1: हाँ
0: परिवार में
1: बिल्कुल
0: सब कैसे हैं?
1: बिल्कुल मैडम जी मस्त है, स्वस्थ है। आकाशवाणी रामपुर को प्रसार भारती मोबाइल ऐप के माध्यम से सुनता हूँ। हेयर कटिंग सैलून का बिजनेस है मेरा
0: जी बहुत खूब।
1: जी
0: तो
1: सर।
0: आपको आकाशवाणी के कार्यक्रम कैसे लगते हैं?
1: अच्छे लगते हैं मैडम, बहुत अच्छा लगता है। रात को मैं जब सैलून से आ जाता हूँ तो ये हेलो रामपुर तो मैं जरूर सुनता हूँ ऐप के माध्यम से।
0: बिल्कुल, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
1: हाँ मैडम जी, ये 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। और एक पेड़ माँ के नाम सभी को संदेश है, जो भी रेडियो श्रोता मित्र हैं सभी के लिए और हमारे देशवासियों के लिए भी, के 140 करोड़ देशवासी अगर एक एक पेड़ भी या पौधे का रोपण हर जगह कहीं करेंगे, अपने गली या कहीं कॉलोनी के बगीचे में, तो इससे पर्यावरण को बचाया जा सकता है मैडम।
0: बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। आज आपकी कॉल लगी है, तो किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: ये गाना भी है मैडम, थोड़ा पुराना है, मैं गीत के बोल बता देता हूँ आपको। ये हरियाली और रास्ता।
0: जी
1: जी मैडम।
0: जी सुनने
1: और
0: वाले।
1: दो मित्र हैं मेरे, मुकेश कश्यप जी हैं और शाहनूर अंसारी जी हैं, और हमारे एक मित्र है राम प्रसाद गुप्ता जी किशनगंज बिहार के।
0: जी आकाशवाणी में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पर, आपकी नजर।

लता मंगेशकर के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम हेलो रामपुर संपन्न करने की आपकी रेडियो दोस्त जबीरिया को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन प्रोग्राम हेलो रामपुर। ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 11 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे, पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत में तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है।

ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।